0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना। और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा

न्याय होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्ध प्राणायाम, कपालभाति, मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम है, लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ, शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है जिससे
ध्यान और साधना।

में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो। आप शायद इस लाइन से परिचित नहीं हैं, लेकिन आज इसी लाइन को मैं आपको आ रही हूँ परिचित कराने, यानी आपकी योगनी समता। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो योगशाला में, जो कि आपकी आर्य समता लेकर के आती है। ये अभी आपने जो लाइन सुनी ना, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि तेरा आहार हो। प्राकृतिक चिकित्सक का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यही है कि आहार ही ऐसा किया जाए जो औषधि का नाम दे, यानी औषधि को नाम देने के साथ साथ उसे काम भी दे और जिससे शरीर के विकार स्वयं दूर हो जाए। शायद आपको ये भी पता होगा कि पूर्णता सिद्धांत भारतीय विद्वानों की मत से मिलता हुआ है। इसे भारतवर्ष की विद्याओं का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक माना गया है, क्योंकि उस 2500 पुराने युग में भारत की सभ्यता और संस्कृति का संसार के सभी भागों में प्रचार तब तक हो चुका था। इसलिए इस प्रकार जब तक मनुष्य प्रकृति की गोद में पलते खेलते थे, उनका रहन सहन भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल था, तो वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक ढंग से ही करते थे। पर मध्यकाल में जब बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हो गई, तो उन्हें बड़े आदमियों के रहन सहन में भोग विलास की अधिकता होने लगी और उनकी पूर्ति के लिए भांति भांति की कृत्रिम उपायों का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके चलते साधारण लोग भी उनकी नकल करने लगे। नकली चीजों का इस्तेमाल अधिक सुंदर और आकर्षण बनने के कारण से उनके स्वरूप पर पड़ने लगा, उनके शरीर पर पड़ने लगा, उनके मस्तिष्क पर पड़ने लगा, जिसका सीधा असर उनके अपने रहन सहन पर भी होने लगा। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है प्राकृतिक योग। योग में प्राकृतिक का क्या समावेश है? प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषज्ञ प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। विचार पूर्वक देखा जाए तो यह कोई ऐसी गुहा विषय नहीं है। जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता रहता है, तब तक बिना सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें लाभ होता आया है। जब वह मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग करके कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षण और के स्वास्थ्य संबंधी उलझने बढ़ने लगती हैं और समय समय पर उनके शरीर में कष्टदायक प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जिसको रोग कहा गया है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आजकल बहुत सारी प्रचलित हो गई हैं, जिसमें हजारों तरह की औषधियां, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम उपयोगों को लेकर के हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की ओर चलते जा रहे हैं। लेकिन शायद आप ये जानते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक डॉक्टर का काम करती है। जैसे हम बिना किसी दवा के लिए किसी भी रोग को पूर्णता नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें उस दवा की आवश्यकता होती है और हम दवा लेने के लिए जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उतनी ही लाभप्रद है जितना कि हम अपने शरीर के लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक चिकित्सा, उपवास, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और आहार। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सभी चिकित्साएं हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ये अन्य चिकित्साओं में श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि हम हर एक रोगी को दवाई देकर
ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। उनसे दवाइयाँ, इंजेक्शन इत्यादि का उन पर प्रयोग होता है और वाय उपचारों का आश्रय लेता है। रोग के कारण रोगी में जो वाय लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें दूर करता है और उन लक्षणों के विलुप्त होने पर डॉक्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। डॉक्टर रोगी के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इस चिकित्सा से कुछ दिन के लिए रोग दब जाता है और वह नष्ट हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जीवन की एक वो पद्धति है जिसे हम अपने आप में स्वस्थ रह करके उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कुदरती इलाज के मूल तत्व पंच महाभूत। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु नाम के पांच तत्वों से हुआ है जो पंच महाभूत कहलाते हैं। इनमें सबसे आवश्यक तत्व वायु है जिसके बिना एक क्षण का अस्तित्व ही नहीं है। वायु जीवन है। तेज तत्व शरीर को शक्ति पहुंचाता है। जल से रक्त संचालन का कार्य ठीक प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे चिकित्सा पद्धति में वायु का प्रयोग क्या होना चाहिए। वायु का प्रयोग प्राकृतिक जीवन के अनुवायु को हवा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वैसे हवा तो हम सभी लेते हैं किंतु ईश्वर का प्रसाद तो स्वच्छ ताजी वायु में प्रकट होता है। घर के चार दीवारी या गंदी नालियों और कूड़े करकट से भरे मोहल्लों, बाजारों या कारखानों में स्वच्छ हवा मिलना कठिन है। अतः हमें चाहिए कि प्रातःकाल किसी उद्यान, जंगल या शहर से दूर टहलने जाएं और ताजी हवा से फेफड़ों को खूब भरें। प्रातः सायंकाल स्वच्छ हवा में दीर्घ उच्चारण यानी दीर्घ मंत्र उच्चारण का प्रयास करना चाहिए। ये कसरत करने से फेफड़े सशक्त रहते हैं। वायु अधिक लेने से रक्त शुद्ध होता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। आपके मकान, खिड़कियों और रोशनदानों से युक्त जो भी हवा आती है उसे हमें स्वतः लेते रहना चाहिए। सोते समय कमरे में यथेष्ट वायु रखें। बिस्तर पर पड़कर आप कपड़ों से मुंह न ढकें। दूसरी बुरी आदत मुंह से सांस लेने की होती है। काफी लोगों को ये देखा गया है कि सोते समय उनका मुंह खुल जाता है या उनकी आदत में आ जाने से उनका मुंह वह स्वयं ही खोल लेते हैं। या चिकित्सा में वायु मुंह से लेना सबसे खतरनाक साबित होता है। नथनों की राह सांस लेने से वायु को स्वच्छ होने पर अवसर मिलता है और उसे जितना गर्म या ठंडा होना चाहिए वो वैसे ही ली जा सकती है। वायु के संपर्क में अधिक से अधिक रहने की आदत डालिए। अपना अधिक समय उद्यान, सरिता तट, खुले स्थानों, सैर सपाटे, जंगलों, प्रकृति के आंचल में कर व्यतीत कीजिए। वायु का जितना अधिक उपयोग कर सकें कीजिए। हवा लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे यह निरा भ्रम ही है। शुद्ध, स्वच्छ और ताजी वायु तो प्राण दाता है, उसे अपने अंदर कार्य करने दीजिए। प्रकृति की यही सबसे बड़ी एक अनोखी हमारे लिए उपहार है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं और उस उपहार से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति हमारे लिए स्वयं चलकर आती है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना चाहिए। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख और शांति मिलती है वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण से बलदायक भी मिलता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सोते समय हमें अपने नथुनों से यानी अपनी नासिका से ही श्वासों का लेना निरंतर जारी रखना चाहिए। मुंह से जितना हो सके श्वास नहीं लेनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी निवृत्त रहते हैं। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना पड़ता है और चाहिए भी। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख शांति मिलती है वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण पृथ्वी का बलदायक प्रभाव सूर्य स्नान या नंगे बदन सोने की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होता है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उनके पास एक उपाय ये जरूर होता है कि आप थोड़े देर नंगे पैर जमीन पर चलें। इसका कारण सीधा यही है कि गुरुत्वाकर्षण हमारी शरीर के पैरों के तलवों से होकर के हमारी पूरी आंतरिक शरीर में जाता है, जिसके कारण से हम स्वस्थ रह पाते हैं। दैनिक जीवन में पृथ्वी के साथ आप निकट संबंध निम्न के प्रकार से बना सकते हैं। नंगे पांव चलकर पृथ्वी तल से सीधा स्पर्श होता है। जर्मनी में तो इस प्रकार का एक आंदोलन तक आरंभ किया गया था। नंगे पैर रहना स्वाभाविक और आरोग्यप्रद है। नंगे पांव चलने वाला पांव को दृढ़ करता है और पृथ्वी से प्राण शक्ति खींचता है। नंगे पांव चलने से रुद्राभिसरण बराबर होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होती है। कई रोगों में पृथ्वी पर सोने पर चमत्कारिक लाभ होता है। सोने के लिए ऐसी भूमि पसंद करनी चाहिए जहां घास स्वाभाविक जीवन प्रारंभ करने वालों को कुछ दिन हवादार पर्ण कुटी में सोना चाहिए। आनंदी और फुर्तीला रहने के लिए यथा संभव प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति में पशु कम सोते हैं किंतु गहरी निंद्रा सोते हैं। हम भी यथाशय आराम के लिए नव जीवन संचार के लिए विश्राम करना चाहिए। थोड़ी और आवश्यक नींद लेने से दृढ़ता दीर्घायु एवं नव जीवन आता है। अधिक नींद लेने से आलस्य बढ़ता है, आयु और समय का भी नाश होता है। कृत्रिम शिथिलता अधिक निंद्रा का परिणाम हो सकती है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी सोचा है या सुना होगा, आपने सुना होगा कि हम जब भी योग के लिए बताते हैं तो हमेशा से ये कहते हैं कि जमीन पर बैठकर योग नहीं करना है, मतलब जमीन पर कुछ बिछा करके ही बैठ करके योग करना है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, जमीन का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के साथ मिलकर के एक नई ऊर्जा बनाता है, जिसके कारण से योग से निकलने वाली ऊर्जा का जो स्तर है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम योग करें तो हमें कुछ न कुछ चटाई मैट या कोई पुरानी चादर बिछा करके ही बैठ करके हमें योग करना चाहिए। लेकिन आज कुछ दो ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जिसको करने से सीधा का सीधा पृथ्वी का जो लाभ है, पृथ्वी से निकलने वाला गुरुत्वाकर्षण है, उसका लाभ हमें निरंतर मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे प्राणायाम जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो आपको करना है, तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं मात्र दो ऐसे प्राणायाम जो सीधा सीधा पृथ्वी से जुड़ करके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है ध्यान योग मुद्रा। ध्यान योग मुद्रा यदि हमें पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण को लेना है तो हमें किसी मैट या चटाई पे नहीं बैठना है। दूसरा है शवासन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कई बार कि सब प्राणायाम योग करने के बाद में शवासन जरूर करना चाहिए। जमीन पर आराम से शरीर को ढीला करके लेट जाना होता है और सारी प्रक्रियाओं को आंतरिक स्थिति से यानी मनोस्थिति में उस पूरे योग प्राणायाम को दोहराना है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का कोई जानवर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, मनुष्य इन मादक पदार्थों का विष लेकर सेवन करता है और प्रकृति के द्वारा सजा पाता है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बैठिए, सोइए, चलिए, विश्राम कीजिए। पृथ्वी की आर्द्रता या सर्दी से न डरकर घूमने फिरने या यात्रा के लिए जमीन पर बैठकर या सोकर आराम करने का अभ्यास चाहिए। उत्तेजित मस्तिष्क वाले आदि वातग्रस्त मनुष्यों को शांतिपूर्वक पृथ्वी पर बैठने और सोने से अधिक लाभ मिलता है। रात्रि के समय प्रकृति से एक नया जीवन प्रभाव निकलता है। रात्रि के समय पृथ्वी की शक्ति अति प्रबल हो जाती है। तो आइए हम आपको कुछ और ऐसे योग से आपको बताने जा रहे हैं जो कि हम घर में बैठ करके ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो छोटे छोटे योग

नमस्कार, सुप्रभात प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी सुबह की पहली किरण, जहां हर शब्द में शांति है, हर भाव में विश्वास है। आज की पहली किरण समर्पित है उस प्रकाश को जो युगों से अंधकार को दूर करता आया है, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म का जीवंत स्वरूप, प्रभु श्री राम। राम केवल एक राजा नहीं थे, राम एक विचार थे, राम एक मार्ग थे और वो आज भी हैं, हम सभी के मन में, हम सभी के आदर्श के रूप में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आज हम बात करेंगे श्री राम प्रभु को सबसे ज्यादा जिसके लिए लोकप्रियता मिली, जी हाँ, और उनको एक और उपाधि मिली, वो थी मर्यादित होने की, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसका अर्थ है वह पुरुष जो पुरुषों में आदर्श स्वरूप हो, जिन्हें धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के लिए उच्चतम मानदंडों का पालन करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अर्थ है वो आदर्श पुरुष जिन्होंने धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए जीवन जिया और एक श्रेष्ठ शासक, पुत्र, भाई, पति और मनुष्य के रूप में हर किसी के लिए एक आदर्श स्थापित किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब है मर्यादाओं के पालन में सर्वश्रेष्ठ। मर्यादा का अर्थ है सीमा, नियम, कर्तव्य, धर्म और गौरव के साथ सदाचार। पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष या पुरुषों में उत्तम। अब आइए जानते हैं कि आखिर में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा क्यों गया, क्योंकि इन्होंने वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास काटा, राजपाट, परिवार और सुख का त्याग किया। इन्होंने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए शासन किया, जिससे रामराज का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इन्होंने एक आदर्श पति, पुत्र और भाई के रूप में सभी रिश्तों को निभाया, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त करके सभी सद्गुणों से युक्त अपना जीवन यापन किया। संक्षेप में कहूं तो श्री राम ने अपने आचरण और जीवन शैली से मानवता के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और आदर्श बना सकता है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो हम सभी के हृदय में वास करते हैं, श्री राम प्रभु।

मर्यादित होने के कई सारे गुण हैं, जिसमें एक गुण ये भी है कि प्रभु श्री राम के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के उपरांत भी उन्होंने एकमात्र धर्म पत्नी यानी माता सीता का सदैव अनुसरण किया, जिनसे विवाह उन्होंने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर किया था। हालांकि कुछ कम प्रचलित कथाओं जैसे जैन रामायण में उनका उल्लेख अन्य पत्नियों के साथ भी मिलता है, पर मूल वाल्मीकि रामायण और धार्मिक मान्यता के अनुसार वे सीता के प्रति निष्ठावान रहे और उनका जीवन एक पत्नी व्रता का प्रतीक है जिसमें अन्य रानियों का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान श्री राम की एकमात्र पत्नी देवी सीता थी, जो राजा जनक की पुत्री थी, जो की आदर्श पत्नी और धर्म पत्नी का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोक कथाओं और जैन रामायण जैसे ग्रंथ में राम के कई विवाह जैसे उत्तरा, वरुणी और लक्ष्मी के साथ बताए गए हैं, लेकिन ये मुख्य धारा की धार्मिक मान्यताओं और वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। राम ने सीता के प्रति अपनी निष्ठा यानी एका पत्नी व्रता का पालन किया और उनके जीवन को आदर्श के रूप में देखा जाता है, जहाँ वे केवल सीता के प्रति समर्पित थे। तो आइए हम भी अनुसरण करते हैं सियावर रामचंद्र का।

यूं तो श्री राम के बहुत सारे गुण हैं, पर श्री रामचंद्र की खासियत उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, आदर्शवादी व्यवहार, विनम्रता, धैर्य, न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्यता में निहित है, जिन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा के रूप में हर रिश्ते में अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अपने शांत, सौम्य और तेजस्वी चरित्र के कारण चंद्र कहलाए, जो शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है।

अब मैं चर्चा करना चाहूंगी श्री राम प्रभु के उन गुणों के बारे में जो आज भी अनुसरण किए जाते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रचलित गुण मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। वे हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन करते थे, जिससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा, उन्होंने हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किए, जैसे पिता की आज्ञा का पालन यानी वनवास, भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से प्रेम और एक निष्ठावान मित्र यानी सुग्रीव और निषादराज की मित्रता, धैर्य और सहनशीलता, कठिन से कठिन परिस्थितियों जैसे वनवास और सीता के हरण में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, विनम्रता और सौम्यता। राजा होकर भी वे अत्यंत विनम्र और मिलनसार थे। उनका स्वभाव शीतलता प्रदान करने वाला था, इसलिए उन्हें चंद्र यानी चंद्रमा कहा गया। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक, वे एक न्यायपूर्ण और प्रजा के हित चाहने वाले राजा थे। सत्यनिष्ठा और वचन के धनी, वे अपने वचनों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह पिता के वचन का पालन हो या फिर मित्र के साथ किया गया वादा। परोपकारी, वे दूसरों का भला करने वाले संत हितैषी थे। तेजस्वी और शक्तिशाली, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे और दानवों का नाश करने वाले थे, लेकिन उनका तेज सौम्यता से युक्त था। कुशल संचारक और अनुशील, वे स्पष्ट बोलते थे और हर परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लिया करते थे। तो इतने सारे गुणों से युक्त रहा जीवन हमारे प्रभु श्री राम का। उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इन आदर्शों से कुछ तो चुरा लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं श्री राम प्रभु के एक और गुणगान यानी भजन की ओर।

से मिलकर बना है। रमना यानी आनंद देना और दूसरा रम यानी समा जाना, जिसका अर्थ है परमात्मा या सर्वव्यापक। चंद्र जिसका अर्थ है चंद्रमा यानी शीतलता, सौंदर्य और चमक। जिस नाम का अर्थ ही इतना सुंदर हो, सोचिए वो स्वरूप कितना प्यारा होगा।

श्रोताओं, ये नाम यानी रामचंद्र भगवान राम की शांति, सुंदरता और दिव्य गुणों को चंद्रमा के साथ जोड़ता है, जो उन्हें सुखदायक और आकर्षक बनाता है। ये नाम धार्मिकता, वीरता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। ये दक्षिण भारत में एक आम नाम है, एक उपनाम है, खासकर तमिलनाडु और केरल में, और पूरे भारत में लोकप्रिय भी है। ये भगवान राम के प्रति भक्ति और सम्मान को दर्शाता है।

वैसे तो श्री राम एक पूरा युग अपने अंदर समेट के चलते हैं। त्रेता युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता माने गए हैं प्रभु श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक बनकर सीता के साथ 14 साल का वनवास किया और रावण का वध किया, जिससे वे आदर्श पुत्र, पति और राजा के रूप में पूजे जाते हैं।

श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए।

इनके कुछ और उपनाम भी हैं, जैसे राघव, दशरथी और रामलला, जिनमें सबसे प्यार से अगर हम किसी नाम से बुलाते इन्हें तो वो है रामलला, क्योंकि आज भी हम उन्हें एक तन्हे से, सौम्य, प्यारे से, कोमल बालक के रूप में देखना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का अवतार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर धन की स्थापना की और दुष्ट रावण का संहार किया। संक्षेप में कहें तो भगवान राम हिंदू धर्म के एक केंद्रीय चरित्र हैं, जो नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं, जिनकी कहानी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार

राम यानी अयोध्या की पावन भूमि पर जन्मा एक बालक जिसके चेहरे पर करुणा, हृदय में धैर्य और आचरण में धर्म था। वनवास मिला पर राम ने प्रश्न नहीं किया, सिंहासन छूटा पर सत्य नहीं छोड़ा, राज्य गया पर मर्यादा नहीं गई। वन में रहकर भी राम राजा थे क्योंकि उनका राज मन पर था, किसी अन्य पर नहीं। श्रोताओं, अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आज का राम। आज के युग में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रामू। पिता ने वादा किया था मेले ले जाएंगे पर अचानक काम आ गया। रामू उदास हुआ पर बोला, पापा आप काम कीजिए, देश और घर पहले है। माँ ने पूछा, बेटा गुस्सा नहीं आया? रामू बोला, राम जी ने भी तो वनवास स्वीकार किया था। यही है आधुनिक युग का राम, कर्तव्य पहले, भावना बाद में।

श्रोताओं, श्री राम के जीवन से जो सीख मिलती है वो कुछ यूं है, माता पिता का सम्मान करें। आज के बच्चे सवाल करते हैं, राम ने स्वीकार किया था, सत्य का साथ दें। आज लोग सुविधा देखते हैं, राम ने धर्म देखा था, त्याग की भावना। आज मेरा अधिकार चलता है, राम ने मेरा कर्तव्य सिखाया। नारी सम्मान, सीता के लिए समुद्र पार किया, आज समाज को वही सम्मान चाहिए। तो अगर अपने जीवन को किसी काबिल बनाना है तो थोड़े से आदर्श हमें श्री राम के जीवन से अपने जीवन में उतारने चाहिए।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

अयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा?
1: और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

बेशक एक मुलाकात जरूरी है सनम, दैट्स व्हाई हम आ चुके हैं आपके अपने वाले स्टूडियो में। घड़ी में वक्त हो चला है 9:14 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने कोना शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं आपका अपना वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा, क्योंकि भाई गुड मॉर्निंग गोंडा तो होना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह आज इतना ट्रैफिक क्यों था भाई साहब? भाई कहाँ पे ट्रैफिक था ये हम आपको बता दे रहे हैं। आज सुबह सुबह उठते ही, घर से बाहर निकलते ही लोगों की मुलाकात न जाने किस किस से हो रही है। मेरी मुलाकात ट्रकों की लाइन से होकर आई है और मैं देख रही थी, मैं ट्रक गिनती जा रही थी कि कहाँ तक ये लाइन जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ, नवीन गल्ला मंडी से थोड़ा आगे से लेकर के पेट्रोल पम्प के थोड़ा पीछे तक ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं बहराइच रोड, तो ज़रा संभल के जाइएगा, क्या पता ये जाम दिन ब दिन बढ़ता जाए, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा ऑफकोर्स। लेकिन अगर आप दोपहर तक इंतज़ार करते हैं तो मे बी ये ट्रैफिक नवीन गल्ला मंडी से हटकर बड़गांव पुलिस चौकी पे मिल जाए, क्योंकि भाई बड़गांव पुलिस चौकी बहुत ज़्यादा व्यस्त चौक रहता है। मतलब ऐसी वो चौराहा है जो ऑल द टाइम बिजी रहता है, आपको चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल ही जाता है। ये तो छोटा सा ट्रैफिक का रूल था जो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। और आज स्पेशली सैटरडे वाली मॉर्निंग एक ऐसी सुबह जो हमें इजाज़त देती है थोड़ा रुकने की, थोड़ा संभलने की, क्योंकि पूरे हफ्ते की थकान को पीछे छोड़कर आज आप मिलते हैं खुद से। आज वीकेंड है ऑफकोर्स, और ऑफकोर्स कल संडे आने वाला है। संडे की खुशी किसको नहीं होती, स्पेशली संडे आने से पहले की जो खुशी होती है वो सैटरडे में ही होती है। लोग सैटरडे की ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि कल संडे है, और संडे आते ही मंडे की टेंशन पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे यार अब फिर से मंडे आएगा, फिर से काम पे जाना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन सैटरडे में काम करके जैसे ही घर पहुँचो, ओहो हो क्या खुशी मिलती है कि फाइनली एक संडे मेरे नाम मिला जिसमें हम ढेर सारा सोएंगे, सुबह देर तक सोएंगे। और ये होता नहीं है क्योंकि हम रहते हैं भारत में, और भारत में अगर हमें सोच कर सोते हैं कि सुबह देर तक सोएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। या तो मम्मी उठा देती हैं या तो काम का टेंशन इतना होता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको स्पेशली पता होगा कि भाई संडे का काम सोने वाला नहीं होता है, वो काम का दिन होता है और उस दिन सिर्फ सफाई अभियान चल रहा होता है। अगर उस दिन कोई नगर पालिका का इंसान मुझे आकर देख लेना तो तुरंत भर्ती कर लेगा ये सोच कर कि बहुत कामकाजी बिटिया है। फिलहाल इस कामकाजी दौर में और आज के इस ठहराव वाले दिन में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त थॉट हम लेकर आए हैं। जो थॉट ऑफ द डे होने वाला है आपका, जो बहुत ही कमाल का है, फिलहाल वो कहता क्या है ये हम आपको बताते हैं। लेकिन छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक के उस पार, तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग हुडा। और ऑफकोर्स इस गाने के उस पार हम बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर आए हैं। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपके अपने गोडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। तो भाई आइए चलते हैं हमारे थॉट ऑफ द डे की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा जो विचार है वो आपसे क्या कुछ कहता है।

भाई आज का थॉट ऑफ द डे है, मोस्ट ऑफ द थिंग यू आर एंशियस अबाउट नेवर एवर हैपेंस, यानी कि आप उन आपदाओं से ज्यादा परेशान होते हैं जो कभी घटती ही नहीं, बजाय उन समस्याओं के जो वास्तव में हमारे सामने होती हैं। अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो बात बहुत ही ज्यादा सिंपल सी है कि हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं जो हमारे साथ कभी घटती ही नहीं है। हम हमेशा से अपने दिमाग में न जाने कितने फितूर लेकर चलते हैं, कितने सवाल लेकर चलते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम उसकी 99.99% नेगेटिविटी, उसके फेलियर्स को डिसाइड कर लेते हैं, और 1% जो चांस होता है पॉजिटिविटी का, 1% जो चांस होता है सक्सेस का, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स कभी हुई ही नहीं होती हैं, बस हमारा दिमाग उसे कहीं ना कहीं से उठाकर बना देता है, और आपको लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली होने वाली हैं, ये प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं, ऐसा ही होता है, और ऐसा होने के चक्कर में फिर आप कुछ भी नहीं करते हैं। दैट्स वाई लाइफ और भी ज़्यादा टफ हो जाती है, जो इतनी ईजी सी चीज़ है। लाइफ बहुत आसान है, बट हमारी सोच और हमारी ओवर थिंकिंग, यानी कि वो चीज़ें जो हम अपने दिमाग में खुद से बना लेते हैं, वो सारे सवाल, वो सारे सिनेरियो, वो सारे सीन्स, वो सारी बातें जो हमें लगता है कि शायद कोई और आकर कहेगा, या प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं लाइफ में क्रिएट होने वाली हैं, वो सारे ख्याल हम अपने दिमाग में खुद से डेवलप करते हैं, ना कि कोई और आकर उसे बताता है, ना वो सच में कभी घटी होती है। तो ये बात सीधी है कि आप जिस चीज़ से परेशान हो रहे हो सकता है हकीकत का उससे कुछ भी लेना देना ना हो, हकीकत में वो कभी हुआ ही ना हो, बस आपके दिमाग ने आपके अंदर ये तूफान मचा रखा है और आप एक ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जो कभी हुई ही नहीं। तो अगली बार जब भी आपको सामने कोई प्रॉब्लम दिखे तो पहले आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी है जितना आपके दिमाग में चल रही है, या फिर बात कुछ और है और आपका दिमाग आपके साथ खेल कुछ और खेल रहा है। तो आज का थॉट ऑफ द डे आपको बस यही सिखाता है कि आप उन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं जो कभी हुई ही नहीं है, सिवाय बल्कि उनके जो आपके साथ घटित होती हैं, यानी कि आपके साथ जो होती है। अब आप बताइए आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा और क्या आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है 99.99% लोग होंगे जो इस थॉट से ज़रूर रिलेट करेंगे, जो ये बात ज़रूर कंफर्म करने वाले हैं कि हाँ, लाइफ में जब भी कुछ छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी भी इशू होती है, तो हम उसको बड़ा बना देते हैं सिर्फ सोच सोच कर, और लास्ट में समझ में आता है अरे यार ये बात तो उतनी थी ही नहीं जितना हमने सोचा। चैट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा और आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के इस पर आते हैं, फिर चलते हैं आपके चैट बॉक्स के मैसेजेस की तरफ, जो आपने कुछ चंद पैगाम हमारे लिए भेज दिए हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड मॉर्निंग गुंजा, और आपके लिए पेश है हमारा अगला गाना, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, तेरा दीदार हुआ। स्टे ट्यून्ड।

0: गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग ओडा में। मैं हूं आपकी आरशी रति और आप सुन रहे हैं आपका अपना एफएम रेडियो 11.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन। तो भाई चैट बॉक्स पे चलने से पहले मैं उन सभी लिसनर्स का वेलकम करना चाहूंगी वापस से जो हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और एप्लीकेशन से। और वो लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, उनके कुछ मैसेजेस आ चुके हैं चैट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं भाई क्या कुछ लिख भेजा है उन्होंने। सबसे पहले मैसेज जो आया है वो आया है प्रीति शुक्ला जी का, जो हमें सुनती हैं बहराइच से, और उन्होंने लिखा है प्रातः वंदन नमन के साथ चाय। थैंक यू सो मच प्रीति जी, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोना में। आशु मिश्र जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो हमें सुन रही हैं लखनऊ से, और लिखा है प्यारा सा सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोना में। सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल की ओर खुद ही चलना पड़ता है, क्या बात है। एंड इसके बाद लिखा है ताकत सत्ता जवानी सबकी एक्सपायरी डेट होती है, इसीलिए हमेशा विनम्र रहिए। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बस उसके गुनाहों को ढक देती है। क्या बात है भाई, आज तो काफी डीप बातें कर रहे हैं सुशील यादव जी, बहुत ही खूब लिखा है आपने। सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, कैसी हैं सविता जी आप, आपका स्वागत करते हैं हम। एनएन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा में। अनुष्का श्रावस्ती जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो मैं श्रावस्ती सुनती हूं ऑफकोर्स, लिख रही हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप, आपको भी हैव अ नाइस डे। धर्मेंद्र मोहन जी जो सुनते हैं मैं आवाज विकास से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं जी वेलकम, गुड मॉर्निंग टू यू, एंड आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। श्रीनाथ पटेल जो हमें सुनते हैं छपिया से, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में, एंड हैव अ नाइस डे। तो भाई आज सैटरडे का जो आपको दिन मिलता है ना, वो मिलता है खुद के लिए, खुद के ठहराव के लिए। और इसी ठहराव में एक और मैसेज आया है, एनन जी लिख रही हैं उन्नति मैं ऊपर वाला जो चैट है वो मैंने भेजा ही नहीं। ऑल राइट, फिलहाल कोई बात नहीं, अगर आप वो नहीं हैं तो आपका भी हम स्वागत करते हैं एनन जी वापस से गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड ऑफकोर्स दोस्तों आज हम बात करते हैं सैटरडे की, यानी कि शनिवार रात मुझे नींद नहीं आती, ये होता है क्योंकि कल होता है संडे, और हमें लगता है भाई कि अगर आज रात जग भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कल तो संडे है, कल देर तक सोने वाले हैं। बट होता है इसका एक्चुअल में उल्टा है, जहां आपको पूरे हफ्ते नींद इतनी तेज आती है कि सुबह उठा नहीं जाता, अलार्म फेल हो जाता है, पापा की डांट फेल हो जाती है, मम्मी की बातें फेल हो जाती है, वहीं संडे के दिन आप खुद ब खुद सुबह उठ के बैठ जाते हैं और आप सोचते हैं यार एक दिन की छुट्टी मिली थी तो सो क्यों नहीं पा रहे, क्यों नहीं सो पा रहे, क्योंकि भाई आपके अंदर वो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है संडे की कि आपकी नींद फर्र हो जाती है। मेरे साथ तो एक्चुअल में ऐसा होता है, जब भी मुझे एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा रहती है तो नींद अपने आप पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, उड़ जाती है। बट क्योंकि भाई आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन आज हर कोई कहीं ना कहीं जाने का भी प्लान बना रहा होगा, और अगर आप नहीं बना रहे तो भाई साहब क्या कर रहे हैं आप। आज वीकेंड है, आपको आफ्टर ऑल सैटरडे एंड संडे दो दिन का वक्त मिलता है खुद के लिए, खुद पर काम करने के लिए, क्वालिटी टाइम्स के लिए, फैमिली टाइम के लिए, मी टाइम के लिए, सेल्फ केयर के लिए। और सेल्फ केयर, सेल्फ मोहब्बत जो होती है इसको हम इतना निग्लेक्ट कर चुके हैं कि हमको लगता है भाई अगर हम खुद से मोहब्बत करेंगे तो इससे बड़ा सेल्फिश काम हो क्या सकता है, इससे ज़्यादा कोई सेल्फिश काम है ही नहीं धरती पर। सबसे बड़ा गुनाह हमने किया है, सबसे बड़ा पाप हमने किया है, और इसीलिए हम खुद से कभी मोहब्बत करना ही नहीं सीख पाते। और जब भी कोई बात करता है सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की, तो हमें लगता है भाई कि सलोन में जा कर के मेकअप शेकअप करा लेना यही तो होता है सेल्फ केयर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सेल्फ केयर एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है जो आपके हर एक रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आपको बता दें कि अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, और अपने आप से मोहब्बत करने के बाद आप अपनों से मोहब्बत करते हैं। कभी देखा है किसी को बिना खुद से मोहब्बत करे जंग पे जाना? जी हाँ, वैसे तो कहते हैं कि भाई दूसरों से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करना भी चाहिए, लेकिन उतना ही ज़रूरी है खुद से भी प्यार करना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं आती। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है, किसी ने तो कहा था, किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर आपको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें चाहिए जो आप
सोचते हैं, आप विश करते हैं, विश लिस्ट में रखते हैं, तो उससे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी आपको खुद से प्यार करना। अगर आप खुद की केयर नहीं करते हैं, खुद से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपसे मोहब्बत करेगा। तो ये सेल्फ केयर करनी कैसे है, ये सैटरडे संडे में जो आपको मी टाइम क्वालिटी टाइम मिला है, इसको आप अपने लिए कैसे बनाने वाले हैं, ये हम बताते हैं आपको, ताकि आप इधर उधर जाके गूगल सर्च में अपना पूरा टाइम ना निकाल दें और ये ना सोचते रहें कि ये सेल्फ केयर क्या चीज होती है। ये सोचने से पहले आपको हम बता ही देंगे कि आज क्या होता है, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ करना है आपको अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ लव के लिए। स्टे ट्यून्ड।

इश्क मुबारक दर्द मुबारक। बेशक आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गुना, मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सबने ट्यून कर लिया है आपका अपना एफएम रेडियो कैनस 89.6 एफएम। यह गुना शहर की धड़कन पर हम बात कर रहे थे इश्क की, मोहब्बत की, प्यार की, लेकिन शुरुआत ही करनी है खुद से, क्योंकि मोहब्बत की पहली सीढ़ी खुद से होकर गुजरती है और उसके बाद आप किसी और से उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आपको वैसे ही चाहें। क्योंकि अगर आप खुद को प्यार ही नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई और अगर आपको प्यार करने वाला है। तो फिलहाल सेल्फ केयर, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, ये दो टाइम ऐसा होता है, दो दिन आपको मिलता है जिसमें आप अपना मी टाइम, अपना सेल्फ केयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब वो करना क्या है वो हम बता देते ताकि आप गूगल पे जाकर पूरा हफ्ता ना निकालें।

आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की। लोग सोचते हैं कि सेल्फ केयर का मतलब है महंगे महंगे स्पास में जाना, शॉपिंग करना, लेकिन सच तो ये है कि सेल्फ केयर एक जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं। तो कैसे करें खुद से प्यार और खुद की देखभाल, चलिए आज कुछ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, जो शायद आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। जो अगर आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे

आप चाहते हैं कि आप उसे बाहर आएं, खुद को हील करें। तो भाई सबसे पहली बात तो आती है कि अपने इनर वॉइस को बदलें। आपके अंदर से जो आवाज़ आती है वो आपके लिए बड़ी अलग आती है। हम दूसरों से जब भी बात करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट लहजे में बात करते हैं। हम ऐसे बात करते हैं यार कि वाओ कोई बात नहीं, सो क्यूट। लेकिन वहीं पर जब खुद की बात आ जाती है तो हम खुद के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं। जैसे आपको अगर एग्जाम्पल से समझाया जाए तो आप अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आपकी स्किन में रैशेज आ जाते हैं। वैसे ही आपकी आवाज़ होती है जो आपके अंदर से आती है और आपके सोल पर, आपके हर्ट पर, यानी कि आपके दिल पर रैशेज करती है। आपको भी पता है जब आप खुद के लिए खुद से बात करने बैठते हैं तो आपको हज़ार तरह की बातें सुनाई जाती हैं। तुमसे एक काम भी नहीं होता, तुमसे बड़ा फेलियर कोई नहीं है। न जाने ऐसी कितनी बातें आती हैं, स्पेशली जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जो हमारे लिए टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो, या अभी अभी किसी इंसान ने हमें ना चाहते हुए भी अलविदा कहा हो। तब हम खुद को ही हर चीज़ का दोषी समझकर हर चीज़ में खुद को क्रिमिनल मान लेते हैं, कल्प्रिट मान लेते हैं और खुद को हज़ारों बातें सुनाते हैं। भले ही सामने वाला इंसान आपसे आकर एक शब्द भी नहीं कहेगा, बट आप खुद के लिए इतनी सारी बातें, इतनी निगेटिविटी सोच लेते हैं जितना पॉसिबल भी नहीं हो सकता। इसलिए आज का थॉट ऑफ द डे भी यही था कि कुछ प्रॉब्लम्स कभी होती नहीं है, बस हम अज्यूम कर लेते हैं, हम बस सोच लेते हैं। और यही होता है जब हमारी इनर वॉइस हमें बार बार आकर उस चीज़ के बारे में बोलती है। कहीं गलतियां हुई हैं तो खुद को भी माफ़ करना सीखिए। हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं ये कहकर कि माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है, बट जब बात खुद की आती है तो हम ये सारी नॉलेजेबल चीज़ें, सारी ज्ञान की बातें कहीं भर के पोटली में फेंक आते हैं। गोंडा वाले तो पांडे तालाब में फेंक कर आते हैं, बहुत गहरा है। तो भाई सबसे पहले आप अपनी इनर वॉइस बदलेंगे, आप अपने खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होंगे क्योंकि आप जज नहीं हैं। जो आप हैं नहीं उसको करने की कोशिश ना करें। खुद के लिए भी सॉफ्ट हों, सिचुएशंस को समझना शुरू करें, खुद को वक्त देना शुरू करें। इसके बाद आता है भाई कि ना कहना सीखें, क्योंकि हमारे इंडिया में कभी भी किसी को ना कहना नहीं सिखाया जाता। हमें लगता है कि अगर हम किसी को ना कहेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, अगर हम किसी बड़े को ना बोल देंगे तो हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अगर हम अपने पार्टनर को ना बोल देंगे तो हम उससे प्यार नहीं करते हैं। और इसकी वजह से आप न जाने कितनी ही बातें, कितनी ही चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपके लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपको हार्म करती हैं, इसके बाद भी आप वो काम करते हैं क्योंकि आपको हमेशा से सिखाया गया है कि अच्छे बच्चे ना नहीं कहते। बट हम आपको बता दें भाई कि अच्छे बच्चे ना कहना जानते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी चीज़ से उन्हें दिक्कत हो रही है, किसी चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ है जो उनके दिल पर कहीं ना कहीं कुछ खरोच रही है, कोई निशान छोड़ रही है, तो उसको ना कहना ज़रूरी है। फिर भले ही बात वो पैसे की हो, अब आपने भी देखा होगा कि आप किसी को पैसे दे तो देते हैं लेकिन मांगने में मौत आती है, नहीं मांगा जाता है। आप अपने पैसे किसी से नहीं मांग पाते हैं। क्यों नहीं मांग पाते? क्योंकि हमें हमेशा बचपन से राजा बाबू बनाया गया है और राजा बाबू ने ना कभी मांगना सीखा है, ना कभी ना बोलना सीखा है। तो सेल्फ केयर का सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा ऐसा क्यों ना हो कि आपका वो पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको इमोशनली, आपके मेंटल पीस को हर्ट कर रही है, तो प्लीज़ ना बोलना सीखिए। ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आप कॉलेजेस में हो, चाहे आप एक जॉब के अंदर हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, खुद का ही बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, अगर आप ना नहीं बोलते हैं तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूं ही गंवा देते हैं। फिलहाल बात करते हैं तीसरी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल हर कोई इसके अंदर डूब चुका है। जैसे चाशनी के अंदर रसगुल्ले डूबे होते हैं, वैसे ही आजकल लोग फ़ोन के अंदर घुसे हुए हैं, फ़ोन में डूब चुके हैं और बाहर निकलने की नहीं सोच रहे। तो भाई आजकल एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिजिटली डिटॉक्स करना, यानी कि डिजिटल डिटॉक्स करना खुद को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर वक्त अगर आपको थकान लगी रहती है, हर वक्त आप परेशान रहते हैं और आपको लगता है यार दिन बहुत छोटे हो गए हैं, काम नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न होता है कि आपका पूरा वक्त फ़ोन के अंदर जा रहा है। इसीलिए आप हमेशा थके थके, सर में दर्द, डिप्रेस, न जाने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। तो भाई खुद को डिजिटली डिटॉक्स करना शुरू करें।
डिजिटली डिटॉक्स कैसे करना है तो ये भी हम आपको बता दें। सबसे पहले तो अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही है, जब भी हम खुद को डिजिटली डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं हमारा फ़ोन पीछे से कहीं टिंग से घंटी बजाता है और हमारा दिमाग तुरंत पीछे पहुंच जाता है कि अरे नहीं यार, इसमें भी तो कुछ आया होगा, कुछ पक्का किसी ने मैसेज किया होगा, और पता चलता है वो मैसेज किसी का नहीं था बट हमारे हाथ में फ़ोन आ चुका है, स्क्रीन ऑन हो चुकी है, तो थोड़ा स्क्रॉल ही कर लें। स्क्रॉल करते करते करते करते ज़माने गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो तो मम्मी आ जाती है और कहती है भैया कितनी देर फ़ोन चलाओगे, तब आके समझ में आता है कि पिछले 2 घंटे से हम स्क्रॉल कर रहे हैं और 2 घंटे में दुनिया भर की चीज़ें की जा सकती थी और वो हमने मिस कर दी हैं। और ये बात सिर्फ आपसे कही जा सकती है, आप दूसरे को भी सलाह दे सकते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करो, लेकिन शुरुआत खुद से करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ केयर का दूसरा पॉइंट, यानी कि कहें तो तीसरा पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स करना, यानी कि स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, स्क्रीन से थोड़ा दूर हटना, अपने फैमिली को टाइम देना, खुद को टाइम देना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, और अगर आप किसी के साथ स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो भाई अकेले कीजिए, म्यूजिक सुनिए, अपनी फेवरेट मूवी देखिए, म्यूजिक सुनिए, बट रैंडम ही स्क्रॉल मत कीजिए जिससे आपका कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं होते हैं शाम के वक्त। जी हाँ, शाम के वक्त एक घंटी बजती है और उसके बाद लोग अपना फ़ोन रख देते हैं कुछ मिनट के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद वो फ़ोन नहीं छूते हैं। भले ही चाहे दुनिया इधर से उधर आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन वो लोग अपना फ़ोन नहीं उठाते हैं अगर कोई इमरजेंसी की बात नहीं है तो। वो उसके साथ बैठते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते हैं, अपने दिन भर की बातें साझा करते हैं और 2 घंटे बाद अपना फ़ोन वापस ले लेते हैं। ये उनका एक रिचुअल है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरा गांव एक साथ डिजिटल डिटॉक्स की तरफ बढ़ सके। तो भाई मुझे लगता है कि आपको भी अपने लिए 1/2 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का वक्त ज़रूर देना चाहिए हर दिन में खुद को डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि तुलना, परेशान होते हैं ना, और आपको लगता है कि भाई उसने तो सब कुछ कर लिया, 25 साल की उम्र में कोई CEO बन गया, यहाँ मैं 30 का हो चुका हूँ, जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा होता है, ऐसा आपने कई दफ़ा देखा होगा, इवन अगर आप अपने दोस्त के साथ भी बैठे हैं और अगर एग्ज़ाम की ही बात चल रही है और वो क्रैक कर ले जाते हैं या उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो हम खुद के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं। पहले हम परेशान रहते हैं कि मम्मी पापा हमें किसी न किसी के साथ तुलना कर रहे हैं, बट बाद में हम खुद ही खुद को किसी न किसी के साथ कंपेयर ज़रूर करते हैं। तो भाई खुद को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर मछली से कहा जाए कि वो आसमान में उड़ के दिखाए तो वो नहीं उड़ पाएगी, और अगर आसमान में उड़ने वाले बाज से कहा जाए कि वो मछलियों की तरह समंदर में गोते लगाए तो उससे वो भी नहीं होने वाला है। अगर मैं ये कहूँ किसी दूसरे जानवर से जो शायद ज़मीन पर रेंगने का काम कर रहा है, उससे मैं कहूँ कि तुमको बंदरों की तरह उछलना है तो वो नहीं उछल पाएगा, और मैं बंदरों से कहूँ कि तुम्हें सांप की तरह ज़मीन पर इधर से उधर लोटना है, सरकना है, तो वो उससे नहीं हो पाएगा। तो भाई आपकी अपनी जगह होती है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप खुद की तुलना किसी से ना करें। हो सकता है आप आसमान के बाज हों तो आप समंदर में गोते लगाने वाली मछलियों से कभी भी खुद की तुलना ना करें, क्योंकि आप अपने फील्ड में माहिर हो सकते हैं, अपने फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद आती है भाई छोटी खुशियों को ट्रीट दें। अब ट्रीट ये हेल्थ से भी आपके जुड़ी हुई है, छोटी छोटी खुशियाँ। आपको कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं, इसके बाद भी आपको थोड़े सा कुछ खाने का मन करता है, तो आजकल का डर इतना ज़्यादा है कि भाई इसमें प्रोटीन उसमें प्रोटीन, आटा चावल दाल ये वो फलाना ढिमका, सब में तो प्रोटीन डाल रखा है, प्रोटीन को सुपर फूड बना रखा है, और इसीलिए जब हम खुद को ट्रीट देने की भी कोशिश करते हैं तो हम डर जाते हैं कि नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा। पोषण कंट्रोल करके आप कुछ भी खाते रहिए, मज़े से इन्जॉय करते रहिए, और ऐसे ही खुशियों के साथ भी होता है, खुद को छोटी छोटी चीज़ों का ट्रीट ज़रूर दीजिए। अब अगर आप खुद को डिजिटली डिटॉक्स कर रहे हैं तो उतनी देर में एक बढ़िया सा स्किन केयर करके आराम कीजिए ताकि आपकी स्किन रिफ़्रेश फील हो सके। अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ है जिसे आप खाना पसंद करते हैं तो जी बेशक खाइए, ये बिना डर के कि खा लेंगे तो एक दिन में मोटे हो जाएंगे, नहीं होते हैं आप, ना बीमार होते हैं, बस पोषण कंट्रोल करके खाइए, बाकी सब मस्त सब बढ़िया। तो सेल्फ केयर सेल्फ लव कभी लग्जरी नहीं होता, बड़े बड़े स्पाज में जाना या फिर आपने TV में देखा हो कि सेल्फ केयर का मतलब तो होता है सलोन में बैठ के चेहरे पर सफ़ेद कलर की पुट्टी लगा करके, आँखों पर हीरा लगा करके, इसको ही सेल्फ केयर कहते हैं, तो ना जनाब इसको नहीं कहते। सेल्फ केयर एक लग्जरी नहीं है, एक हैबिट है, एक ज़रूरत है जो आप हर दिन
थोड़ा थोड़ा कोशिश करके अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो भाई ऐसे खुद के साथ मोहब्बत कर सकते हैं आप, और यकीन मानिए जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, प्लस आपका दिलो दिमाग किसी भी सिचुएशन से जल्दी हील होता है। तो ये तो था आपके लिए सेल्फ केयर पॉइंट, सेल्फ केयर का सेगमेंट जो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर किसी के साथ ऐसा चल रहा है कि वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, किसी अनएक्सपेक्टेड गुडबाय से, तो आई होप आपके लिए ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि और क्या है आज हमारे खजाने में, हमारी पोटली में आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

कुछ टेक्निकल इश्यू के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं लिसनर्स। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आजादी के साथ 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। तो फिलहाल हम आपके लिए वापस आ चुके हैं लेकर के एक ऐसा बढ़िया सा सेगमेंट जिसमें आपके लिए है बहुत जरूरी जानकारी, और जानकारी उनके लिए स्पेशली जो प्यार करते हैं अपने कुत्ते बिल्ली से। अगर आप अपने डॉग्स या फिर पेट्स के साथ रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उनसे, तो अब आपके लिए वंदे भारत ने कुछ बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ निकाली है। सफ़र जारी है और अब वक्त हो चला है एक ऐसी खबर की तरफ जो आपके वीकेंड ट्रेवल प्लान्स को और भी ज़्यादा ख़ास बना देगी। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके घर में पेट्स होते हैं तो बेचारे कैंसिल कर देते हैं ये कहकर कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे कुत्ते का ख्याल कौन रखेगा। और अगर आप ही उनमें से एक हैं तो फिलहाल वंदे भारत ने आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी योजना निकाली है। योजना क्या है भाई, ये बता देते हैं। एक नया रूल शामिल हुआ है इंडियन रेलवे में, यानी कि है वंदे भारत ट्रेन्स में पेट्स के लिए खास जगह डेडिकेट की गई है। यानी कुछ ऐसे केविन्स हैं जहां पर आप अपने डॉग्स को, अपने कैट्स को रख सकते हैं बिना किसी के बवाल किए। शर्त यह है कि उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और सुनने में आया है ₹30 पर किलोग्राम चार्ज किया जाएगा। ऑनलाइन इसकी बुकिंग नहीं होने वाली है, बुकिंग ऑफलाइन ही होगी, आपको मैन्युअली जाकर इसकी टिकट लेनी पड़ेगी। वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन्स में अब आपको पेट्स के लिए डेडिकेटेड केबिन मिलने वाले हैं, यानी वो जगह, वो रूम्स, वो एरिया मिलने वाला है जहां पर आप अपने कुत्ते को रख सकते हैं, आप अपने पेट्स को रख सकते हैं। पेट्स कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर, जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। पेट्स को पैसेंजर कोचेस के अंदर नहीं बल्कि ट्रेन के दोनों ईंट्स पर बनाया गया है, यानी कि जहां ट्रेन ख़त्म होती है वहां पर बनाया गया है। पैसेंजर कोचेस के अंदर आपके पेट्स नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें ये पेट्स कॉर्नर खास मेटल से बने हुए हैं, डॉग बॉक्सेस में रखा जाएगा, यानी कि उनको चारों तरफ से बंद करके रखा जाएगा एक जाल की तरह। बुकिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इसकी बुकिंग प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होती है, आपको ट्रेन निकलने से कम 3 घंटे पहले स्टेशन के पार्सल या लगेज ऑफिसर से जाकर मैन्युअली बुकिंग करवानी पड़ेगी। क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे। बुकिंग के लिए आपके पास पेट्स के फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यात्रा से 24 से 48 घंटे पहले इसे आप बनवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और ये वैलिड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स भी आपके पास मौजूद होने चाहिए कि आपके जो डॉग्स हैं, आपका जो कैट है, उसमें वो सारे इंजेक्शन्स लगे हुए हैं जो एक पेट के अंदर लगने चाहिए या आपने नहीं लगवाए हैं। तो अगर आपने नहीं लगवाए हैं तो प्लीज़ उन्हें 48 घंटे से पहले लगवा लीजिए ताकि लगेज मास्टर ये ना कहे कि ना भैया तुम्हारा कुत्ता तो नहीं जाएगा अंदर, ऐसा ना सुनना पड़े आपको और आप आसानी से अपने डॉग्स के साथ ट्रेवल कर सकें। यह सुविधा सिर्फ उन पैसेंजर्स के लिए है जिनके पास कंफर्म्ड टिकट है। RAC या वेट लिस्ट में टिकट पर पेट बॉक्स बुक नहीं किया जा सकता। अगर आप वेट लिस्ट पर हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आप बुक कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा, आपके पास कंफर्म टिकट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद ही आपके लिए ये पेट बॉक्सेस मिलेंगे। इसके चार्जेस की अगर बात करते हैं तो इसका किराया पेट के वजन के ऊपर निर्भर करता है जो कि लगभग 30

पर केजी यानी कि 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से टिकट का पैसा लगेगा। अगर आपका कुत्ता 15 किलो है तो 30 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि भाई कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो भाई ये नई सुविधा आपको ट्रेन्स के अंदर मिलने वाली है। जो लोग परेशान रहते हैं कि वो अपने डॉग्स को घर छोड़ के नहीं जा सकते, अपने पेट्स को घर छोड़ के नहीं जा सकते, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने डॉग्स को अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने कैट्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि सफ़र के दौरान वो आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, वो ट्रेन के दोनों कॉर्नर्स पर रहेंगे या फिर जहाँ पर ट्रेन ख़त्म होती है वो वहाँ रहने वाले हैं। मैनुअली इसकी टिकट लेनी पड़ेगी, यानी कि 3 घंटा पहले मैनुअली जाकर आपको इसकी टिकट लेनी पड़ेगी जहाँ से आप लगेज के लिए टिकट लेते हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर रखें कि आपके कुत्तों के, आपको बिल्ली के, आपकी बंदर, जो भी आपने पाल रखा है उसके सभी इंजेक्शन लगे हुए हैं। वेटरनिटी सर्टिफिकेट उनके पास ज़रूर होना चाहिए कि आपके कुत्ते के अंदर, आपकी बिल्ली के अंदर ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे कोई और परेशान हो सके। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए और आप अपने डॉग्स के साथ, अपने पेट्स के साथ पूरा सफ़र एंजॉय कर सकते हैं, उसे बिना घर पे छोड़े, बिना आपकी याद में तड़पाए। तो ये तो थी एक बढ़िया सी न्यूज़ जो फिलहाल पेट लवर्स के लिए या फिर कहें तो पेट पेरेंट्स के लिए काफ़ी शानदार है, काफ़ी जानदार है, काफ़ी मज़ेदार है। आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड ओके, तो इसके बाद आइए चलते हैं आपके चैट बॉक्स की तरफ, लेकिन इससे पहले एंजॉय कीजिए एक बढ़िया सा गाना, थोड़ा सा हाई बीट, थोड़ा सा हरियाणवी टच में सॉन्ग आप एंजॉय करने जा रहे हैं अपने गुड मॉर्निंग गोना में। आपको ये आज की न्यूज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6।
1: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं आपका अपना वाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। यह गोंडा शहर की धड़कन पर वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, यानी कि आपके आई एम मैसेजेस को पढ़ने का।

भाई हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था वो एनएन जी का था, और इसके बाद मैसेज आया था आरके श्रीवास्तव जी का, जो हमें गोंडा से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आरजनती जी एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड एनएन जी लिख रही हैं डियर आरजे मैम थैंक यू एंड नाइस गुड मॉर्निंग आपको और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद आपको, थैंक यू सो मच। एंड ओके तो भाई उन्होंने एंट्री की है मेरी वजह से, थैंक यू सो मच, आप आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू नागेश्वर जी, कैसे हैं आप, और आए हैं तो जरा नींद को खोलिए, चाय की प्याली उठाइए, चुस्की लगाइए और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा। ओके मुझे कोई सेटिंग बता दीजिए जिससे मेरा पासवर्ड कॉपी ना हो सके, ये मैं आपको पर्सनली आके बताती हूँ, मतलब कि आप अपने पासवर्ड को थोड़ा सा हाई लेवल बना दीजिए जिसको गेस करना इम्पॉसिबल हो जाए। नागेश्वर धाकर जी लिख रहे हैं खामोशी से दोस्ती कर ली है मैंने क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं बचा। अजी ऐसे कैसे नहीं बचा, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, मेरे लिसनर्स हैं, ऑफकोर्स आपके दोस्त हैं। धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं ये सही बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए मेरे दोस्त। ऑलराइट एंड उसके बाद लिखा है सुना है कि सुबह सुबह दोस्त को चाय पिलाने से उन्नति बरकत होती है, तो मैम मुझे कब पिला रहे हैं भाई, जब आप चाय बना रहे हैं उसके बाद हम आपको पिला रहे हैं। एंड ओके इसके बाद मैसेज आया है सविता जी का, एंड सविता जी लिख रही होती मैम मैं इसीलिए काम पर जाती हूँ 11 बजे से 3 बजे तक मोबाइल से दूर रहती हूँ, जानकारी बहुत अच्छी मिली, शुक्रिया मैम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि भाई किसी ने कहा था खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है तो मूल जरूर बातें नहीं सोचते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं तो दिन बहुत सुकून से गुजरते हैं। एंड इसके बाद एनन जी ने लिखा है नाइस अवेयरनेस इंटेलिजेंट प्रोवाइड, थैंक यू सो मच। और सविता जी लिख रही हैं मैं खुद से प्यार करता हूँ, ज्ञान असली से जुड़ने के बाद खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, खुद से वादा कीजिए कि भाई सबसे पहले खुद को प्यार देंगे, क्योंकि जब तक आप ही का ग्लास आप ही का कप नहीं भरा होगा आप दूसरों को भी ना कुछ दे पाएंगे ना उनसे कुछ एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी को प्यार देने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करें, और अगर आप किसी से प्यार पाना चाहते हैं तो भी पहले खुद से प्यार करें। एनन जी लिख रही हैं डियर मोती मैम यू आर अ गुड पर्सन एंड गुड आर्जे, थैंक यू सो मच, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद इसके बाद सविता जी के बहुत सारे इमोजीज हैं, थैंक यू सो मच। मैं करता हूँ इंतज़ार सिर्फ संडे को, भाई धर्मेंद्र मोहन जी ने अपना गाना भी भेजा है हमको अपने डांस म्यूजिक का। ओके भाई तो ये गाना आ चुका है, काफ़ी सारे इमोजीज, काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे पैगाम आप लोगों के मौजूद हैं चैट बॉक्स के अंदर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और हम आपको बताते हैं कि भाई आज मेरे पास आपके लिए और क्या क्या है, तक के लिए बने रहिए सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आरजनती के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो भाई एक चीज जिसको आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत और दिमाग की बाजी वही जीतता है जो हर चाल पहले से भाप लेता है। और आज हमारे सैटरडे सुपरस्टार की इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंसान की, एक ऐसी बेटी की जो मात्र 11 साल की है, जिसने पूरी दुनिया में ग्रैंड मास्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या नाम है उनका और उन्होंने 11 साल में ऐसा क्या किया कि वर्ल्ड के जो ग्रैंड मास्टर्स थे वो सोच में पड़ चुके थे। जी मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु की चेस क्वीन एएस शर्वानिका की। शर्वानिका ने हाल फिलहाल में ही सर्बिया में हुए वर्ल्ड कैबिट अंडर 12 गर्ल रैपिड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहरा दिया है। गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने तिरंगा लहराया। और आपको पता है कि हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल की हैं। उन्होंने 10.5 स्कोर किया है। हम आपको बता दें, जहां पूरी दुनिया इंटरनेट पर न जाने कितनों को स्क्रॉल कर रही थी, कितनों को ट्रोल कर रही थी, क्या कमेंट्स कर रही थी, कहीं आप ओवरथिंकिंग कर रहे थे, अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जहां दुनिया लड़ाई दंगों से निकल रही है, जहां दुनिया वॉर से जूझ रही है, वहीं पर तमिलनाडु की बेटी एएस शर्वानिका ने 11 साल की उम्र में चेस क्वीन के नाम से अपना झंडा लहरा दिया है। इनकी न्यूज़ भले ही आपने कम सुनी हो, लेकिन हाथ में ट्रॉफी लेकर, तिरंगे की शान लेकर और इंडिया का नाम रोशन करते हुए वो अपने देश वापस भी

0: से बेहतरीन दुनिया होती है, जो कि होती भी है, बट किताबों के आगे कोई दुनिया नहीं होती। ये बात हमने न जाने कहाँ से सीख ली, जहाँ पहले हम हमेशा पढ़ाई लिखाई खेल कूद सबको बराबर का हिस्सा देते थे, फिर वहीं पर किसी ने एक लाइन बोल दी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सच में क्या खेल कूद इंडिया में इतना बड़ा गुनाह है भाई? हम कहते हैं कि ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं आता है, और जब ओलंपिक्स में गोल्ड लाने की बारी हमारे बच्चे की होती है तो हम उसे पकड़ कर बोलते हैं ना ना ना इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इसमें क्या रखा है, इसमें कौन सा करियर है? बाकी वहीं पर आप देख लीजिए आपके पड़ोसी देश चाइना, जापान, ये अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन कर रहे हैं ओलंपिक के लिए। तो अगर मैं यही चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे में हुनर है, आपका बच्चा आपको लग रहा है कि इसमें बहुत फुर्ती है, बहुत जान है, बहुत एथलेट वाले का हरकतें हैं, तो प्लीज़ आप उसे स्पोर्ट्स में जाने दें। अगर वो कह रहा है कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है तो उसको इताना ना मारे कि हाँ पता है तुम कितने बड़े विराट कोहली बनोगे, उसको मौका दे, क्या पता वो सच में अब आपके देश का, अपने देश का दूसरा विराट कोहली बनकर सामने आए। बस इतनी सी ही गुजारिश है आपसे, और मैं आपको बता दूं भाई खेलकूद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी पर भारत बढ़ता जा रहा है, बच्चों के अंदर मोटापा बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है, स्पेशली वो बच्चे जो शहरों में रहते हैं, जो हमेशा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो हमेशा यही सोचते हैं कि बचपन से ही नीट की तैयारी करनी है। बेशक आप पढ़ाई कीजिए, बेहतरीन कीजिए, मेहनत कीजिए अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, दिन रात मेहनत कीजिए, लेकिन ख्याल ये भी रखिए कि आपको साथ साथ में एक्सरसाइज, थोड़े बहुत वॉक प्लस गेम्स की भी ज़रूरत है ताकि आप फिट रहें। बहुत तेज़ी से भारत के शहरों में बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मात्र उन बच्चों के अंदर जो 15 साल से नीचे है। अगर आप सोच सकते हैं जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं, अगर उनमें ओबेसिटी है तो आगे जाकर उनकी लाइफ क्या होने वाली है? फिर वो बेचारे जिम में जाकर दिन रात मेहनत करने वाले हैं। आप अपने बच्चे को बचपन से एक्सरसाइज करा सकते हैं, गेम्स में अगर उसे इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स गेम्स भी करा सकते हैं और उन्हें खेलने दे सकते हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ गेम्स भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिलहाल आप बताइएगा कैसा लगा आज का आपको शो, और ऑलमोस्ट घड़ी ने कर दिया है इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। तो आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। एंड जाने से पहले इम्तियाज़ अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है। गुड मॉर्निंग टू यू, एंड सभी लिसनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी वक्त से आप सुन रहे हैं मेरे साथ, यानी कि आज के साथ गुड मॉर्निंग हो रहा। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो मुझे दी इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कल फिर मिलूंगी आपसे इंडिया टॉप 20 में लेकर के बॉलीवुड की ज़बरदस्त वाली प्लेलिस्ट, तो सुनना मत भूलेगा। आपका अगला प्रोग्राम है गाँव की गूंज, जिसमें लोकगीत और आपकी गाँव की बातें होती हैं, गाँव की बोलचाल, गाँव की भाषा, जिसे हम ऑलमोस्ट भूलते जा रहे हैं, उसे आप इन्जॉय करने वाले हैं बस कुछ ही लम्हों में, कुछ ही पल में। तो बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो
2: तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर के एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं। आप सभी को बता कर के ये अपार खुशी हो रही है कि गांव की गूंज को एक साल पूरा हो गया, आपके प्यार आपका सम्मान मिला और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आगे भी आपका प्यार आपका सम्मान गांव के गूंज के एपिसोड्स को मिलता रहे। इस बार का एपिसोड हमारा मनकापुर से संबंधित है, उसमें बहुत सारे मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वो श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है और उनका साथ दे रही हैं जिमी, श्वेता, हरिओम। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे भाई सब तैयार हो, जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। अरे मनकापुर चलना है।
1: पर किरण दी कहाँ है, उनका तो कुछ पता ही नहीं है और जिम्मी भी अभी तक नहीं आई है, क्या करें?
0: अरे किरण दी को फोन लगाओ, पूछो कहाँ है, चलना है कि नहीं। कही थी 10 बजे तक निकल लेना और 11 बज रहे हैं, अभी तक उनका पता ही नहीं।
1: अरे बाबा लगा रही हूँ फोन।
2: हाँ श्वेता, बस आ रही हूँ। मैं ना रात ही में अपने मायके चली आई थी, बस आ रही हूँ, तुम लोग तैयार मिलो।
3: किरण दीदी अपने नैहरे गई हैं, देखो कितनी देर में आवती।

0: चलो दीदी, बहुत देर होती, हमका लौटे के समझाता।
1: किरण दी, आपको पता है कि गांव निकलना है, फिर भी इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी आप?
2: अरे देर हो गई, पर चलो जल्दी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है, रामनिवास को एक कप चाय पिला दो, बहुत ठंडी है।
3: देखो कुछ भी हो जाए पर हम लोग अपने गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कितना मजा आता है जब गांव में बगीचे में चारपाई डालकर हम लोग आराम से धूप सेकते हैं।
4: हाँ सच में श्वेता दी, ना कोई प्रदूषण ना कोई शोरगुल, कितना सुकून मिलता है ना गांव में। किरण दी आइए, हम लोग गाड़ी में बैठ गए।
2: अरे आज मैं साड़ी पहनकर चल रही हूँ, मेरी सास जू आ रही है, पर ये पेटीकोट में गांठ लग गई जो खुली नहीं रही। जिम्मी जरा तुम ही देखो।
4: देखती हूँ दी, एक मिनट।

0: अरे भाई, मेरी सास बहुत तेज है, जरा बच के रहना, और बड़ी फैशन में रहती हैं।
1: हम लोग चाची को खूब सजा देंगे।
2: अरे नहीं संता दी, वो खुद ही इतनी सजी संवरी रहेंगी। मैं एक बार उनसे मिली हूँ, बहुत तेज हैं वो।
3: राम निवास भैया, जरा यही गाड़ी रोकिए, अमरूद बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ले लूं चाची के लिए।
4: अच्छा दीदी, रोकता हूँ।
1: आ गए हम लोग। किरण दी, आपके सासू जी कहाँ हैं?
0: वो रही धूप में बैठी हैं चारपाई पर, जो सबसे ज्यादा सजी धजी है, लाल साड़ी में, वही हमारी सासू जी हैं।

0: अच्छा, दिखने में ही बड़ी तेज लग रही है।
1: चलो चलो आओ, सब लोग चाची जी को राम राम कहते हैं भाई। चाची जी राम राम।
2: चाची राम राम।
3: राम राम बहनी, के हो तुहरे लोग?
4: चाची, हम सभी आपके पतोहिया के साथ में काम करी थे।
3: अच्छा अच्छा, आओ बहनी, बैठा बैठा सभी। हे दुल्हन, लाओ सबका चाय पानी कुछ पियाओ। का करती हो दादा? हाँ अम्मा जी, ला रही हूँ। बहुत चिल्लाती हैं अम्मा जी। सुनिए, अम्मा के लिए एक नौकरानी लगवा दीजिए।

0: गांव में आज भी कितना अच्छा लगता है। मैं तो कहीं भी रहूंगी पर अपने गांव बराबर आती रहूंगी।
1: अरे किरण दीदी है ना हम लोग को गांव-गांव घुमाने के लिए।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, चाहे जहाँ रहो पर अपने गांव अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ी रहो।
3: जब अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी रहोगी तो अपने माता पिता सास ससुर या पूरे परिवार से जुड़ी रहोगी और यही होना चाहिए।
1: बिल्कुल, अब देखो किरण दीदी के पड़ोस वाली अम्मा कहा बना कर लाई हैं हम लोग के लिए, वो भी एकदम गर्मा गर्म।
0: गांव में यही तो अच्छा लगता है, कितना प्रेम है एक दूसरे से। अरे वो देखो चाची अलाव जला रही हैं। अरे ठंडी भी तो बहुत पड़ रही है।
3: चलो चलो तापते हैं और यही बैठकर चाची जी के साथ खाना भी खाते हैं।
1: वाह सरसों का साग और जोन्हरी की रोटी, अरे भाई मक्के की रोटी, मजा आ गया खाने में।

0: अरे तुम लोगों ने खाना खाया? ये खाना हमारी बड़की अम्मा ने बनाया है।
1: पर किरण दी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या हुआ, भैया से कुछ कहा सुनी कर ली क्या?
0: अरे समता, ये जरा जल्दी ही नाराज हो जाते हैं।
2: अरे कोई बात नहीं, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है।
3: कोई बात नहीं, आप जाकर भैया जी को मना लीजिए, रूठना मनाना तो लगा ही रहता है।
0: अरे भाई, ये इनकी आदत है रोज रोज नाराज होने की, तनिक सी बात पर बस गुस्सा हो जाते हैं। अरे तो

0: डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: वेलकम बैक लिसनर, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, यानी कि चिकन पॉक्स। हम पहुँच चुके हैं अपने शो के लास्ट में। जी हाँ, लास्ट लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है क्योर पे। और एक और चीज़ पे हम बात करेंगे, वो क्या है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, पहले हम क्योर की बात करते हैं। देखिए, सबसे सीधी बात ये है कि चिकन पॉक्स का कोई एग्जैक्ट क्योर होता है क्या? आंसर है इसका, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता, इसीलिए इसे इंस्टेंटली खत्म कर देना मुश्किल होता है। ये डिजीज यूजुअली अपने टाइम पर खुद ही ठीक हो जाता है, यानी कि 7 से 10 दिन के बाद। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। सही केयर और ट्रीटमेंट से सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है और ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की और केयर की। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेस्ट, यानी कि आराम। बॉडी को रिकवर होने के लिए प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। फिर आता है हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको, और साथ ही साथ आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो। उसके बाद इचिंग कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आपको इचिंग हो रही है और आपने उसे खुजला दिया तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, तो इचिंग कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चिकन पॉक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो खुजलाती बहुत है आपकी स्किन, इसीलिए डॉक्टर भी आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं। और अगर आप घर पे हैं तो आप अपने से भी कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन आपकी बॉडी को कूल रखता है और सॉफ्ट रखता है, जिससे कि आपको खुजली ना हो। उसके बाद कूल बाथ, हल्के गुनगुने या फिर ठंडे पानी से नहाना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है खुजली से छुटकारा पाने में। उसके बाद लूज कॉटन क्लोथ पहनना। देखिए, अगर हम लूज कपड़े पहनेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में पसीना कम जमा होगा और खुजली भी कम होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि नेल्स छोटे रखो। नेल्स छोटे रखना मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, ये नेल्स बड़े रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खतरा तो होता है, गंदगी हमारे नेल्स में इकट्ठा हो जाती है और वो हमारे खाने के जरिए या फिर हमारी बॉडी के जरिए वो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसलिए नेल्स छोटे रखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो तब है जब आपको चिकन पॉक्स हो रखा है, क्योंकि आपके नेल्स छोटे रहेंगे तो आप स्क्रैच नहीं करेंगे और स्किन डैमेज भी नहीं होगा। उसके बाद आता है डाइट का ध्यान। जी हाँ, डाइट का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकवरी में फूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइट और ईजिली डाइजेस्टेबल फूड जैसे खिचड़ी, दाल, फ्रूट्स हमें खाना चाहिए। विटामिन रिच फूड जैसे विटामिन सी हो गया, ये भी हमें हमारी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जैसे देखिए, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मैं भी आपकी सारी बातों को समझ सकती हूँ। देखिए, जब हम बीमार होते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो हमारा मन करता है कि कुछ चटपटा मिल जाए भाई, कुछ तेल तला भुना मिल जाए, तेल मसाले वाली चीज़ मिल जाए, मज़ा ही आ जाए इस बीमारी में। लेकिन आपको पता है, यही होती है सबसे बड़ी गलती। आपको ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको उसे, क्योंकि ये आपकी बॉडी को और भी ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। देखिए, चिकन पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम करता है और अगर हो भी जाए तो सिम्टम माइल्ड कर देता है। अब बात है कि ये वैक्सीन आपको मिलेगी कहाँ? देखिए, ये वैक्सीन मिलेगी आपको डॉक्टर के पास। जी हाँ, आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाएं या फिर किसी सिटी हॉस्पिटल, जिसे हम जिला अस्पताल भी कहते हैं, अपने शहर के जिला अस्पताल में जाएं और वहाँ पे आपको चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो भाई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन इस केस में ना, यानी कि चिकन पॉक्स के केस में, दुर्घटना से जल्दी भली। आप दुर्घटना होने से पहले ही अपने दिमाग को एक्टिव करें और जाके वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको चिकन पॉक्स ना हो। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स

की, कुछ फैक्ट्स की। देखिए, कई लोग कहते हैं कि चिकन पॉक्स अगर आपको हो जाए तो आप खुजली करिए, जिससे कि आपकी जो स्कैब होती है वो जल्दी उतर जाती है और आपकी स्किन जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन भाई, यहीं तो मार खा जाता है ना इंडिया। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जब भी आप स्क्रैच करते हैं तो आपकी बॉडी पे और भी ज़्यादा स्कार्स आ सकते हैं और परमानेंट निशान भी पड़ सकता है। उसके बाद कई लोग सोचते हैं कि ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक माइल्ड फॉर्म में बीमारी होती है। लेकिन अगर केयरलेस लोगों को हो गई, जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते या लोग उनका ध्यान नहीं रखते, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। उसके बाद कई लोग सोचते हैं ये सिर्फ बच्चों को होता है, अडल्ट को नहीं होता। लेकिन भाई, ये देखिए, ये अडल्ट को भी हो सकता है और उन्हें ये और भी ज़्यादा सीवियर भी होता है, यानी और भी ज़्यादा भयानक रूप में होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप समझिए कि ये सिर्फ बच्चों को होता है, बड़ों को नहीं होता, या बड़ों को होता है, बच्चों को नहीं। तो ओवरऑल आपको घर में सबका ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों हमारी बात चिकन पॉक्स पे। चिकन पॉक्स यानी कि भाई हमारी माताजी, ना माताजी नहीं, मैं किसी की धार्मिक आस्था पे ठेस नहीं लगा रही हूँ या उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, बल्कि आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप अपनी धार्मिक चीज़ों को तो करें ही करें, लेकिन डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना है, चीज़ों को समझना है और अपने से डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बनना है। जब भी आपको इसके लक्षण दिखाई दें जो अभी मैंने बताया, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उनसे इलाज कराइए। साथ ही साथ साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान दें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो चिकन पॉक्स से जूझ रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर आपने दूरी नहीं बनाई तो हो सकता है अगले पेशेंट आप ही बने। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का। आशा करती हूँ कि आपने आज के विषय को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से बिठा लिया होगा। अगर कभी भी आपके आसपास किसी को चिकन पॉक्स हुआ है या आपको होगा, तो आप अपने दिमाग का पूरी तरीके से यूज़ करेंगे और अच्छे से इस चिकन पॉक्स को अपने शरीर से जड़ से निकाल के फेंक सकते हैं। लेते हैं आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर करेंगे और अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: स्वागत है साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे आकांक्षा। आज मैं एक कहानी शेयर करना चाहती हूं। कुछ साल पहले हमारे ही पास के गांव में 4 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था गुड़िया। बहुत चंचल, हर समय हंसती रहती थी। एक दिन उसे तेज बुखार हुआ। माँ बाप ने सोचा सामान्य सर्दी जुकाम होगा। 2 दिन बाद उसकी आंखें लाल हो गईं, नाक बहने लगी और फिर पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए। गांव में किसी ने कहा ये तो माता निकली है, डॉक्टर के पास मत ले जाओ। इलाज देर से हुआ और गुड़िया को गंभीर निमोनिया हो गया। कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, अगर समय पर खसरे का टीका लग जाता तो ये हालत नहीं होती। दोस्तों, आज हम उसी बीमारी खसरा यानी मिसल्स और उससे बचाव के सबसे आसान तरीके यानी टीकाकरण की बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने वाले हमारे अपने सेहतिया सिंह जी। स्वागत है सेहतिया भैया।
2: धन्यवाद आरजे कांचा। भाइयों और बहनों को आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि खसरा कोई साधारण बीमारी नहीं है बल्कि बेहद तेजी से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है।
1: तो सबसे पहले यही बताइए कि खसरा आखिर है क्या?
2: खसरा एक वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने खांसी या छींक दी है या उसके आसपास की हवा में आप सांस ले रहे हैं तो संक्रमण फैल सकता है। ये सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, लेकिन सच ये है कि जिसे टीका नहीं लगा है उसे खसरा हो सकता है।
1: इतना जल्दी फैलता है क्या?
2: बहुत ज्यादा। एक खसरे का मरीज लगभग 18 लोगों तक संक्रमण फैला सकता है और वायरस हवा या सतह पर 2 घंटे तक सक्रिय रह सकता है।
1: सेहतिया जी, सबसे जरूरी बात, अगर किसी बच्चे को खसरा हो जाए तो माता पिता पहचान कैसे करें, क्योंकि शुरुआत में तो सामान्य बुखार जैसा ही लगता है ना?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, यही वजह है कि लोग अक्सर शुरुआत में इसे साधारण सर्दी जुकाम समझ लेते हैं। असल में खसरे के लक्षण संक्रमण होने के लगभग 10 से 14 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं।
1: यानी बीमारी शरीर में पहले से होती है लेकिन दिखती बाद में है।
2: हाँ, और शुरुआती 4 से 7 दिनों में बच्चे को तेज बुखार आ जाता है, साथ में नाक बहना शुरू हो जाता है, लगातार खांसी रहती है और आंखें लाल होकर पानी छोड़ने लगती हैं। कई बार माता पिता ध्यान नहीं देते हैं लेकिन गाल के अंदर छोटे छोटे सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं जो खसरे की खास पहचान माने जाते हैं।
1: अच्छा भैया, और जो शरीर पर दाने निकलते हैं वो कब आने लगते हैं?
2: दाने आमतौर पर 7 से 18 दिन के बीच दिखाई देते हैं। पहले चेहरे और गर्दन पर शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हुए हाथ पैर तक पहुंच जाते हैं। करीब 5 से 6 दिनों बाद ये दाने हल्के पड़ने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं।
1: मतलब जब तक दाने दिखते हैं तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
2: बिल्कुल सही समझे, इसलिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है।
1: लेकिन सेहतिया जी, गांव में अक्सर लोग कहते हैं खसरा तो अपने आप ठीक हो जाता है, चिंता की बात नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है?
2: नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। खसरा बिल्कुल भी हल्की बीमारी नहीं है, अगर सही देखभाल ना हो तो इसे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं।
1: जैसे?
2: कुछ बच्चों की आंखों पर इतना असर पड़ता है कि अंधापन तक हो सकता है। कभी कभी दिमाग में सूजन आ जाती है जिसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, जिसे अस्थाई नुकसान भी हो सकता है। कई बच्चों को गंभीर दस्त हो जाते हैं और शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है। कान में संक्रमण और निमोनिया जैसी सांस की खतरनाक बीमारी भी हो सकती है।
1: और गर्भवती महिलाओं के लिए,
2: अगर गर्भावस्था में खसरा हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है। बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है या उसका वजन बहुत कम हो सकता है।
1: तो किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?
2: सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से छोटे बच्चों को होता है। गर्भवती महिलाएं भी जोखिम में रहती हैं, जो बच्चे कुपोषित होते हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, उनमें बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है।
1: यानी जिन बच्चों का पोषण सही नहीं है उनके लिए खसरा और बढ़ जाता है।
2: जी हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, खसरा खुद शरीर की इम्यूनिटी कमजोर कर देता है, यानी बच्चा बाद में दूसरी बीमारियों का भी आसानी से शिकार हो सकता है।
1: दुनिया भर में इसकी क्या स्थिति है? क्या अभी भी खसरा बड़ी समस्या है?
2: पहले तो स्थिति बहुत गंभीर थी। टीका आने से पहले हर 2-3 साल में बड़े प्रकोप होते थे और दुनिया भर में हर साल लगभग 26 लाख लोगों की मौत हो जाती थी।
1: इतनी ज्यादा?
2: लेकिन टीकाकरण ने इतिहास बदल दिया। साल 2002 से 2024 तक के बीच दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ 90 लाख मौतें रोकी गईं। फिर 2024 में करीब 95,000 लोगों की मौत खसरे से हुई, जिनमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे।
1: यानी बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है?
2: बिल्कुल नहीं, और इसलिए टीकाकरण और भी जरूरी हो जाता है।
1: तो क्या खसरे की कोई खास दवा आती है भैया?
2: सीधी दवा नहीं होती है। इलाज का मतलब मरीज को आराम देना, पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन देना ताकि शरीर मजबूत रहे। अगर निमोनिया या कान का संक्रमण हो जाए तो डॉक्टर या एंटीबायोटिक दे सकते हैं।
1: और आपने पहले विटामिन ए का भी तो जिक्र किया था।
2: हाँ, खसरे के मरीज को डॉक्टर 2 खुराक विटामिन ए देते हैं 24 घंटे के अंतर से। इसे आंखों को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है और मौत का खतरा भी कम होता है।
1: अब भैया सबसे अहम सवाल कि इससे बचाव कैसे करें?
2: इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है टीकाकरण। खसरे का टीका पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है, सस्ता और लाखों बच्चों की जान बचा चुका है।
1: और कितनी बार लगाना जरूरी है टीका?
2: 2 खुराक जरूरी है, क्योंकि पहली खुराक के बाद हर बच्चे में पूरी सुरक्षा नहीं बनती है, इसलिए दूसरी खुराक सुरक्षा को मजबूत करती है।
1: और सुनने वालों के लिए एक जरूरी घोषणा भी है, हमारे इलाके में जल्द ही खसरा रुबेटा टीकाकरण दिवस आयोजित होने वाला है।
2: जी हाँ, उस दिन आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं पर बच्चों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मैं सभी माता पिता से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर लेकर आएं।
1: सहतिया भैया, सब माता पिता अक्सर पूछते हैं कि बच्चों को कौन सा टीका कब लगवाना चाहिए, थोड़ा आसान तरीके से समझा दीजिए।
2: जरूर, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसे टीबी से बचाने वाली BCG टीका, पोलियो की शुरुआत खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है।
1: यानी जन्म के तुरंत बाद ही सुरक्षा शुरू हो जाती है।
2: बिल्कुल, फिर जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो उसे पोलियो, पेंटा बेल्ट और रोटा वायरस, IPV और निमोनिया से बचाने वाली PCV टीका लगाया जाता है।
1: और इसके बाद
2: 10 हफ्ते की उम्र में फिर से पोलियो और पेंटा बेल्ट और रोटा वायरस की खुराक दी जाती है और 14 हफ्ते पर वही सुरक्षा आगे बढ़ने के लिए पोलियो और पेटा बेल्ट, IBP, रोटा वायरस और PCV लगाए जाते हैं।
1: अब आते हैं खसरे वाले टीके पर।
2: हाँ, 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चे को खसरा रुबेला यानी MR टीके की पहली खुराक दी जाती है। कुछ जिलों में इसी समय जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका भी दिया जाता है।
1: और दूसरी खुराक
2: 16 से 24 महीने की उम्र में MR की दूसरी खुराक दी जाती है और साथ में DPT और पोलियो बूस्टर भी लगाया जाता है ताकि सुरक्षा मजबूत बनी रहे।
1: बड़े बच्चों के लिए भी कुछ होता है क्या?
2: हाँ, 5 से 6 साल की उम्र में DPT बूस्टर दिया जाता है और गर्भवती महिलाओं को टिटनेस और डिपथीरिया से बचाव के लिए टीडी टीके लगाए जाते हैं, जिससे माँ और नवजात दोनों सुरक्षित रहते हैं।
1: यानी पूरा टीकाकरण समय पर होना ही असली सुरक्षा है।
2: बिल्कुल, समय पर टीका मतलब बीमारी से मजबूत ढाल।
1: यानी अगर बच्चा पहला साल पूरा होने तक सारे टीके ले ले तो उसे पूर्ण टीकाकृत माना जाता है।
2: बिल्कुल सही।
1: सेहतिया जी, अभी तक हमने खसरे और उसके लक्षण टीकाकरण की बात की, लेकिन कई श्रोता पूछते हैं कि आखिर सरकार इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण कैसे कराती है? क्या इसके पीछे कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है?
2: बहुत अच्छा सवाल है
1: जी।
2: भारत में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, जिसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कहते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक माना जाता है।
1: दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में थोड़ा विस्तार से समझाइए।
2: देखिए, हर साल इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2,67,00,000 नवजात बच्चे और करीब 2,90,00,000 गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण सेवाएं पहुंचाई जाती है। सोचिए कितना विशाल काम है। देश के लगभग हर गांव, हर बस्ती तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुंचते हैं।
1: यानी ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि माताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।
2: बिल्कुल, इस कार्यक्रम के तहत 12 गंभीर बीमारियों से मुक्त बचाव उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें खसरा और रुबैला जैसी खतरनाक बीमारियां भी हैं शामिल हैं। इसका उद्देश्य साफ है कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए बीमार न पड़े क्योंकि उसे टीका नहीं मिला।
1: अब एक सवाल जो अक्सर माता पिता पूछते हैं, MR वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है?
2: भारत ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, खसरे को खत्म करना और रुबेला को नियंत्रित करना। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए साल 2017 में देश भर में MR टीकाकरण अभियान शुरू किया गया।
1: यह अभियान कितना बड़ा था?
2: बहुत व्यापक था। इसका लक्ष्य 9 महीने से लेकर 15 साल तक की उम्र के लगभग 41 करोड़ बच्चों को सुरक्षा देना, यानी देश की लगभग 1/3 आबादी को कवर करने की योजना बनाई गई।
1: और अब ये अभियान खत्म हो चुका या जारी है?
2: अब ये नियमित टीकाकरण का हिस्सा बन चुका है, यानी हर बच्चे को तय उम्र पर MR टीका लगाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां खसरे और रुबेला से सुरक्षित रहें।
1: सेहतिया जी, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो हमने बहुत सुना है, इसका टीकाकरण से क्या संबंध है?
2: मिशन इंद्रधनुष साल 2014 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के कम से कम 90% बच्चों को पूरा टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।
1: तो क्या पहले सभी बच्चों तक टीकाकरण नहीं पहुंच पाता था?
2: कुछ दूरदराज इलाकों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में, ऐसे गांव में जहां टीकाकरण की दर कम थी, वहां बच्चे छूट जाते थे। मिशन इंद्रधनुष खास तौर पर उन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया।
1: तो क्या अब इसका असर दिखा?
2: जी हां, शुरुआती चरणों में ही पूर्ण टीकाकरण कवरेज में लगभग 6.7% की बढ़ोतरी देखी गई। बाद में IMI के दौरान यह बढ़ोतरी लगभग 18.5% तक पहुंच गई, जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
1: यानी धीरे धीरे हर बच्चे तक सुरक्षा पहुंचाने की कोशिश जारी है।
2: बिल्कुल, यही लक्ष्य है कि कोई बच्चा पीछे न छूटे।
1: एक सवाल कई लोगों के मन में रहता है, इतने दूर दराज इलाकों तक जाते जाते क्या टीके खराब नहीं हो जाते?
2: ये चिंता पहले होती थी, लेकिन अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटीलाइजेशन नेटवर्क यानी EBIN शुरू किया है, जिससे पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है।
1: अच्छा भैया, ये सिस्टम करता क्या है?
2: इससे हर जगह टीकों का तापमान लगातार मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि टीकों को सही तापमान पर रखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अधिकारियों को रियल टाइम में पता चलता रहता है कि किस केंद्र पर कितना स्टॉक उपलब्ध है।
1: मतलब टीकों की पूरी यात्रा पर नजर रहती है।
2: जी बिल्कुल, इसे कोल्ड चेन सुरक्षित रहती है और लोगों तक पहुंचाने वाला टीका पूरी तरह प्रभावी और सुरक्षित होता है।
1: अब थोड़ा अफवाहों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि टीकों को लेकर गांव में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं।
2: हाँ, और इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है।
1: पहली बात लोग कहते हैं कि टीका लगने के बाद बुखार आ जाता है, इसलिए टीका नुकसान करता है।
2: देखिए, हल्का बुखार आना बिल्कुल सामान्य बात है, इसका मतलब है कि शरीर बीमारी से लड़ने की ताकत बना रहा है। ये नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा बनने का संकेत है।
1: दूसरी बात, बच्चा तो स्वस्थ है, उसे टीके की क्या जरूरत है?
2: ये बिल्कुल गलत सोच है। बीमारी पहले से सूचना देकर नहीं आती है, टीका बीमारी होने से पहले सुरक्षा देता है।
1: और कुछ लोग कहते हैं कि खसरा भगवान की बीमारी है, ऐसा क्या?
2: नहीं, ये वैज्ञानिक रूप से साबित वायरल बीमारी है। इसका कारण वायरस है और इसका बचाव टीकाकरण से ही संभव है।
1: अच्छा सेहतिया भैया, कार्यक्रम खत्म करने से पहले क्या श्रोताओं के लिए आपके पास कोई संदेश?
2: हाँ, मैं एक सच्ची घटना साझा करना चाहूँगा। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े बेटे का टीकाकरण समय पर नहीं हो पाया। कुछ समय बाद उसे खसरा हो गया और बीमारी के बाद महीनों तक वह कमजोर रहा, पढ़ाई भी छूट गई।
1: और छोटे भाई का क्या हुआ?
2: छोटे भाई को समय पर सभी टीके लगे थे। उसी दौरान गांव में खसरे का प्रकोप फैला, कई बच्चे बीमार हुए लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तब उनकी मां ने कहा, काश मैंने पहले बच्चे को भी समय पर टीका लगवाया होता।
1: ये बात तो सच में दिल को छूने वाली है।
2: हाँ, क्योंकि टीका सिर्फ इंजेक्शन नहीं है बल्कि भविष्य की सुरक्षा है।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमने समझा कि खसरा बेहद संक्रामक बीमारी है। इसका इलाज सीमित है लेकिन बचाव पूरी तरह संभव है, और वह है समय पर टीकाकरण।
2: हर बच्चे को दो खुराक जरूर दिलवाएं, टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर लाएं और अपने बच्चों का टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें। यही जिम्मेदारी माता पिता की पहचान है।
1: बहुत सुंदर संदेश। स्वस्थ बच्चा मतलब मजबूत परिवार, और मजबूत परिवार से बनता है सुरक्षित गाँव।
2: बिल्कुल, जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है।
1: इसी संदेश के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई, पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: अरे सुना?
5: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: द बेस्ट गिफ्ट फॉर पापा मम्मी, सारेगामा कारवा।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो भैया क्या हाल है आप सभी का, क्योंकि मौसम ने तो बहुत ही प्यारी सी जैसे ना बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। और इतनी ज़्यादा वाली गर्मी थी, इतनी ज़्यादा वाली गर्मी थी, लेकिन अचानक से मौसम ने दी है दस्तक और कहा है कि भाई अभी गर्मी हम नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा सब्र रखो। आज है 2 मई और 2 मई के दिन भी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी 2 मई को होती थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये हमारे सूर्य देव की कृपा है, मौसम की कृपा है, जो कि मौसम विभाग से हम लोगों को, कई लोगों को ये चीज़ें अलर्ट भी किया जा रहा है कि कई शहरों में, कई बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा मौसम ने ली है उठा पटक की है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तूफान आ रहे हैं और हवाएं चल रही हैं, बट उसका सीधा असर जो है ना हमारे आसपास के सिटीज़ में पड़ता है। परसों रात में बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई जिसका असर कल था और आज भी है। मतलब धूप, अगर हम कह सकते हैं कि अगर धूप है तो वो वाली धूप नहीं लग रही है। तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं। आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली एंड प्यारी सी दोपहर को एक साथ दोनों सहेलियां विश करेंगे।
2: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और बिल्कुल भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना, बहुत ही खूबसूरत सा ये मौसम है और इसी के साथ हमारा आज का दिन भी है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि सभी को पता है कि आज है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे, जिसमें कि हम सुपर से ऊपर है। सुपर से ऊपर इसलिए क्योंकि आज बात करेंगे थोड़ी हम, सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा न्यू सेगमेंट यानी कि एक प्यारी सी पोएट्री और आपके लिए रियल लाइफ फैक्ट। तो आज क्या निकलता है देखते हैं आपका रियल लाइफ फैक्ट क्या होता है।
1: चलिए तो आज की जो पोयम है ना, आप आज की जो एक कविता है जो हम हर रोज लेकर के आ रहे हैं, वो थोड़ा सा शायराना अंदाज में है। और शायराना अंदाज हम किस में यूज करते हैं आप सभी को पता है कि प्यार में। तो आइए आज की जो शायरी है वो भी प्यार को लेकर के है, क्योंकि आज का दिन जो होता है ना सैटरडे के दिन, हम संडे से ज़्यादा सैटरडे को प्यार करते हैं। वो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि सैटरडे जो इवनिंग होती है, नाइट होती है ना, हम निश्चिंत होकर के सोते हैं ताकि कल जो है वो संडे है और संडे के दिन हम आराम से पूरा दिन अपने आप को देते हैं। लेकिन संडे शाम होते होते, संडे नाइट होते होते फिर से हमें वो जो महिलाएं जॉब में हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको ये लगने लगता है यार फिर सुबह 6 बजे उठना है और फिर से वही रूटीन में आ जाना है। तो आज की इवनिंग प्यार वाली, और प्यार वाली के साथ में अगर आज की जो कि कविता अगर प्यार वाली ना हो तो कैसी बात बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार वह नहीं

0: थाम ले, बिना कुछ कहे जो दिल का हर पैगाम जान ले। सच्ची मोहब्बत तो वह है जो रूह को सुकून देती है। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो रूह को सुकून देती है। हजार गमों के बीच भी जीने का जुनून देती है। हजार गमों के बीच भी जीने का जुनून देती है। आइए इसके आगे की लाइनों को सुनते हैं।
1: दूरी में भी जो नजदीकी का एहसास दिलाता है, वही सच्चा रिश्ता है जो हर इम्तिहान में मुस्कुराता है। नाराजगी में भी जिसमें फिक्र की कमी नहीं होती, नाराजगी में भी जिसमें फिक्र की कमी नहीं होती, उनके बिना जैसे इस पूरी कायनात में ही कोई कमी सी रहती है। यह वह मंजिल है जहां दो मुसाफिर एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे के ख्वाबों में ही अक्सर कहीं खो जाते हैं। वक्त बदलता रहे पर यह एहसास कभी पुराना नहीं होता। सच्चे प्यार का कोई आखिरी ठिकाना नहीं होता, सच्चे प्यार का कोई आखिरी ठिकाना नहीं होता।
0: बिल्कुल, और जिससे हम प्यार करते हैं वो कोई भी इंसान हो सकता है, हमारे घर के मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड हो सकता है, हमारे कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जिन्हें हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में हिडन रखते हैं। तो क्या है कि प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी चीज़ से हो सकता है, किसी मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जो एक रियल लव होता है ना, वो रियल लव एक ईश्वर से होना चाहिए जो कि कभी हमें वो धोखा नहीं देते हैं। क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अभी पहली लाइन आपने सुनी कि प्यार वो है जो लफ्जों में बयान नहीं होता। बिल्कुल, आप कोई शब्द देकर उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जब हमारा एक एहसास दिल से किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो बहुत ही प्यारा होता है। बिल्कुल सही है कि नाराज भी हम होते हैं लेकिन उसकी चिंता भी होती है कि अरे पता नहीं ठीक से होगा या नहीं, किया होगा, मतलब कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में भी याद आती है। अगर मैसेज की रिंगटोन बजती है तो लगता है अरे उसका तो नहीं है, अगर कॉल आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, प्यार में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत बेशकीमती तोहफे दीजिए। कोई एक लाल गुलाब भी दे देता है ना, तो वो इतना मतलब एक एहसास कर जाता है, लगता है अरे वाह उसने भेजा है।
0: और मैंने अभी अभी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार वो लवशव वाला प्यार है। प्यार आप किसी भी मेंबर से कर सकते हैं, आप अपने घर के पेरेंट्स से भी कर सकते हैं। वो उन्हें भी आप खुश करने के लिए एक लाल गुलाब अगर अपनी माँ को दे देंगे, अपने पिता को दे देंगे, अपने भाई बहनों को दे देंगे ना, तो भी लगता है कि अरे यार आज तो मेरा दिन ही बन गया। मतलब क्या है, प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है। जैसे सागर में हम उनकी बूंदों को कभी गिन नहीं सकते हैं, सागर की गहराइयों को हम कभी माप नहीं सकते हैं। वैसे ही जिन्होंने भी रियल लव किया होगा, जो प्यार में है, उन्हें पता होता है कि प्यार की गहराई कितनी अनंत है। तो आज के दिन की शुरुआत हमने बहुत ही प्यारी सी चार लाइन की कविता से की है। आइए अब हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड हम अब बताएंगे आपको OTTT सीरियल्स के बारे में, ये और उसके बाद जो आपका मेन सेगमेंट होता है गेम। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। अब सैटरडे के दिन जानिए बूझिए तो बताऊं, मैं बताती हूँ। अंशिका तुम जान गई, मैं बताती हूँ,
1: आप बताइए।
0: एक सेगमेंट और हम लोग देते हैं जिसमें होता है लव राशिफल। तो लव राशिफल जरूर सुनिएगा, जो कि हम गेम से पहले देने वाले हैं। तो चलिए इतना कुछ है आज बताने के लिए, लेकिन उन सभी से पहले एक लेंगे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में आज का जो कि रियल फैक्ट्स ऑफ में है, वो आया है मेरे पास कि देखो भैया, लव को ही लेके आए हैं, ठीक है, कि अगर सच्चा प्यार आपका बेहतर सच्चा प्यार अगर आपका है तो वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसा कोई भी पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपको आपकी ऊँचाइयों तक पहुँचाने में भरपूर आपकी हेल्प करता है, ठीक है, या करती है।
8: जी मैम।
7: लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है कि जो आपको हमेशा से डीमोटिवेट करता रहेगा, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर नहीं जाओ, वैसे नहीं करो, ये नहीं करो, तो पता है उससे ना इंसान और उलझ जाता है और फिर वो अपनी काबिलियत को भी धीरे धीरे करके वो ख़त्म करने लगता है। जो लोग प्यार में होते हैं वे अक्सर खुद को अधिक क्या करते हैं, वो लोग बिहेवियर अपने आप को ब्रेव समझते हैं और आत्मविश्वास से इतना ज़्यादा अपने आप को भरा हुआ महसूस करते हैं कि ये प्यार ही तो है जो आपको आपके एम तक पहुंचाता है, आपके गोल तक पहुंचाने में और आपकी लाइफ में भी आगे बढ़ाने के लिए आपको इनकरेज करता है। तो ऐसा है पूरे पूरे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है तो आप उनके साथ अगर खुश हैं तो ही आप उनके साथ आगे बढ़ें। अदरवाइज़ अगर आपके घर में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आप उनके साथ अगर पर्सनल शेयर कर रहे हैं और वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो बिल्कुल उसे कह दें टाटा बाय बाय, अपनी ज़िंदगी से उसे कर दें बिल्कुल बाहर।
8: बहुत ही अच्छा हमारा आज का जो रियल लाइफ फैक्ट है वो निकल करके आया है कि किस तरीके से आपका प्यार हर मामले में आपको बेहतर बनाता है। प्यार है ही ऐसी चीज़, किसी को अपनी लाइफ में, मतलब देखिए, कहते हैं ना, अभी हमने शुरुआत ही की थी कि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं होता है, मम्मी पापा से, फैमिली से, फ्रेंड्स में, सब में होता है। बहुत ही प्यारी सी चीज़ है और बहुत ही संभाल कर भी रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार बहुत नाजुक होता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में। तो आपका प्यार आपको मजबूत और मजबूत बनाए और हमेशा सिर्फ और सिर्फ मजबूती की तरफ ले जाए।
7: एग्जैक्टली, और आपको आपकी ऊंचाइयों तक ना पहुंचाने में आपकी मदद करे। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हमेशा से परेशान करे, हमेशा से डीमोटिवेट करे, तो ये प्यार नहीं है, ये बंदिश है। और आप लोगों ने कई बार फेसबुक पे देखा होगा, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, कई बार ये इमेजेस आती रहती हैं कि दो हाथ हैं और एक हाथ में चिड़िया को टाइट से पकड़ा हुआ है और एक हाथ में चिड़िया को हल्का सा उड़ते हुए मतलब दिखाया गया है और दोनों के नीचे लिखा हुआ है कि जब उसको पकड़े हुए हैं तो वो है मोह, और जिसने हल्का सा छोड़ा हुआ है, आज़ाद किया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है प्यार। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमने किसी को कैद किया हुआ है तो वो मोह है, वो मोह है, वो प्यार नहीं है। और जिसको आपने आजादी दे रखी है हर चीज में खुली खुल करके जीने के लिए आपने उसे बोला हुआ है, तो वो है सच्चा प्यार।
8: तो अभी अभी आपने जान लिया कि प्यार और मोह में क्या फर्क होता है। हमेशा कोशिश करें कि आप सभी से, आपकी लाइफ में अगर कोई समवन स्पेशल है तो भी, अगर आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनसे आप प्यार कर सकें, मोह नहीं, प्यार कर सकें हमेशा। तो चलिए अब प्यार से होते हुए, प्यार की गलियों से होते हुए थोड़ी सी सैर करते हुए चलते हैं दूसरी गलियों में। दूसरी गलियों में यानी कि कुछ ले चलते हैं आपको, कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर।
7: यानी मुझे लग रहा है कि आई गेस हमारे कुछ ओटीटी सीरियल्स,
8: यस,
7: पॉकेट वाले सीरियल्स,
8: पॉकेट वाले जो पॉकेट में होते हैं और पॉकेट से पॉकेट में जल्दी मिल भी जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पॉकेट मनी का जरूर काफी जाती है। हाँ, पॉकेट में मिल जाते हैं
7: तो डांट पड़ती है कि क्या तुम लोगों ने बिल्कुल क्या कहते हैं वाईफाई लगा लिया है और सारा दिन तुम लोग जो है बस
8: इसी में रहो। हाँ। तो पॉकेट मनी जाती है लेकिन पॉकेट में फिर भी मिल जाती है। और ये पता है ये एक ऐसी चीज है जिसमें पॉकेट मनी जाते हुए भी ना अफसोस नहीं होता, ये कोई बात नहीं थोड़ी जाने तो नेक्स्ट महीने मैनेज कर लेंगे जब मिलेगी। तो अब आते हैं कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। तो आज जो लाई हूँ ना वो कुछ भी रोनू धोनू वाला नहीं है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी वाला है, क्योंकि आज हमारा दिन भी बहुत हैप्पी है। तो सबसे पहले मैं जिस के बारे में बताने वाली हूँ, जिस ओटीटी सीरीज के बारे में, वो है सपने, सपने वर्सेस एवरीवन। इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी सी मतलब एक सीरीज है जिसमें ये दिखाया गया है कि आपके सपने जो होते हैं वो एक तरफ होते हैं और यहाँ एवरीवन का मतलब है बाकी लोग, यानी कि आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, मतलब सभी। किस तरीके से इसमें ये स्ट्रगल दिखाया गया है कि एक लड़की होती है जो अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करती है, और इस सीरीज के पूरे ही एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने सपने को पूरे करने के लिए सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, सबसे कहीं ना कहीं एक फाइट करती है। क्योंकि उसका सपना कुछ ऐसा होता है कि जिसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है।
7: बिल्कुल,
8: उसकी फैमिली को लगता है कि कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। उसके फ्रेंड्स होते हैं उनको लगता है कि अरे नहीं तुम कोई और स्ट्रीम चूज कर लो, लेकिन उसका वो जुनून है कि उसे वही पाना है। तो कैसे पाया है ये आप जरूर देखिए, Amazon Prime पे आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। मतलब मैंने इसके बारे में काफी सुना हुआ है, इसके प्रोमोज भी देखे हुए हैं, तो आप प्रोमो नहीं इसको फुल देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी बिल्कुल मैं मानूं कि अभी कल, यानी कि कल आई थिंक 1 मई थी और 1 मई को ये रिलीज हो चुकी है। Amazon Prime पे जरूर देखिए और एंजॉय करिए। अब आते हैं एक्शन से होते हुए कॉमेडी की तरफ। तो अगर बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी सीरीज में हमारे लिए एक सरप्राइज है जो कि है बहुत ही अच्छी सी रवि कुमार की एक एक्शन कॉमेडी सीरीज जिसमें कि आपको पूरी पूरी कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी है और इसका जो नाम है वो भी बहुत प्यारा सा है, और नाम है बिंदास।
7: ओके,
8: जब नाम है बिंदास तो सोचिए कि अंदर क्या कुछ होगा।
7: बिल्कुल,
8: लेकिन ये पूरी की पूरी कॉमेडी से भरी हुई है। मतलब मैं बताऊं कि जिन्होंने भी हंगामा मूवी देखी है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी कॉमेडी थी, तो इसमें कितनी कॉमेडी होगी। जरूर देखिए और अपने वीकेंड को बहुत ही एक मतलब बिल्कुल शानदार बनाइए, हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो चलिए एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला बता देते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना ये आपको थोड़ा सा डराने वाला है।
7: अरे क्या
8: वो है?
7: हॉरर,
8: हॉरर, यस। और इसका नाम है अनदेखी।
7: अनदेखी,
8: अनदेखी जो कि अपने तीसरे 3 सीजन आ चुके हैं और अब ये आने वाला है 4th सीजन के साथ। तो देखते हैं कि 4th सीजन क्या लेके आने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बहुत ही अच्छी एक क्राइम थ्रिलर है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, तो जरूर देखिए, क्योंकि ये इसमें एक सीक्रेट आपको रिवील कर ही देती हूँ, ये ना इसका लास्ट होने वाला है, मतलब ये इसका लास्ट अध्याय कहीं ना कहीं होने वाला है।
7: ये क्यों?
8: इस मैम 3 सीजन जो थे वो अभी तक, जो ये season 4 आ रहा है ना, और 3 सीजन जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक ये चल रहा है कि एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा। ये जो 4th सीजन आ रहा है इसमें प्रॉपर ये पता चलेगा कि उसकी एंडिंग कैसे होगी।
7: ओके,
8: अभी तक उस स्टोरी की एंडिंग नहीं हुई है बाकी 3 सीजन में।
7: ओके,
8: तो इस 4th सीजन में एंडिंग क्या है ये देखना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके सभी फेवरेट कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि पिछले 3 सीजन में रह चुके हैं। भाई 3 सीजन तो बहुत ही धूमधाम से बहुत ही मजेदार थे, अब बारी है 4th सीजन की। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसे स्किप करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे ना,
7: बिल्कुल नहीं,
8: तो जरूर देखिए और एंजॉय करिए,
7: जरूर देखिए और अपने जो कि ना वाईफाई का खर्चा बढ़ाइए, मोबाइल का खर्चा बढ़ाइए। अंशिका तो इतना अच्छे से समझा रही है ना कि जरूर देखिए, तो अपनी मोबाइल का खर्चा बढ़ाइए, अपनी वाईफाई का खर्चा बढ़ाइए, लेकिन देखिए जरूर,
8: मजा भी आएगा आपको। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन थोड़ा सा फायदा भी।
7: हाँ, बस ये तो है ना कि फन के लिए तो यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
8: एक बात और बता, अगर आप किसी को डराना चाहते हैं ना, मतलब किसी के साथ ऐसी मस्ती करना चाहते हैं, इसको मजाक में करिएगा, तो उसे रात को आप ये सीरीज दिखा दीजिए, पक्का डर।
7: गिफ्ट दे दो,
8: गिफ्ट दे दो,
7: गिफ्ट दे दो,
8: बहुत प्यारा गिफ्ट लाए,
7: बहुत अच्छे से गिफ्ट दे रहे हैं। और लेकिन इसको तुम नाइट में ना 12 बजे के बाद देखना, वो भी अकेले रूम में,
8: और उसके बाद रात भर आप कांप सकते हैं बहुत आराम से।
7: हाँ,
8: नींद नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी।
7: हाँ, तो नहीं आएगी ना, अच्छी बात है ना। लेकिन ये गिफ्ट जो होगा ना, बर्थडे गिफ्ट होगा, या तो फिर बर्थडे गिफ्ट के दिन जिसका बर्थडे हो ना, उसके मोबाइल में ये पूरा डाउनलोड करके भेज दो,
8: वो लाइफ
7: और बोलो ये जरूर देखे हो,
8: लाइफ टाइम बंदा भूलेगा नहीं, आप
7: भूलेगा नहीं। तो चलिए, ऐसे ही बहुत सारी नोकझोंक के साथ में हम फिर से अभी हाजिर हो रहे हैं कुछ बताने के लिए, यानी कि लव राशिफल बताने के लिए, और उसके बाद होगा आपका फेवरेट जो एरिया होता है ना, वो यानी कि गेम सेक्शन। तो थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद होगा गेम। लेकिन अब इसके बाद बताने वाले हैं हम आपको क्या, अभी कुछ मूवीज के बारे में बताएं। थोड़ा गेम को थोड़ा और अभी डिले करते हैं,
8: तो चलिए,
7: ताकि सभी लिसनर्स भी आ जाएं और उसके बाद जो गेम खेलेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होता है।
8: बिल्कुल, थोड़ा सा डिले हम करेंगे कि अभी हमने आपको OTT सीरीज बता दी है, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, और सॉन्ग के उस पार आऊंगी मैं कुछ TV शोज आपको बताने के लिए।
7: ठीक है, तो चलिए हम बस यूं गए, यूं आए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400, 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आर्य समता और साथ में अंशिका। तो चलिए भाई, शुरू कर देते हैं। अभी कुछ सीरियल्स के बारे में बात करनी थी, लेकिन उसके पहले आएंगे हम लोग चैट बॉक्स में। कुछ ऐसे सितारे आज टमटमा रहे हैं, चमक रहे हैं हमारे चैट बॉक्स में, कि उनकी जो एंट्री है ना, बहुत ही कीमती हो गई है आजकल। मतलब क्या बता दें, मतलब बहुत ही कीमती एंट्री है। तो उन कीमती लोगों के नाम अंशिका अभी रीड करेंगी एंड बैक टू लाइन से करेंगी, ताकि जो स्टार्स है ना, वो नीचे की लाइन में ही चमक रहे हैं।
5: जी मैम, तो स्टार्स आज हमारे, मतलब जो चमक रहे हैं, जिनको भी मैम ने बोला, वो हैं आर के श्रीवास्तव जी, गोंडा से ही लिखते हैं। गुड आफ्टरनून समता दीदी एंड और अंशिका बेटी। तो गुड आफ्टरनून आर के जी, कैसे हैं आप?
4: गुड आफ्टरनून भैया, आप तो बिल्कुल ईद का चांद नहीं हो गए हैं, आपको पता नहीं कौन सा चांद हो गए हैं, जो
5: पता भी नहीं,
4: पता ही नहीं चलता है कि कभी बादलों में छिप जाता है तो कभी बारिश में छिप जाता है, कभी धूप में छिप जाता है। ये रहता हमेशा आसमान में ही है। जैसे देखो, अभी भी अगर आप देखोगे आसमान में तो वो चांद रहता है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी होती है कि वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ठीक वैसे ही है हमारे घर के जो।
5: तो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आज दिख गए हैं। और इसी के साथ दीप सिंह जी भी आ चुके हैं, जो कि हमें आईटीआई अयोध्या से सुनते हैं। लिख रहे हैं, हेलो मैम एंड हेलो फ्रेंड्स। हेलो एंड मिस एन भी आ चुकी हैं, और मिस एन के बाद में है प्रबल जी। हेलो प्रबल जी, और प्रबल जी, प्रबल जी, प्रबल जी, ओके प्रबल जी एंड अनुष्का जी।
4: तो अभी हम लोगों ने आज इस बार कुछ गेम को परिवर्तित किया है, क्योंकि जो सबसे पहला नाम है, हम उनसे पूछेंगे वर्ड दे करके कि आपका सॉन्ग बताइए।
5: ओके वाह भाई, ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा। और अब जो कि सबसे पहले कौन आ चुका है, ये तो सभी को पता है,
4: अनुष्का जी।
5: तो आज सबसे पहले जो सॉन्ग होगा, वो होगा हमारी अनुष्का जी के पसंद का। तो गेम को हम थोड़ी देर में, बस कुछ लम्हों का इंतजार और है, फिर हम गेम को शुरू करेंगे और आप सबको अपने अपने सॉन्ग को सुनने का मौका भी जरूर मिलेगा।
4: बिल्कुल, तो फटाफट चलिए हम कुछ सीरियल्स के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद में हम बताएंगे आपको लव राशिफल।
5: तो चलिए लिसनर्स, अब आते हैं हम सीरियल्स पे। तो आज सबसे पहले जिसके बारे में बताने वाली हूँ, उसका नाम बड़ा प्यारा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रिश्ते भी कभी रूप बदलते हैं। बहुत ही प्यारा सा शो है ये, जो कि शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आप इसे देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पे। ये पूरा एक फैमिली, मतलब ये दिखाता है कि कैसे रिश्ते बदल जाते हैं और किस तरीके से बदलते हुए रिश्तों में भी आपको एडजस्ट करना होता है।
4: ओके,
5: तो ज़रूर देखिए, इससे मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत ही बेहतर बनेंगे। अब आते हैं एक बहुत ही पुराने शो पे जो कि बहुत टाइम से आ रहा है, लेकिन हर सीजन के साथ अपडेट होकर के नए तरीके से आता है। मैं बात कर रही हूँ

0: नागिन शोकी,
1: नागिन
0: नागिन
1: नागिन
0: नागिन
1: नागिन शोकी
0: नागिन, जो कि अपने न्यू सीजन यानी कि सीजन 7 के साथ आ गया है। भाई मुझे तो इसके सारी सीजन बहुत पसंद है, स्पेशली वो जिसमें ज्योति थी और करिश्मा तन्ना थी, मतलब वो वाला तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ब्लॉक।
1: अच्छा, हम नहीं देखते हैं नागिन, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब लगता है मुझे कि हाँ थ्रिलर तो है और हॉरर की एक तो उसमें झलक भी है, बट मुझे लगता है ना कि नागिन देखने से अच्छा है कि नागिन बनो।
0: ओह वाह,
1: जैसे मैं हूँ।
0: ये तो हमारी फीमेल लिसनर्स के लिए बहुत अच्छी सी
1: भाई, कहाँ है फीमेल लिसनर्स, कहाँ है? नागिन सीरियल मत देखो, नागिन बनो।
0: हमारी फीमेल
1: आजकल नागिन बनना जरूरी है, नागिन सीरियल मत देखो, नागिन बनोगे तो सेफ रहोगे, कोई दूर दूर तक आपके पास आसपास नहीं आएगा।
0: तो ये हम कह सकते हैं मेरी फीमेल लिसनर्स से, तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि आपके लिए ये आज का हमारा टिप ऑफ द डे,
1: टिप ऑफ द डे है, नागिन सीरियल नहीं देखना है, नागिन बनना है।
0: तो भाई देखिए अब तो देखना तो कैंसिल हो गया है अभी, तो आप बनने की प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए,
1: वो भी हम आपको सिखा देंगे कैसे बनना।
0: हाँ, वो अब मतलब डे टू डे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हाँ, कि क्या कुछ
1: बदल, ऐसे नहीं अंशिका, ऐसे नहीं, हम लोग एक टिप रोज देंगे नागिन बनने के।
0: जी हाँ,
1: ठीक है। तो उसके लिए आपको
0: सेक्शन समझ सकते हैं,
1: न्यू सेक्शन समझ लीजिए, मंडे टू सैटरडे तक आप पूरी पूरी नागिन बन जाएंगी, ठीक है,
0: रूप बदल।
1: लेकिन उसका असर आप ये मत करिएगा कि आप अपने घर के लोगों को ही डसने लगे।
0: हाँ, वो बाहर वालों,
1: ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं।
0: रूप बदलने की टेक्निक भी हो सकती है,
1: बिल्कुल,
0: मतलब काफी कुछ अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब आते हैं हम जिस शो पे, उसका नाम बड़ा यूनिक है और नाम के साथ ये शो भी बहुत यूनिक है, लव का ओटीपी।
1: लव का ओटीपी,
0: यस,
1: लव का ऑपरेशन,
0: लव का ओटीपी।
1: अच्छा,
0: तो ये मतलब बहुत ही अच्छा सा एक शो है और ये मैं आपको बता दूं कि ये अनलिमिटेड सीरीज की तरह होने वाला है, जिसमें हर एपिसोड के साथ कुछ नया होगा और नाम यूनिक है, तो इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं जिसमें
1: वो भी
0: बहुत ही यूनिक हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें ऋचा शर्मा और विक्रम सिंह होने वाले हैं
1: जी,
0: तो जिन्हें भी मतलब ये दो कैरेक्टर्स पसंद है। और मैं आपको बता दूं ये फुल कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि जैसे आपने सुना ना लव का ओटीपी, तो इसके अंदर जो टॉपिक उठाया गया है एक वो बहुत ही प्यारा सा और सिंसियर एक टॉपिक है, मतलब वाकई में कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें कि हम इस टॉपिक पर भी सोचें, लेकिन वो क्या है ये नहीं मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर सब मैंने बता दिया तो फिर देखने का मजा क्या आएगा।
1: हाँ,
0: फिर आप सोचेंगे मैं क्यों देखूं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं,
0: आरजे अंशिका ने तो सब बता दिया, तो सब नहीं बताया।
1: अच्छा, आप लोगों को एक और एक जरूरी सी इन्फॉर्मेशन देनी है जितने लिसनर्स सुन रहे हैं भाई, आपके आसपास आपके घर में आपके गाँव में अगर 12th पास बच्चियां हैं तो प्लीज आपसे मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा प्रमोट करें हमारे NGMPG कॉलेज को, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो लड़कियों को सुविधा यहां मिलती है NGMPG कॉलेज में, आई थिंक सो कि किसी भी कॉलेज में आपको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं मैं आपको क्यों ये कहना चाह रही हूं, क्योंकि सबसे पहले तो आजकल आप किसी भी स्कूल कॉलेजेस में अपने बच्चियों का एडमिशन करा रहे हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आप उसकी सेफ्टी पॉइंट ज़रूर देखते हैं, चाहे आप उन्हें हॉस्टल भेज रहे हैं तो भी, आप किसी कोचिंग में भेज रहे हैं तो भी, या फिर किसी कॉलेज में उसका एडमिशन करा रहे हैं तो भी, तो सेफ्टी के मामले में और एजुकेशन के मामले में और एक्टिविटीज़ के मामले में मैम आपको बता दूँ कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि आप आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके आसपास आपके गांव में या फिर आपके किसी भी आसपास गोंडा के एरिया के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं उसमें से भी अगर आपकी कोई भी जान पहचान है कि आपके बच्चे 12th क्रॉस हो चुके हैं और उन्हें अपने गोंडा में ही रह के पढ़ना है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप उन्हें हमारी इस बात को ज़रूर कन्वे करें कि एक बार आप कॉलेज आकर के विज़िट करें अपने पेरेंट्स के साथ में, फिर आप अपने गोंडा में या आसपास के किसी भी कॉलेज में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार विज़िट करिए, क्योंकि आकर के देखने में घूमने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं कि BA एंड BCom की प्रॉपर क्लासेस चलती हैं और अब तो साथ में DMC की क्लासेस भी चलती हैं। अंशिका, DMC मीन्स आप नहीं समझी होंगी, मैं बताती हूँ।
0: जी मैम,
1: DMC मतलब होता है मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मास कम्युनिकेशन, जो कि हमारे गोंडा में, हमारे गोंडा जनपद में जो FM नंबर 1 यानी कि जो FM है वो है हमारा 89.6 FM में। तो वहाँ पे इस कोर्स को भी सिखाया जाता है जो कि है डिजिटल मास कम्युनिकेशन। आप आइए और इस कोर्स के बारे में भी जानिए। मतलब एक बार जिसे कहते हैं ना कि हम किसी स्टोर में जाते हैं, जब हम किसी जैसे हमें कोई कपड़े लेने होते हैं या फिर हमें ग्रोसरी लेनी होती है, तो क्या होता है कि आजकल महिलाएं क्या करती हैं, ऐसे किसी मॉल में जाती हैं जहां पर हमें सब चीजें मिल जाएं, बस एक बार चले गए और अपना पूरा बकेट भर करके आ गए। तो हमारा NGM कॉलेज भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप एक बार आ गए तो पूरा बकेट भर करके ही जाएंगे। तो प्लीज एक बार आकर के आप विजिट जरूर करें।
0: बिल्कुल लिसनर्स, जरूर आइए और एक बार आप सभी से, मतलब आपके आज जान पहचान में जो भी अगर है तो वो जरूर आए और देखें और समझें। तो चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट एक शो बच गया है मैम, वो बता देती हूँ और उसके बाद हम सॉन्ग सुनेंगे और सॉन्ग के उस पार आपके लिए लेकर के आएंगे लव राशिफल।
1: बिल्कुल, तो लव राशिफल भी चलेगा और गेम भी चलेगा, लेकिन मैं बता दूं कि हम आपको वर्ड दे दे रहे हैं, तब तक आप लोग अपना सॉन्ग भी लिखिए। तो वर्ड, सबसे पहला वर्ड मैं देने जा रही हूँ आज आपको, मांग। मांग शब्द है और मांग शब्द से आप लोग जल्दी से एक सॉन्ग लेकर के भेजे, जिसका पहले आया उसका सॉन्ग हम बजा देंगे।
0: तो लिसनर्स, आपको आपका वर्ड मिल गया है और लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे बहुत ही छोटी सी आपको एक और बताना है, वो मैं बता देती हूँ, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और नया जो एक ये कहानी लेकर के आ रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। तो बहुत ही मोटिवेशनल ये एक स्टोरी है, आप जरूर देखिएगा। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी ये स्टोरी। तो चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे। बस यू गए, यू आए, स्टे ट्यून।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बिल्कुल, और आपका गेम हो गया है शुरू। तो चलिए फटाफट अब शुरू करते हैं हम लव राशि फल, क्योंकि लव राशि फल में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि वालों के लिए। आइए जानते हैं कि लव राशि फल में क्या निकला है। आज पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, ओ माय गॉड, इसीलिए शांत रहें। अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने मित्र से बातचीत शुरू होने के योग है। वृषभ राशि वालों के लिए है कि रोमांस के लिए दिन बहुत अच्छा है और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर शहर घूमने का प्लान बना सकते हैं और वापसी और आपसी तालमेल भी बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए है कि लव लाइफ में नयापन महसूस करेंगे। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। रिश्तों में पारदर्शिता जरूर रखें। कर्क राशि है, पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। भावात्मक रूप से आप एक दूसरे के करीब आएंगे। शाम को एक साथ समय बिताने का योग बन रहा है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन है कि आज आपका आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर आपको कोई सरप्राइज दे सकता है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए है आज का दिन कि किस रिश्तों में थोड़ी दूरियां महसूस हो सकती हैं। बातचीत के जरिए गलत फहमियां दूर करें, धैर्य से काम लें। नेक्स्ट राशि हमारी आती है तुला राशि वालों के लिए है आज का दिन कैसा कि लव लाइफ में खुशियां आएंगी। अगर शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परिवार से बात करने के लिए समय अनुकूल है। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग हम सुन लेते हैं जो कि भेजा है अनुष्का जी ने। फटाफट सुनते हैं, नेक्स्ट वर्ड भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले सुनेंगे अनुष्का जी का सॉन्ग और उसके बाद आएंगे बाकी बची राशियों के बारे में जानने के लिए।

तो चलिए भाई, अब टाइम हो गया है बाकी बची राशियों को, क्योंकि 2:50 हो गए हैं, और ऐसा नहीं हो कि बाकी लिसनर्स के सॉन्ग्स नहीं हो, तो इसीलिए हमने आधे आधे गाने को अभी प्ले किया हुआ है। चलिए, तो बाकी बची राशि है वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो वृश्चिक राशि वालों, आज आपका लव राशिफल ये है कि आज आपका पार्टनर थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बेवजह की बहस से बचें और एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करें। धनु राशि है और धनु राशि वालों के लिए है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए आज का दिन यादगार रहने वाला है। वीडियो कॉल या मैसेज के जरिए आप जुड़ाव महसूस करेंगे। मकर राशि वालों के लिए है कि काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वो नाराज हो सकते हैं। एक छोटा सा तोहफा नाराजगी को दूर कर सकता है, ये एक सजेशन है। कुंभ राशि वालों के लिए कि प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। नए जोड़ों के लिए दिन बहुत रोमांटिक रहने वाला है। मन की बात कहने में आज हिचकिचाएं नहीं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन है कि आज आप काफी इमोशनल रहने वाले हैं। पार्टनर का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। अविवाहित लोग फिलहाल जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। तो भाई, ये थी आज की लव राशि फल। आइए, अब हमारे पास 10 मिनट है, एंड जल्दी जल्दी जिनके भी सॉन्ग्स नहीं हुए हैं ना, फटाफट प्ले करिए और फटाफट भेजिए, और फटाफट हम उन्हें सुनाएंगे।

0: बिल्कुल, और प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम दोनों को दें इजाजत, हम मिलेंगे मंडे बहुत ही कुछ लजीज सा लेकर के, अच्छा सा लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए 89.6 FM पे। टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और लेकर आई हूँ आपका अपना प्रोग्राम कॉल ए ट्यून गोंडा। और भाई अभी आप इंजॉय कर रहे हैं मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा सॉन्ग, जो कि है नगीना मूवी से और आवाज़ है लता मंगेशकर जी की, और साथ ही साथ फरमाइश है हमारे बबलू पांडे जी की। और देखिए ना भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई ये कह रही है कि ये जंतर मंतर टोने टोटके सब इनके लिए खिलौने हैं भाई, लेकिन आप इन सारी चीज़ों पे भरोसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भरोसे लायक होती भी नहीं है, बस आपके मन में वहम बना देती हैं। फिलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है सबीहा की। सबीहा को सुनना है आईने की नज़र लग ना जाए कहीं। ये आवाज़ है अंजुम हुसैन की, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवाली गायक हैं। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, एंजॉय करते हैं।

अरे नहीं भाई नहीं, मौत आने से पहले बिल्कुल ना मरे, क्योंकि जिंदगी बड़ी हसीन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि हमने हर जगह सुना है कि जिंदगी बस 4 दिन की है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता भाई 4 दिन की कैसे, जब हफ्ते में होते हैं 7 दिन तो जिंदगी 4 दिन की

कैसे, और अगर चार दिन की है तो पिछले 21-22 साल से हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा झूठी होती हैं और गाने में ही खूबसूरत लगती हैं। ज़िंदगी चार दिन की बिल्कुल नहीं होती, अभी बहुत ज़िंदगी है जो हमें जीना है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे मरने वरने की बात तो भाई बिल्कुल ना किया करें। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है सुरेश कुमार जी की। सुरेश कुमार जी को सुनना है ये रात है प्यासी प्यासी। भाई ये गाना बड़ा ही प्यारा है क्योंकि इसमें है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी। फिल्म है छोटी बहू और ये बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसे हम इंजॉय करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे चैट बॉक्स की तरफ। चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ हमारे काफ़ी सारे लिसनर आ चुके हैं और काफ़ी सारी बातें भी कर रहे हैं। मैं एक एक करके अगर नाम गिनने लग जाऊँ ना तो बहुत सारे लोग हैं भाई, लेकिन इन शॉर्ट मैं सभी को कह रही हूँ कि भाई जितने लोगों ने मुझे विश किया है, जितने नहीं किया है, जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। वेल, एंजॉय कराना तो हमारा भी काम है। तो जल्दी से चलते हैं हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है सुरेश जी की फरमाइश।

भाई नहीं, क्या हो गया आज हमारे लिसनर को कि आज ये सब तड़प तड़प के मर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। मैं कह रही हूँ ना भाई, ऐसे ना कहें आप। और ये जो आप गाना भी सुन रहे हैं जो कि है जहाँ खुशी मिले मिलती है सोना वहीं रहना, ये है देवी प्रसाद जी की फरमाइश का सॉन्ग जिन्हें ये गाना सुनना था। तो देवी प्रसाद जी, इतना सैड सॉन्ग भाई, क्यों आपकी ज़िंदगी इतनी सैड हो रखी है? देखिए जिंदगी कैसी भी चल रही है, जिंदगी माहौल कितना, कहते हैं कि जब लाइफ आपकी बैंड बजा रही हो ना अच्छे से, तो फिर आपको नाच ही लेना चाहिए उस बैंड पे, उस बैंड पे आपको रोना नहीं चाहिए। कभी आपने देखा है कि बारात में बैंड बाजा बज रहा हो कोई बैठ के रो रहा हो ना? सब डांस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब जिंदगी बैंड बजा रही हो तो आपको भी नाच लेना चाहिए, तब दुखी कभी नहीं रहना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारे मोहम्मद अयूब जी की। हमारे मोहम्मद अयूब जी को गाना सुनना है भाई, बहुत ही प्यारा। नाम नहीं बताऊँगी, आप खुद ही सुनिए और खुद ही इंजॉय करिए। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम। भाई अगर आप भी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम, भाई अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं लेकिन नंबर नहीं है आपके पास, तो भाई मैं फिर से आपको ये नंबर बता दे रही हूँ। नंबर नोट करिए जी, 6393316429। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 6393316429। जल्दी से जाइए, इस नंबर पे कॉल मिलाइए और अपनी फरमाइशी सॉन्ग को इंजॉय करिए। अभी हम सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, हम जैसा आपको कहीं दिलबर ना मिलेगा, जो कि मूवी से है बेवफा से वफा, और आवाज़ है लता मंगेशकर जी की, और रिक्वेस्टेड सॉन्ग है मोहम्मद अयूब जी का। फिलहाल चलते हैं हम अपने चैट बॉक्स की तरफ। अब देखिए चैट बॉक्स में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, जिसमें से आर के श्रीवास्तव जी मुझे गुड आफ्टरनून तो विश कर ही रहे हैं और साथ ही साथ तीन बार विश कर रहे हैं। तो आर के श्रीवास्तव जी, आपको भी मैं तीन बार विश कर देती हूँ, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ इन्होंने सवाल पूछा है कि आयुषी मैम जी, आकांक्षा मैम कहाँ हैं? भाई आकांक्षा मैम आराम से छुट्टियों पर हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि जब हम कोई काम लगातार करते रहते हैं तो हम उस काम में कहीं ना कहीं बोर फील होने लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे तो उस काम में जब वापस आएंगे तो दुगनी एनर्जी के साथ वापस आएंगे और आपको अच्छे से एंटरटेन करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे और अच्छे से हम आपका एंटरटेनमेंट भी करेंगे। फिलहाल वो छुट्टी पे हैं, आएंगी आपसे जल्दी ही मिलेंगी। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है अनु पांडे जी की। अनु पांडे जी को गाना सुनना है, आपकी दुश्मनी कबूल है लेकिन आपकी दोस्ती से डरते हैं। अब भाई ये क्या हो गया, किसने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनी से ज़्यादा अच्छा रिश्ता दोस्ती होता है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि भाई जितनी शिद्दत से लोग प्यार करते हैं ना, उससे दुगनी शिद्दत से लोग दुश्मनी निभाते हैं। एक बार को प्यार करने वाले को भूला जा सकता है, लेकिन दुश्मन को कोई उम्र भर नहीं भूलता। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आपस में, हमारे इंडिया में, हमारे समाज में आखिर इतनी क्या कहते हैं, गर्मा गर्मी मची किस बात के? भाई वैसे ही मौसम बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा करिए अपना दिमाग, अपने रिश्तों को और अपनी दुश्मनी को। इसी थॉट के साथ छोड़ जाती हूँ आपको इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड।

भाई, यही तो जमाने की रीत है भाई। जो जान लुटाना कहते हैं कि मैं आप इस जान लुटा दूंगा, आखिर में वही आपकी जान लेके चले जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इतना कॉमन सेंस प्यार वाले नहीं लगा पाते ना कि जो जान लुटा रहा है उसने जान भी तो कई सारी ली होंगी, स्टोर करके रखा हुआ तभी तो लुटा रहा है ना। इसीलिए ऐसे लोग पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो झूठे वादे करते हैं। फिलहाल चलते हैं हम चैट बॉक्स की तरफ। चैट बॉक्स में काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी मैसेज कर रहे हैं। बबीता जी लिख रही हैं, नमस्ते मैम। नमस्ते बबीता जी। साथ ही साथ सभी लोग सॉन्ग इन्जॉय कर रहे हैं। आर के श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, मैंने आयुषी मैम आप प्रोग्राम बहुत अच्छा चला रहे हो, वेल डन, सुपर प्रेजेंटेशन, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच आर के श्रीवास्तव जी, आप इतना तारीफ कर रहे हैं। और एक्चुअली हम लोग वर्क भी इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पसंद आएगा, आपको पसंद आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद आरके श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि समता दी ने भी पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था। ऑफ कोर्स आरजे समता को कौन ही बीट कर सकता है। उसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं, उन्नति जी नमस्ते, शुभ दोपहर। ओ माय गॉड भाई, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आप कैसे उन्नति और मेरी आवाज़ को, आरजे उन्नति और मेरी आवाज़ को बिल्कुल सेम कहते हो कि हम दोनों बिल्कुल सेम हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, हम दोनों ही मजाकिया हैं, हम दोनों ही बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन सेम टू सेम मुझे नहीं लगता कि बोल रहे हैं। साथ ही साथ आर के श्रीवास्तव जी फिर लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच आर के श्रीवास्तव जी, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह आयुषी बेटा, थैंक यू सो मच। उसके बाद काफ़ी सारे लोग, नागेश्वर ढाकर जी लिख रहे हैं कि नाइस फरमाइश, हम तो आपकी दोस्ती से डरते हैं। भाई जिसकी ये फरमाइश है ना, उसको अनु पांडे जी आपको बता दें कि आपका फरमाइशी गाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अनुष्का जी लिख रही हैं कि आकांक्षा मैम क्यों नहीं आ रही हैं, बताएगा कोई जी। मैंने हर बार बताया, हर दिन बताया है कि आकांक्षा मैम फिलहाल छुट्टी पे हैं, जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है आनंद प्रताप सिंह जी की। आनंद प्रताप सिंह जी को सुनना है एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग, वो कौन सा है भाई? वो है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने और लता मंगेशकर जी ने, और फिल्म है भीगी पलकें, और इसमें स्क्रीनिंग हुई है स्मिता पाटिल जी और राज बब्बर जी की। अब देख लीजिए ना, इतने दिग्गज कलाकार कोई एक मास्टरपीस बनाते हैं ना, तो वो सालों साल नहीं भाई, दशकों तक वो सुपरहिट रहता है। और आज भी जब कपल्स अपनी फोटो डालते हैं तो ये गाना ज़रूर डालते हैं, एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल भाई, देखिए दुश्मनी हटा के हर चीजों को, हर दुख को, हर गम को परे हटा के हमें प्यार का रंग चढ़ा के हवा में ही उड़ते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम एक प्यार कर देता है, और प्यार का भाई जादू ही इस तरह होता है। अब जब मैं प्यार की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ लड़का लड़की के बीच का ही प्यार नहीं कह रही, कोई रोमांटिक वाला प्यार नहीं कह रही, मैं सभी टाइप के प्यार को इसमें कंसिडर कर रही हूँ। चाहे वो आपके माँ बाप का प्यार हो, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, या फिर आपका खुद से क्यों ना हो, हर एक एक प्यार अनमोल है और किसी की भी जगह कोई और नहीं ले सकता। फिलहाल हम चलते हैं हमारे चैट बॉक्स की तरफ। चैट बॉक्स में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और काफ़ी सारी बातें भी बोल रहे हैं। भाई देखिए, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आपको मैं उन्नति लग रही हूँ। फिलहाल उन्नति जी आएंगी, अनुष्का जी, उन्नति जी भी आपकी आपसे बातें करती हैं, आपको एंटरटेन करती हैं, आपको आपसे इंटरेक्ट करती है। लेकिन फिलहाल मैं हूँ आरजे आयुषी भाई, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मतलब धूप में ना निकला करो रूप की रानी फ्रॉम गवतार, रमेश यादव जी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं भाई कि गोंडा मैसेज मसाला और क्वालिटी उन गोंडा, ये दो अलग अलग शोज़ हैं। एक में एक कॉलिंग प्रोग्राम है, एक में आप कॉल्स के ज़रिए हमें अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, और एक मैसेजिंग का प्रोग्राम है जिसमें आप मैसेज के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। साथ ही साथ ये NNN कौन है, आई डोंट नो, ये शायद आपका नाम हो, तो NNN जी ने हमें गुड आफ्टरनून बोला है। गुड आफ्टरनून NNN जी। और फिलहाल चलते हैं हम अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रीतल यादव जी की। रीतल यादव जी को सुनना है, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। भाई देखिए, चेहरा प्यारा हो नहीं प्यारा हो, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि प्यार चेहरा कितना खूबसूरत है वो देखने वालों की आंखों पे डिपेंड करता है। कई लोग जो खूबसूरती देखना ही नहीं चाहते, उनके लिए कितना भी खूबसूरत चेहरा हो वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका चेहरा नहीं खूबसूरत है फिर भी देखने वाले की आंखें खूबसूरत हैं, तो आप उसके लिए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान हैं। फिलहाल चलते हैं अपनी फरमाइश की तरफ, जो कि है राज मूवी से, जिसमें आवाज़ है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की। इंजॉय करते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

बैक लिसनर आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी फरमाइशी सॉन्ग को। और भाई नेक्स्ट फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे रिजू जी की। अब रिजू जी ने सोचा कि भाई माहौल बड़ा ही दुखी हो रखा है, या तो कोई प्यार भरे गाना गा रहा है, कोई बहुत दुखी वाले, तो थोड़ा सा नाच गाना भी ले आते हैं। इनकी फरमाइश है भाई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, तुझे अक्सा बीच घुमा दो, जिसमें स्क्रीनिंग हुई है हमारे प्यारे भाई जान यानी कि सलमान खान की। और ये मूवी ये गाना है मूवी गॉट टू सी ग्रेट। और भाई ये गाना ना मुझे ऐसा लग

चलो चलो चलो भाई, जल्दी से चलते हैं। कोई किसी की भाभी बन रहा है, कोई किसी का जीजा, क्योंकि भाई शादी का मौसम चालू हो गया हमारे इंडिया। भाई इसी गर्मी में शादियां भी हो रही हैं, लेकिन हमारा काम क्या, हमारा काम तो इंजॉय करना है। गर्मियां तो आती जाती रहेंगी भाई, इस साल जाएगी, अगले साल फिर आ जाएगी, लेकिन शादी बार बार तो नहीं होगी। वेल चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारे राम नरेश जी की। हमारे राम नरेश जी चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने को, जो कि बर्थडे स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि आज है उनके नाती का बर्थडे। तो भाई इनके नाती को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके जन्मदिवस की, और आशा करती हूँ कि हमेशा इंसान खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे। ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपके नाती के बर्थडे के उपलक्ष्य में।

वेलकम बैक लिसनर, आप एंजॉय कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा सोहर जो कि आवाज में है करिश्मा राठौड़ की। ये एक भोजपुरी सोहर सॉन्ग है जो कि हमारे अवध में, हमारे इन शॉर्ट अगर आपको बताएं तो हमारे उत्तर प्रदेश, हिंद, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में सोहर की जो चलन है वो बहुत ज्यादा है। तो आई होप आप तो समझ रहे होंगे और इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ जो कि है हमारे राजू सलमानी जी की। राजू सलमानी जी को गाना सुनना है मेरा प्यार वो है फ्रॉम द मूवी ये रात फिर ना आएगी, जिसमें स्क्रीनिंग हुई है शर्मिला टैगोर जी की और विश्वजीत जी की। फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा कट करती हूँ और लेके चलती हूँ चैट बॉक्स की तरफ। चैट बॉक्स में हमारे नागेश्वर धाकड़ जी लिख रहे हैं कि मैंने कसम खा रखी, यानी कि आरजे आयुषी ने कसम खा रखी है इनका सॉन्ग ना प्ले करने की। तो भाई ये बताइए, अगर आरजे कसम खा लेगा लिसनर की फरमाइश ना पूरी करें तो आरजे का तो भाई खाता ही बंद हो जाएगा। हमने ऐसी कोई कसम नहीं खाई, बल्कि नागेश्वर धाकड़ जी आपकी फरमाइश अभी तक मेरे पास आई ही नहीं। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने जो रिक्वेस्ट है उसको भी चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, यानी कि भाई म्यूजिकल ब्रेक, और सुनते हैं हमारे राजू सलमानी जी की फरमाइश का ये सॉन्ग।

अरे बाबा, इन्होंने क्या सही चीज बताई है कि एक आइडियल प्यार होना क्या चाहिए। तो भाई, एक आप अगर एक आइडियल प्यार करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो आपको ये गाना जरूर सुनना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ दिन में एक बार भाई रिमाइंड करने के लिए सुन ही लिया करो, क्योंकि ये हमारे समाज में काफ़ी सारे लोगों की नीड है कि हम लोग यही हमेशा सोचते ना कि हमें ऐसा प्यार मिलेगा, वैसा प्यार मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हकीकत में आजकल का प्यार गया कहाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घूम घूम के रह गया है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, क्योंकि भाई समय बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है और फरमाइशें अभी भी बहुत सारी हैं, कहीं ये छूट ना जाए मुझे तो डर लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारी बबीता जी की, जिन्हें सुनना है तुझ संग प्रीत लगाई सजना। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

0: का खत पढ़ रही हो इतने प्यार से?
1: मम्मी का, मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे तुमसे,
0: तुमसे क्या
1: मोहब्बत है,
0: तो
1: उसका जवाब आया है।
0: क्या लिखा है? अरे बताओ तो सही क्या लिखा है? अरे बताओ तो सही क्या लिखा है?
2: लिख दिया है ये मम्मी ने खत में।
3: क्या

वापस हम एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बीच में हूँ आपके आरजे आयुषी और हम फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारा सा शो क्वालिट्यून गोंडा जिसमें एंजॉय कर रहे हैं हम निब्बर जी की फरमाइश का सॉन्ग लिख दिया है मम्मी ने मुझे खत में कि प्यार करना मना है। मुझे लग रहा है कि मम्मी को प्यार ज़्यादा पसंद नहीं है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ जो कि है शक्ति जी की जो कि हमें सुन रहे हैं धानेपुर से। धानेपुर से ने सुनना है एक सूफी सॉन्ग जो कि है छाप तिलक। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है और इसे एंजॉय करते हैं हम। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर, आ चुके हूँ वापस मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम क्वालिटी ट्यून गुंडा, जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग छाप तिलक, जो की है शक्ति जी की फरमाइश पे। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो की है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की। धर्मेंद्र मोहन जी को सुनना है, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। मुझे लगता है धर्मेंद्र जी के प्यार के बदले प्यार सभी को मिलता है, बस प्यार का रूप थोड़ा सा बदला होता है। इसीलिए किस्मत वाले हम सभी हैं, क्योंकि सभी को प्यार के बदले प्यार ज़रूर मिलता है। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जो कि है मूवी मेरा सुहाग से, जो कि रिलीज़ हुई थी 1987 में। आशा भोसले की आवाज़ है और इसमें स्क्रीनिंग हुई है रति अग्निहोत्री जी की। एंजॉय करते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, स्टे ट्यून।

वेलकम बैक लिसनर, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम। भाई देख रही हूँ कि क्या हो गया। भाई देखिए, 4 बजती मुझे पता नहीं कि बहुत दुख सा होने लगता है, क्योंकि भाई समय खत्म हो चुका है। हमारा साथ आज का यही था। हम कल फिर मिलेंगे आपके प्रोग्राम्स को लेकर के, और यूं ही बहुत ही मस्ती मजाक के साथ अपना दिन बिताएंगे। फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ इंजॉय कर रहे होंगे रेडियो कैनाल सिटी 10.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और आपको छोड़ जाती हूँ इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, नहीं ये हम नहीं बोल रहे, ये आपने अक्सर मूवीज में डायलॉग बहुत सुना होगा, इवन ये भी सुना होगा कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाते हैं। खैर, ये हमको और आपको सभी को पता है, और पता होना भी चाहिए कि न्याय पाना हमारा अधिकार है, बेशक। और कई बार ये भी ख्याल आता है कि भाई न्याय पाना अधिकार तो है, लेकिन बड़ा महंगा कई बार साबित हो जाता है कि भाई ये वकीलों की फीस कैसे दिया जाए, आखिर कैसे बेयर करें। लेकिन आज एक ऐसा नाम, एक ऐसा टर्म हम बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा, विधिक सेवा प्राधिकरण। जी हाँ, यानी एक अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मुफ्त आपके केस लड़ने का अस्पताल। जी हाँ, एक ऐसा अस्पताल जहां पे आपके लिए आपके न्याय को मुफ्त दिलाया जाता है और तेजी से दिलाया जाता है, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण। सो बहुत अहम बातचीत का आज विषय है, जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोंडा की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, बेहद यंग है और बेहद डेडिकेशन के साथ में काम कर रही हैं, मिसेज अंकिता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा। मैम वेलकम करते हैं आप।
2: थैंक यू सो मच।
1: और जैसा कि मैम अभी मैंने अपने लिसनर्स को बता दिया है कि आज का जो विषय है वो बहुत अहम है, चाहे आप हो या मैं हूं, कोई चाय की दुकान चलाने वाला हो, कोई ठेला वाला हो, कोई ऑफिसर हो, हर किसी का कोई ना कोई हो सकता है जिंदगी में कभी कोई केस हो, तो न्याय तो सबको चाहिए और ये हमारा अधिकार भी है। लेकिन एक चीज बड़ी खूबसूरत है कि फ्री में मुफ्त न्याय, तेजी से, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझाइए कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है और इसका उद्देश्य यानी इसका एम क्या है, क्यों इसको आखिर बनाया गया।
2: जी, पहले तो आप सभी को, मेरा श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकिता सिंह है, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हूँ गोंडा में। आपका सवाल ये है कि ये है क्या, तो मैं सिंपल शब्दों में आप सारे जो भी लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गवर्नमेंट की और जुडिशरी की बनाई हुई एक स्कीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको बिना किसी तकलीफ के, अगर आपको कचहरी में या कहीं से भी किसी से भी रिलेटेड कोई मामला है, स्पेशली मैट्रिमोनियल लीगल डिस्प्यूट है अगर आपका कोई भी, तो आप यहाँ आकर अपना समाधान करा सकते हैं बिना पैसे दिए, यही है। और हमारे पास बहुत ही एक टीम है सारे एडवोकेट्स की, लर्नेड एडवोकेट्स की, जो कि आपकी मदद करेंगे न्याय पाने के लिए बिना किसी पैसे को खर्च किए, जो कि सबको पता है एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, तो लोग थक जाते हैं, जैसे कि आपने कहा इंट्रोडक्शन में, कचहरी की शक्ल देखना लोग नहीं चाहते, मगर हमारी बिल्कुल ये प्रयास रहता है इस पूरे प्राधिकरण का कि इसमें लोग आए और अपना समाधान पाए, न्याय उन तक पहुंचे, और न्याय को पहुंचाना ही सालसा और नालसा, जो कि हमारा हेड है, उसकी जरूर पूरी पूरी वो रहती है ट्राई कि आप लोग तक पहुंचे। और एक इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 20 से 30 मीडिएटर्स हैं जो कि आपका मीडिएशन करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपको न्याय कैसे मिल सकता है, आपको एक एक प्रोसीजर समझाया जाएगा, कहीं पर भी आपको भटकाया नहीं जाएगा, आपके प्रोसीजर से आपको हमेशा समझाया जाएगा, आपको न्याय दिया जाएगा बिल्कुल जैसे आपको मिलना चाहिए। और आपके अगर आप कोई सवाल भी है तो आप मुझ तक, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस तक भी आ सकते हैं। इसमें कुछ चंद लोग हैं जिनके लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी बनाई गई थी, जो कि है छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजंस, SC/ST कम्युनिटी, और भी जो कुछ ऐसे जिनकी इकोनॉमिक इनकम आपकी 3 लाख से कम है सालाना, वो भी इसमें फॉल करते हैं। इनके लिए ये प्राधिकरण हमेशा 24/7 अवेलेबल है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक ऐसा एज ग्रुप, एक ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन जिनको जरूरत है इस न्याय के लिए, उनके लिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण एक बॉडी है जो कि काम करती है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा न्याय अभी मैम आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं आपको, यानी अंकिता सिंह मैम को, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ी सी पहले बात कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में और यहाँ तक आप कैसे पहुंची।
2: जी बिल्कुल
1: जी, प्लीज।
2: मेरा नाम अंकिता सिंह है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं पीसीएस जे एग्जामिनेशन होता है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है, 2016 में मैंने उसको क्वालिफाई किया था। उसके पहले मैंने लॉ किया है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टचवुड ये एग्जाम क्वालिफाई किया।
1: क्या बात।
2: और उसके बाद मैंने, मेरे को अब 8 साल हो गए इस सर्विसेज में। इसके पहले मेरी पहली पोस्टिंग थी लखीमपुर खीरी,
1: अरे
2: दूसरी पोस्टिंग रही लखनऊ, और तीसरी पोस्टिंग है आपका शहर गोंडा।
1: क्या।
2: और मैंने इसके पहले भी, मैं, हम लोग जो एग्जाम ये क्वालिफाई करते हैं पीसीएजे, उससे आप जज बनते हैं, ये काफी कम लोगों को पता होता है कि उनको लगता है बूढ़ा लोग ही बैठे होंगे वहाँ पे डायस।
1: करेक्ट।
2: लेकिन नहीं, अब 22 से लेकर 35 तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं।
1: okay.
2: और इसकी वैकेंसीज निकालती है पब्लिक सर्विस कमीशन, आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं, जिन्होंने भी लॉ किया है स्पेशली। और हॉबीज के तौर पे मैं बताऊं तो मुझे कथक आता है, मैंने कथक सीखा हुआ है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रेस, ये सब में मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। और बाकी बोलने का बहुत शौक है, तो थैंक यू सो मच मुझे एफएम पे बुलाने के लिए, क्योंकि एज अ जज बहुत ज्यादा बोलने को नहीं मिलता, सुनने को ज्यादा मिलता है।
1: बिल्कुल सही बात है, तो आज ऐसा मौका है जहाँ पे आपको अब ज्यादा बोलने का मौका मिलने वाला है।
2: थैंक यू।
1: पर अच्छी बात यह है कि आप जो बोलने वाले हैं वो इस वक्त सुन रहे हैं हमारे श्रोता की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है हमारे कोई अभी इस वक्त श्रोता ऐसे सुन रहे हो जिनको सच में न्याय नहीं मिल पा रहा हो, या जो विधिक सेवा प्राधिकरण से अभी कहीं ना कहीं परिचित नहीं होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो मैम, आपने मोटे मोटे तौर पे बताया एक ऐसी पॉपुलेशन जो कहीं ना कहीं गरीब है, वंचित है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको हम मानते हैं कि सोसाइटी में ये वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये कहीं ना कहीं काफी सेंसिटिव होते हैं, तो इनके लिए आपने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है और इसके आपने उद्देश्य के बारे में भी प्रकाश डाला, इसके बारे में बताया। अगर मैं काम की बात करूं कि विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी कार्य प्रणाली, तो इसके बारे में प्लीज हम आपको बताएं।
2: बिल्कुल, हमारी एक, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, वी हैव अ टीम ऑफ सो मेनी पीपल, स्पेशली LADCS, जो डिफेंस काउंसिल्स है वो होते हैं, जो कि अक्सर शिविर लगाते हैं जिला कारागार में, और ये गांव-गांव जाकर भी पता करते हैं कि किसी की कोई समस्या तो नहीं है जो कि लीगल डिस्प्यूट से रिलेटेड हो। दूसरा हमारा एक PLV इसका टीम होता है, जिसको कहते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जो कि हमारे पास गोंडा में 43 की तादाद में है।
1: PLV
2: पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है हर बड़े तहसील पर, थानों पर, छोटे गांवों में, हर छोटे तहसील के गांव में ये जाते हैं और ये लोगों को पैरा लीगल सर्विसेज देते हैं। जैसे कि कुछ गांव में लोगों को अगर एप्लीकेशन टाइप करना नहीं आता न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, तो वो उसकी भी मदद करते हैं, नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं कि कैसे आप अपने लीगल राइट्स को यहां पर आकर पा सकते हैं। तीसरा हमारा सबसे बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा एक तरह से वो है चेयर, एक तरह से हमारे है मीडिएशन सेंटर्स की, मीडिएशन मतलब मध्यस्थता केंद्र, जो हमारे पास 30 एडवोकेट्स हैं, मीडिएटर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, जो कि मीडिएशन करते, अगर आपका, अगर ये प्री लिटिगेशन हुआ, जैसे आप कचहरी में आने से पहले, आपका केस होने से पहले अगर आपको लगता है कि आप मीडिएशन सेंटर में आकर अपनी आपसी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं बातचीत करके, एक लीगल किसी ऐसे इंसान से बात कर से, तीसरे व्यक्ति से जो काउंसलर हो आपका, जो आपको समझा सके कि मीडिएशन में, सॉरी लीगल उसमें ना जाकर मीडिएशन से ही चीज़ों को सुलझा लिया जाए। जैसे कि ऐसे बहुत सारे पारिवारिक मामले होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ का अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो हमारे पास ये मीडिएटर्स अक्सर अक्सर क्या एवरी सिंगल डे हम लोग 50 से 60 कर रहे होते हैं।
1: ओके।
2: हाँ, तो वो बहुत ज्यादा ही एक्टिव है और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। तो वो लोग अक्सर मीडिएशन करते हैं, तो आप अपनी फाइल लेकर, अपना एप्लीकेशन लेकर, स्वयं, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो स्वयं भी उपस्थित होकर हमारे यहाँ अपना मीडिएशन करवा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और हम लोग पूरा हेल्प करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारा बेसिक राइट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है हमारा, लीगल न्याय पाना हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इस वजह से ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है गवर्नमेंट।
1: ओके। तो मैम, एक चीज, मुझे एक प्रश्न ये आ रहा है कि मान ली इस वक्त हमारे कोई श्रोता जो हमको सुन रहे हो तरबगंज तहसील से,
2: जी,
1: तो वो गुंडा नहीं आ सकते हैं,
2: जी,
1: तो क्या हर तहसील पर, हर ब्लॉक पर, या किसी भी गाँव से कोई कैसे आप तक पहुँच सकता है?
2: हर तहसील और गाँव में हमारा पैरा लीगल वॉलंटियर है, वहाँ पर उनके बारे में सबको ही पता है, वो तहसील ब्लॉक में ही बैठते हैं, जो आपका हेडक्वार्टर है वहाँ का, जो वहाँ पर वो बैठते हैं और वहाँ पे आप जाकर उनसे सारी सलाह ले सकते हैं। उनको नियुक्त ही इस पर्पस के लिए किया जाता है। तो आप वहाँ जाइए, आप उनसे जो भी आपके सवाल आते हैं पूछिए। अगर आपका सवाल उसी स्तर से ठीक हो सकता है तो वो बिल्कुल सुलझा देंगे, नहीं हो सकता है तो हमारा दरवाजा आपको बता देंगे और वहां तक पहुंचा भी देंगे आपको। आपको बस उनके साथ आ जाना है और आपकी पूरी सेवा और मदद की जाएगी।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही मैम कि हर जगह से हर एक गांव तक यानी हर एक घर तक पहुंच है विधिक सेवा प्राधिकरण के जो वॉलंटियर्स हैं, और उन तक अगर कोई भी एक आम जन जाता है तो उसकी समस्याओं का निदान होता है। अगला सवाल जो बहुत अहम है मुझे लगता है वो आपसे जानना भी मुझे चाहिए, वो ये है कि विधिक सेवा प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आखिर कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह से मुफ्त कानूनी मदद अवेलेबल कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का हेड होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट लीगल अथॉरिटी का हेड होगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें बहुत सारे आईएएस लेवल के सचिव होते हैं और सेक्रेटरीज, बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप नेशनल लेवल पे भी वर्क करते हैं, स्टेट लेवल पर भी वर्क करते हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये काम हम लोग को दिया गया है कैसे वर्क करना है। तो बेसिकली ये तीन टीयर है जिसपे हम लोग काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी में वो लोग होते हैं जो जुडिशरी से, मतलब पीसीएसजे जो क्वालिफाई किए हुए हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको ये एज एडिशनल चार्ज दिया जाता है। फुल टाइम सेक्रेटरी होते हैं हम लोग और हम लोग काम करते हैं।
1: वाओ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और यानी ये 24/7 आपके लिए कहीं ना कहीं ये खुला है, ये बहुत बड़ी चीज है और काफी अच्छे से आपने इसको बहुत,
2: इसका हेल्पलाइन नंबर भी है इनफैक्ट
1: 15100। सो हमारे श्रोताओं, ये जो है टोल फ्री नंबर है 15100, इस पे आप कॉल करके अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप इसके रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसे वॉलंटियर्स मिल जाएंगे जो आपकी समस्या का निदान कराने के लिए तत्पर होंगे। तो मैम, इसके साथ ही साथ अब फिर अगला सवाल ये भी आता है कि आखिर कौन कौन सी ऐसे लोग हैं जो मुफ्त कानूनी मदद के लिए पात्र होते हैं, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता है कि हर किसी के लिए, जैसा आपने पहले ही बता दिया था कि आखिर कुछ खास लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हमको बता दें।
2: देखिए, जैसे कि आप और हम जानते हैं, हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा बच्चे जो सेंसिटिव हैं और सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो हैं, कमजोर तो नहीं कह सकते, मगर जिनको सबसे ज्यादा जरूरत हमारी
1: जरूरत है,
2: करेक्ट, जिनको डायरेक्शन की जरूरत है, वो होते हैं बच्चे,
1: बिल्कुल,
2: दूसरे महिलाएं, क्योंकि आज भी आप कितना भी विमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, गांव-गांव तक, घर-घर तक, छोटे-छोटे गांव में, घरों में, कस्बों में, अभी भी औरतें उतनी सशक्त नहीं है। तो हमें उनको पहुंचाने की, उनकी मदद को, उनको हमारी मदद की जरूरत है, क्योंकि हम काफी सशक्त हैं,
1: बिल्कुल,
2: हम सशक्त उनको कर सकते हैं। इसलिए बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, वो भी, उनको भी हमारी बहुत जरूरत है। उनको भी न्याय अगर नहीं मिल रहा है या किसी भी और तरह की उनको जरूरत है, वो भी हमें, हम उनको देते हैं। दूसरा, श्रमिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और जैसे कि पहले बताया था कि मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ रखा है, उससे अगर आपको किसी तरह किसी को आहत पहुंची है, वो भी हमारे पास आ सकता है। सबसे अंत में वही, जो इकोनॉमिक, जिनकी आय सालाना 3 लाख से कम है इकोनॉमिक, वो हमारे पास आ सकते हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव नहीं है, और भी लोग आ सकते हैं, मगर ये एक्सक्लूसिवली इनके लिए है। इनको तो आना ही आना है, इनकी तो मदद हम लोग आंख बंद करके
1: करेंगे,
2: मगर इसके अलावा भी सभी को, मैं बिल्कुल आदमियों को इसको वो नहीं करूंगी, आप लोग भी हमारे पास लीगल डिस्प्यूट अपना लेकर आ सकते हैं, मगर इनके लिए वो, क्योंकि इनकी वॉइस हम बन सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप इनकी आवाज बन सकते हैं। ज्यादातर किस तरह के मामले आप देखते हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण में आप तक आते हैं?
2: प्रोमिनेंट आप देखेंगे जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा,
1: शादी को लेकर बिल्कुल,
2: मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जैसे गांव जगहों पर शादी में लेकर, या घर में नहीं रहना है, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है किसी का, इस चीज से रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत है, गाड़ी का, जैसे अब हम लोग 9 मई को लोक अदालत कराएंगे, उसमें भी ये चीजें आ जाती हैं, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे,
1: बिल्कुल।
2: लेकिन जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्रोमिनेंट हमारे यहाँ होते हैं, जिसमें लोगों को अभी नॉलेज नहीं है कि हम लोग, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनको बचा के रखना है। ज्यादातर शादी और घर के रिश्ते जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से, आपका घर टूट रहा होता है, तो हम लोग चाहते हैं इसको हम लोग मीडिएशन में लाकर, प्री लिटिगेशन, मतलब कचहरी की स्टेज के पहले ही इसको रिजॉल्व कर दिया जाए, ताकि कभी किसी के घर को अफेक्ट ना हो।
1: क्या बात?
2: उसकी मेंटेन रहे पीस,
1: बिल्कुल
2: ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम चाहते हैं मेंटेन रहे।
1: बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है ये तो हर शख्स जानता है कि अगर आप कचहरी पहुंच जाएंगे तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस जा सकता है, न्याय में बहुत वक्त लगता है क्योंकि इतने सारी व्यवस्था हमारे पास अभी नहीं है। एक चीज जो है मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा, आपके पास इतने सारे मामले आते हैं, कभी कोई ऐसा मामला लगा कि या कुछ ऐसे मामलों को देख करके कि देखो कितनी छोटी सी बात थी, अच्छा हुआ कि ये विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी बॉडी वर्क करती है, नहीं तो ये आगे जाता खिंचता और आपने मध्यस्थता करा, वो बहुत आराम से चीजें सॉल्व हो गई हो। कोई आप एग्जांपल बिना नाम लिए अगर बताना चाहे तो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो आप और हम जब उनकी कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत ही छोटी चीज थी,
1: ये मेरे घर में भी होता है लेकिन उस पे ध्यान नहीं देता।
2: तो जैसे एक वाइफ ने बोला कि मेरे हस्बैंड एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं रोज सुबह नाश्ता बनाकर दूं उनको, और वो सुबह मतलब इस समय उठ जाओ और उनका नाश्ता बनाओ और वो ऑफिस जाए करें। तो आपने और मैंने बचपन से ये चीजें देख रखी, हमारी मदर्स करती हुई आई,
1: बिल्कुल
2: हमारे लिए नॉर्मल प्रक्रिया हो सकती है, इनग्रेन्ड है हमारी सोसाइटी में कि ये तो होना ही
1: था।
2: बट उस औरत को लगा मैं भी वर्किंग हूँ और आप भी वर्किंग हैं, तो सिर्फ मैं क्यों बनाऊं, आप भी तो बना सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसका अब झगड़े होते होते दोनों के बीच डिवोर्स तक बात चली गई। तो अच्छी बात ये थी कि उनको अवेयर थे कि मीडिएशन में जाना चाहिए, क्योंकि उनको उस रिश्ते को खुद भी बचाना था, तो वो लोग आए हमारे पास और हम लोग ने उनसे बातचीत की, तो पता चला कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है,
1: बस बातचीत नहीं,
2: होती क्योंकि दोनों वर्किंग हैं और दोनों एक दूसरे से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बातचीत ही नहीं हो पाती है। तो जब बातचीत करी हमारे साथ बैठ के, उन्होंने 6 घंटे बिताए, सक्सेसफुल रहा मीडिएशन, दोनों लोग एक दूसरे के लिए खाना बना रहे और खुशी खुशी नौकरी कर रहे
1: हैं।
2: तो ये कई बार होता है, हमारा जो झगड़ा होता है वो ईगो का होता है,
1: ईगो का होता है,
2: कई बार प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट ईगो का है, परिवार टूट रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि अब हर कोई बहुत ज्यादा, एक समय था जब जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, हर कोई एक जॉइंट परिवार में, संयुक्त परिवार में रहता था, अब हर कोई न्यूक्लियर परिवार में रहता है और अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस है, बट हम लोग अपना रूट्स नहीं भूल सकते ना,
1: बिल्कुल
2: हम लोग को सबको लेकर ही चलना है, तो अगर उसको बचाना है तो मीडिएशन ही एक तरीका है। जैसे आपसे आपस में अगर हमें कोई स्ट्रेस है तो हम लोग किसी बड़े भाई से बात कर लें या बड़ी बहन से बात कर लें तो हम रिजॉल्व हो जाते हैं ना, चलो इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी, दिमाग में बड़ी लग रही थी,
1: हाँ, वो हमें
2: तो उसी वो बड़े भाई और बड़ी बहन का रोल हमारे मीडिएटर्स प्ले कर रहे हैं कि इनसे बात कर लिया अब सब रिजॉल्व हो गया।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से बताया आपने कि किस तरह से मध्यस्थता केंद्र जो है वो लोगों की जिंदगियों को बचा रहा है, बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होने से लोग सालों साल तक परेशान होते हैं और एट द एंड इतना वक्त, इतना पैसा और इतने इमोशन खोने के बाद उनको लगता है कि कितनी छोटी सी बात थी और आज उसकी कोई भरपाई नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ये वैसे तो एक व्यवस्था चलाने के लिए है विधिक सेवा प्राधिकरण, बट कई बार दिल से दुआएं लोगों को निकलती होगी आपके लिए, ये इसमें कोई मतलब पूरी टीम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बधाई के पात्र हैं अगर ऐसा काम, नेक काम कर रहे हैं आप। वैसे बहुत बड़ा सवाल जो अगला है जो आप सभी लोगों को जानना भी चाहिए, और वो ये है कि लोगों को बिला वजह की मुकदमेबाजी से बचाने के लिए क्या कोई व्यवस्था है, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से चाय ब्रेक का टाइम, सो चलिए मिलते हैं चाय ब्रेक के उस पार, सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: हाँ जी, गर्मा गर्म चाय के बाद वापस से आ गए हैं आपके अपने आरजे अदनान एक मीठी सी आवाज लेकर। वैसे तारीफ हम खुद से कर लेते हैं क्योंकि हम किसी और को मौका नहीं देते कि कोई क्यों करे, और नहीं करता है तो क्या ही टेंशन है। सो वापस से हम आ गए आपके अपने शो में और आप सुन रहे हैं अपना प्रोग्राम गौधली। आज हम बात कर रहे हैं हर शख्स से जुड़े हुए न्याय के, इंसाफ के, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के काम के बारे में। किस तरह से हर एक शख्स तक पहुंचने की जरूरत बन गया है, किस तरह से लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है विधिक सेवा प्राधिकरण और उसके वॉलंटियर्स, किस तरह से 24/7 यानी सातों दिन 2400 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। मैम, जाने से पहले हमने एक सवाल कहा था कि आने के बाद हम आपसे पूछने वाले हैं। सवाल ये कि अक्सर देखा है कि बिला वजह की मुकदमेबाजी, जिसे हम व्यर्थ मुकदमेबाजी कह सकते हैं, सो इससे बचाने के लिए क्या कोई सिस्टम है, और है तो क्या है?
1: जी, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा मध्यस्थता अभियान चलाया गया है जिसमें हम लोग ने अब हमारे यहाँ बहुत ही अनुभवी 30 मीडिएटर्स हैं जो कि आपको प्री लिटिगेशन स्टेज, जो प्री लिटिगेशन का स्टेज का मतलब होता है कचहरी मतलब कोर्ट में आने से, केस डालने से पहले का जो स्टेज होता है
0: जी।
1: उसमें अगर आप आकर हमारे मीडिएशन सेंटर पे अपने केस को ले आते हैं, अपने डिस्प्यूट को ले आते हैं, तो उसके लिए हमारे 30 मीडिएटर्स उपस्थित हैं गोंडा जिले में, जिसमें आपको 24/7 10 से 5 आपको ये सारे ही लोग मिलेंगे जिसमें आपकी फाइल जाएगी और वो आपका हर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और ये तब तक रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब तक आपका डिस्प्यूट पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको ना ही किसी एडवोकेट से, ना ही किसी जज से, ना ही किसी कचहरी में जाने की जरूरत है। हमारा कचहरी में एक सिस्टम है जिसमें आपको आना पड़ेगा, बट आपको कचहरी से रिलेटेड कुछ नहीं करना है। आपको बस हम तक आ जाना है, अपना रिजोल्यूशन बता देना है, और उसके बाद सब कुछ हमारे ऊपर है।
0: मैम, क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होता है क्या, जब कोई अगर आपसे
1: बिल्कुल
0: हेल्प मांगने आता है तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये पात्र है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जैसे फाइल आती है, हम लोग एक फाइल प्रिपेयर करते हैं उनकी
0: जी।
1: और अपने 30 मीडिएटर्स को फाइल दी जाती है, तो जब तक हमारे पास ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा इनकी प्रॉब्लम क्या है,
0: बिल्कुल,
1: इनके पॉइंटर्स क्या है जिस पे इनको रिजॉल्व के लिए ये लोग आए हुए हैं, इनके डिस्प्यूट कहाँ कहाँ राइज हो रहे हैं। तो एक प्रॉपर फाइल होती है, एक चैनल से ही वो आती है, तो बिना चैनल और डॉक्यूमेंटेशन के हम लोग नहीं आते, ताकि उनके पास भी एक प्रॉपर पेपर रहे कि इस तरह से रिजॉल्व हुआ, ये था हमारा प्रॉब्लम।
0: ओके, क्या कभी आपने ऐसा भी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे इसका जस्ट फायदा लेने आ रहे हो, हालांकि उनको इसको जरूरत नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं वो एक कहानी गढ़ रहे थे, ऐसे भी कुछ मामले सामने
1: आए? ऐसा बहुत ज्यादा प्रेविलेंट नहीं है, मैं बताऊंगी, लेकिन बहुत ही कम होंगे ऐसे मामले, क्योंकि कचहरी का मुंह देखने में ही पहली बात लोग डर जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इस चीज का गलत फायदा, हाँ मैं मान सकती हूँ, लिटिगेशन मतलब जब प्रॉपर केस चल रहा होता है तो इसका फायदा उठाया जाता है, उस सिस्टम का फायदा उठाने के लिए लोग बैठे हैं, मगर जो हमारा मीडिएशन सेंटर है इसका फायदा लोगों ने कभी नहीं उठाया, टचवुड, अभी तक ऐसा कोई मैंने वाक्या सुना भी नहीं है और ना ही सुनने को शायद मिलेगा भी।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, मैं इसको जानना चाह रहा था इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया, और ये बहुत अच्छी बात है हर उस गोंडावासी के लिए जो इस वक्त इस शो को सुन रहे हैं और ये बात आपके सामने आई है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो सच में हकदार है उनको उनका हक दिया जा रहा है। एक शब्द है वायरल मैम, जो है लोक अदालत, जिसके बारे में भी आपने कहा भी था कि हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत, कुछ ऐसा इसका मायने निकल के आ रहा है, तो इसमें किस तरह के मामलों का निस्तारण किया जाता है, कैसे मामले इसमें आते हैं?
1: ठीक है, पहले तो मैं एक इंट्रोडक्शन तौर पे आपको लोक अदालत
0: क्या
1: होता है क्या है ये बताती हूं।
0: बिल्कुल,
1: लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत होती है जो कि स्टेट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है हमारी, जो कि इंडिया लेवल पे काम कर रही है, उनके ये डायरेक्शंस है कि आप साल के 4 या 5 लोक अदालत करवाई जाएगी। इसके पहले मार्च में हो चुकी है, ठीक है, अब मई में हो रही है, अब जुलाई सितंबर, इसकी डेट पहले से निकल कर आ जाती है और डेट निर्धारित होती है 2nd Saturday ऑफ एनी मंथ, ये आपकी हो सकती है।
0: okay.
1: उसके बारे में प्रचार प्रसार हम लोग 2 महीने पहले से ही चालू कर देते हैं।
0: ये नेशनल लेवल से आती है?
1: जी, नेशनल लेवल की ही डायरेक्शन है ये जो हमें फॉलो करनी है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इस पे काम करता है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमें भी कुछ डायरेक्शन देता है कि आप इस तरह लोगों की मदद करिए। 2 महीने पहले से ही हम लोग इस चीज को लेकर बहुत ही एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बात आई लोक अदालत की, तो 9 मई को हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें मामले क्या होते हैं, जैसे चालानी से रिलेटेड मामला हुआ
0: जी,
1: मीडिएशन से रिलेटेड, कई बार सिविल के जो मामले होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज पे या ऐसे मामलों पे खत्म किए जा सकते हैं, उसके मामले होते हैं। ये कोर्ट की कुछ बातें बता रही हूँ, ये आपको मैं कोर्ट से रिलेटेड बता रही हूँ। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन से भी आपके मामले खत्म होते हैं
0: जी।
1: फिर होते हैं विद्युत के कुछ मामले, ठीक है, गाड़ी चलानी जो आजकल हम लोग सुनते हैं कि मेरा चालान कट गया, तो ये इस दिन इसमें सारे, क्योंकि ये पेटी ऑफेंस है, मतलब बहुत ही न्यूनतम उसमें खत्म किया जाएगा इस चीज को। ये सारे मामले लोक अदालत पे आकर आप खत्म करवा सकते हैं खुशी खुशी, ना ही आपको इस, और इस, ये अंत है, मतलब इसके अलावा आप इसकी अपील नहीं कर सकते, मतलब अच्छा। ये आपका वन एंड ओनली डिसीजन होगा जो लोक अदालत वाले दिन डिसाइड होगा।
0: ओके, इसके अलावा आप इसके खिलाफ जाकर
1: इसका अपील नहीं
0: कर सकते हैं
1: जी।
0: तो जैसे मान लीजिए, हम बहुत आसान से शब्दों में अगर समझना चाहे कि किसी के गाड़ी का चालान 1,000 रुपए हो गया, हेलमेट उसने नहीं पहना था, एंड वो लोक अदालत में जा रहा है, अब उसके साथ क्या हो सकता है, उसके जो जो चार्जेस हैं क्या वो कम होने वाले हैं, या उसको फायदा क्या मिलता है?
1: फायदा ये है कि क्योंकि देखिए आपके ऑलरेडी जो ये चालान है, जो ये मतलब जो ये फाइन हम लोग पे लगता है
0: जी,
1: कुछ मामलों में फिक्स होता है, कुछ में अप टू का मार्क होता है। जैसे हम फिर हम उस दिन ट्राई करते हैं मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पे उनके चालान को खत्म किया जाए। बैंक रिलेटेड मुकदमे हैं तो मिनिमम से मिनिमम, हमारे पास एक बैंक की पूरी पैनल बैठती है उस दिन, तो वो मिनिमम से मिनिमम मुकदमे उस दिन डिसाइड हो जाते हैं, मिनिमम मतलब फाइन पर। जैसे अगर आपका फाइन है 500 रुपए अप टू 500, तो वी मेक श्योर कि उसको 50-100 रुपए पे
0: फाइन को खत्म किया जाए, और कहीं ना कहीं उसकी समझाइश भी होती होगी कि आइंदा से ऐसा कोई काम ना करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक डायरेक्शन भी दिया जाता है, हेलमेट आपके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, जैसे डीएल कैरी करके चलना सबके लिए जरूरी है। तो ये
0: बिल्कुल सही बात है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हम खुद इसके बारे में अवेयर है कि हमें पुलिस के चालान से नहीं बचना होता है, बल्कि फैमिली के लिए कोई इंतजार कर रहा होता है,
1: बिल्कुल
0: अपने लिए करना होता है कि हम अपने घर के एक ऐसे पर्सन हैं जिनसे हमारा
1: घर चलता है। हेलमेट, देश में हमारे सबसे ज्यादा डेथ एक्सीडेंट से होती है,
0: बिल्कुल,
1: तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग हेलमेट जरूर लगाएं और अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखें।
0: बिल्कुल सही बात है। मैम, आपने लोक अदालत की बात की, जैसे आपने विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया था कि पात्र लोग होते हैं
1: जी।
0: लोक अदालत में क्या कोई भी जा सकता है?
1: जी, जिसके जिनके भी मामले हैं वो लोग आ सकते हैं।
0: जिसके भी मामले
1: जी, जी, जी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक बार और ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसके फायदे क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: फायदे यही है कि आप उस दिन आइए और अपना रिजॉल्व देन एंड देयर, मतलब जस्टिस आपको उसी वक्त देन एंड देयर मिल रहा है ऑन द टेबल, तो आपको ज्यादा भागना नहीं है, आपको बस आपका आप अपने एडवोकेट्स के साथ या खुद भी आकर, आप कचहरी में हमारे बहुत सारे जजेस उपलब्ध हैं, प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी उपलब्ध हैं, बैंक रिलेटेड मामला है, विद्युत रिलेटेड मामले हैं आपके, तो आप जाइए और आप बातचीत करिए और आपका रिजोल्व कर दिया जाएगा मामला।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो भी आपने मामले बताए ये हर एक घर से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: हर कोई बिजली का बिल भर रहा है या चालान हो सकता है, कोई भी इसमें आ सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही कहा। एक चीज मैम, कि ये जो आप प्रचार प्रसार बता रही हैं, तो लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचे? जैसे अभी तो आपने मई के बारे में बता दिया, डेट का अनाउंसमेंट कर दिया, दूसरा ये कि हाँ, हम अपने एफएम से जब भी हमको इसकी जानकारी मिलती है आपके डिपार्टमेंट से, हम लोगों तक जरूर पहुंचाते हैं, और कौन कौन से माध्यम है जिससे लोगों को पता चल जाए कि लोक अदालत कब लगने वाली है?
1: जैसे गोंडा जिला है तो हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं जो हमारी नगर पालिका की जो गार्बेज गाड़ी होती है
0: जी,
1: उसमें सुबह सुबह गाने के साथ साथ वो अनाउंसमेंट भी करे कि 9 मई को एक लोक अदालत होने वाली है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें लोगों को पहले ही जागरूकता इससे बढ़ जाती है। दूसरा एक तरीका है हमारा, जो हम अक्सर करते भी और करने भी वाले हैं
0: जी,
1: एक रैली ऑफ कार्स निकलती है बैंक से और हमारे जुडिशरी से, कचहरी से निकलेंगी, जिसपे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं कि नेशनल लोक अदालत है और आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेके हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो एक रैली ये निकलती है जो कि ये चौराहों पर बड़ी प्रोमिनेंट जगह जो है हमारे जिले की, वहाँ पर जाती है, काफ़ी भीड़ जहाँ होती है वहाँ जाती है। बाकी हम लोग ने क्रिएटिव चीज़ सोची है कि एक नुक्कड़ नाटक करवाएंगे हम लोग, जिसको इनके रीजनल भाषा में कोशिश की जाएगी कि लोक अदालत के बारे में प्रचार प्रसार के लिए एक नुक्कड़ नाटक हम लोग करवाएंगे।
0: बहुत अच्छा ये।
1: तो उस मेक श्योर करेंगे कि वो वीडियो हम अपने पेज पर डाल सके, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर डालें, जिससे नॉलेज और लोगों को बढ़े और लोगों को जागरूकता हो कि ऐसा कुछ वो होने जा रहा है। और बाकी और आपके FM तो है ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारा न्यूज़पेपर में भी अक्सर हम लोग छपवाते रहते हैं,
0: उसमें भी आता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे बैनर्स लग चुके हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक नेशनल लोक अदालत हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं।
0: बिल्कुल, सो मैम बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि ये इसी तरह डिपार्टमेंट का हमारे साथ में जो है कम्युनिकेशन बना रहे, कभी भी लोक अदालत लगती है या ऐसा कुछ भी आता है डिपार्टमेंट की तरफ से जो जनहित में हो, वो हम तक आता रहे और हमारे रेगुलर जो सुनने वाले श्रोता है उन तक ये हम जानकारी पहुंचाते रहे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं आपकी, आप रैली निकलवा रहे हैं या फिर आप नुक्कड़ नाटक का सोच रहे हैं। मुझे लगता है हम कितने भी आगे हो जाए लेकिन हम भारतीयों को नाटक देखने में जो मजा आता है और स्पेशली नुक्कड़ का नाटक, वो नुक्कड़ की चाय वाला टेस्ट आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि लोक अदालत में बहुत सारे ऐसे मामले हमने अपने बहुत करीबियों के सॉल्व होते देखे जिसके लिए वो बहुत परेशान थे, मामला बहुत छोटा सा था एंड बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया था, बट जब वो लोक अदालत में गए तो वो बहुत सेटिस्फाइड हो गया है कि हाँ हमारा मामला जो था जिसको हमने लेकर के बहुत हाइप बना रखी थी मन में वो खत्म हो गई और फाइनली मेरा मामला जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। सो इतना अहम काम करते हैं आप, मतलब मुझे लगता है गोंडा की आबादी जो है वो 25 लाख के आसपास है, उससे ज्यादा ही हो सकती है, तो इतनी बड़ी आबादी को आप कैसे इंसाफ दिलाते, मतलब मुझे लगता है टीम होती होगी, एक बड़ी टीम होती होगी, इसके बारे में बताएं।
1: बहुत बड़ी टीम है हमारी, जैसे कि हमारे बताया मैंने LADCS है, डिफेंस काउंसिल की एक टीम है हमारे पास, पैरालीगल वॉलंटियर्स की 45-43 की टीम है, फिर हमारी मीडिएशन की पूरी टीम है, फिर हमारा खुद का जो स्टाफ होता है वो भी टीम है, और हमारे जिला जज साहब इसमें चेयरपर्सन होते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम पूरा सब कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी टीम है बहुत, और इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि हमारा वो सारे जिनको भी इससे जिनके भी आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व हुए हैं, हमने जिसकी भी मदद की है वो भी हमारी एक टीम का पार्ट बन चुका है, क्योंकि वो भी आगे जाके इस चीज को फैलाते हैं कि नहीं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है, तुम भी जा सकते हो,
0: जा सकते हो।
1: तो ये एक तरह से वायरस की तरह है कि किसी एक को न्याय मिला तो वो तो बताएगा ही, बिल्कुल कि वो जाके सबको बताएगा।
0: बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप उस पेज के बारे में बता दिए, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर हैं, तो जिससे अगर आपके उस पेज को लोग फॉलो करते हैं तो उससे अपडेट उनको मिलते रहे।
1: जी, एक डालसा गोंडा का पेज है, DLSA गोंडा इंस्टाग्राम हैंडल है उसका, प्लीज उसको जाके फॉलो करें। हम लोग जो रोज हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो और आगे आने वाले जो भी काम है स्कीम से, हम लोग उस पे बिल्कुल डालते रहते हैं, बहुत ही एक्टिव पेज है। दूसरा हमारा इंस्टाग्राम का फेसबुक का पेज है DLSA गोंडा, और यूट्यूब पे भी हमने अब एक्टिव शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा अब हर बच्चे के हाथ में फोन है, हर यूथ के हाथ में फोन है, तो फोन के थ्रू ज्यादा अच्छा प्रचार प्रसार किया जा सकता है रादर देन जाकर आप किसी को बताएं। तो इस वजह से हमने कोशिश किया कि सारे सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव रहे, आप सब तक पूरी जनता तक हमारी न्यूज पहुंचे।
0: बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई, और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि डालसा के पेज को जाके फॉलो करें अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पर हैं या फिर अगर आप यूट्यूब पे हैं, क्योंकि आपका भी कोई मामला हो सकता है और इस शो को सुनने के बाद आपका वो मामला रिजॉल्व हो सकता है। मैम अगला सवाल जो है मुझे लगता है काफी अहम है, सो इन सब एक्टिविटीज और जो आपने बताई योजनाएं हैं इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए आखिर किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं अभी फिलहाल आज के सिनेरियो में?
1: आज के सिनेरियो में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आपसे मैंने पहले बताया इतने सारे मीडिएटर्स हैं हमारे पास, इतना सारे LADCS है हमारे पास, तो ये सारे लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी नेशनल लोक अदालत सिर्फ PLVs है हमारे, ये गांव-गांव तक जाके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास बताया जैसे 24/7 वो आकर हमारे चीज़ों को मतलब जान सकता है, समझ सकता है, और अगर उसको लिटिगेशन में ही जाना है तो उसकी भी मदद अवेलेबल है हमारे पास।
0: अच्छा, एक तो प्री लिटिगेशन का भी आपने बताया कि मध्यस्थता केंद्र है, और लिटिगेशन में भी जाना है
1: तो उसके लिए भी हम नॉलेज दे रहे हैं कि अगर आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए लिटिगेशन में भी आपकी मदद की जाएगी।
0: मैम इसमें एडवोकेट्स आप खुद से देते हैं या चूज करने का?
1: LADCS जो मैंने आपको बताया वो डिफेंस काउंसिल्स की एक टीम है हमारे पास, जिसमें चीफ डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल और डिप्टी डिफेंस काउंसिल है, जिसमें कि आप बहुत अच्छे से ब्रिजलाल तिवारी जी को जानते होंगे, जो उसमें बहुत एक्टिव रहते
0: जी,
1: हैं,
0: बहुत अच्छे,
1: बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने हर गांव तक, हर घर तक ये चीज पहुंचाई है, उनका खुद का भी इंस्टाग्राम पेज है, उनका खुद का भी सब कुछ है, वो उस पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो ये लोग मिलकर सारे लोगों तक, इनफैक्ट ये अक्सर जिला कारागार जाके विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बेल दिलाना हो, PB पे छोड़ना हो, ये सब करते हैं, तो अगर कोई भी सुन रहा हो इस वक्त जिसके कोई परिवार जान वहां पर है जिला कारागार में, जिसको मदद की जरूरत है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बात आपने कही मैम। तो ये सारी जानकारी जो है, देखिए ये ऐसा नहीं कि किसी एक खास वर्ग के लिए है, संप्रदाय के लिए, समुदाय के लिए, ये हर शख्स के लिए है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो मान लीजिए इस वक्त कोई सुन रहा है और आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या जरिया ऐसा हो सकता है?
1: जैसे मैंने बताया ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको कचहरी में आपको आना पड़ेगा, हमारी DLSA की एक बिल्डिंग है उसमें आप कॉन्टेक्ट कर, हमारा पूरा स्टाफ वहाँ अवेलेबल है, आपको मदद करेगा, आपकी सुनवाई होगी, और ऑफलाइन हमारे पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स है और आपके पास हेल्पलाइन नंबर है 15100।
0: 15100 पे जा सकते हैं या फिर आप गोंडा में जो कचहरी है अपनी उस परिसर में जा सकते हैं और DLSA के ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए जितने भी लाभ हैं, पात्र अगर आप हैं तो आपको जरूर दिलाया जाएगा। और साथ ही साथ लोक अदालत से संबंधित भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी या कोई भी इस तरह की प्रक्रिया में जाने के लिए कोई जानकारी चाहिए होगी तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिलाया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न हर इंसान का होता है कि भाई पैसे ज्यादा लगेंगे और टाइम ज्यादा लगेगा, हम कैसे करें। बट आपने आज जो विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे भी इतना नहीं जानकारी थी और मुझे लगता है कि मुझे जब होते हुए इतनी जानकारी प्रॉपर इतनी ईजी वे में नहीं समझ में आई थी। आज जो भी श्रोता इस वक्त हमको सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये जानकारी मिल गई होगी और मैं ये कहता हूँ कि भाई ये बांटने वाला काम है। आज इस बात को सुनने के बाद आप बाकी लोगों तक पहुंचाएं, हो सकता है कि आपका अगला घर वाला, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त इसके लिए पात्र हो और उनको इंसाफ मिल जाए। मैं बहुत अच्छे से आपने बातचीत की और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बहुत डेडिकेशन से आप और आपकी पूरी टीम, इवन ये पूरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से लगा हुआ है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। और मुझे लगता है गोंडा में अगर इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे वॉलंटियर्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं, तो डेफिनेटली हम तस्वीर बदल रहे हैं अपने गोंडा की। और मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप चूंकि खुद इसकी एक सदस्य है तो आप हमारे आम जन से क्या अपील करना चाहेंगी, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं हमसे, ये आप प्लीज अपनी अपील में जरूर कहिए।

0: दिन, तो उसके बाद होगा एक तारीख दी जाएगी जिस पे आपको तारीख पर सॉल्व जरूर होगा। तो कोशिश करिए आप लोग कि जितने से जितने श्रोता हैं जिन्होंने नहीं सुना है उन तक जाकर ये बात बताइए। हमारा जितना प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हैं करिए और हमारे तक आइए अपनी प्रॉब्लम लेके। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप हर तरह से हेल्प करने को तैयार हैं। सो दोस्तों, आपने तो सुन लिया और हो सकता है आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं, बस आप उनको ऑफिस तक पहुंचा दिए, हमारे वॉलंटियर्स तक पहुंचा दिए, सारी जानकारी विस्तार से वो भी उनको जरूर बता देंगे। फिलहाल आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमको जरूर बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स पर लिख करके हमको दे दिए, हम जरूर मैम तक और डिपार्टमेंट तक आपकी बात पहुंचा देंगे। फिलहाल बने रहिए और सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। मैम एक बार वापस से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू, नहीं मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका,
1: बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद थी मिसेज अंकिता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा। कैसा लगा शो जरूर बताइएगा। एंजॉय करते रहिए अपना गोंडा एफएम।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए,
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
9: गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: गोंडा वालों तैयार हो जाओ आज की शाम के लिए। यस यस यस गोंडा मैसेज मसाला वाली शाम के लिए, बिकॉज आज की शाम है खास क्योंकि आरजे बीना के साथ होंगे डॉक्टर लव आपके आज।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395-84-8840-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 96 96 76 40 06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है मेरे गोंडा वाले, मेरे प्यारे लिसनर्स, पूरे देश के वो लोग जो लोग अपने अपने टाइम के अनुसार अपनी अपनी शाम को एंजॉय करने आ जाते हैं अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM पर अपनी आरजबीना के साथ 6 बजते। तो जैसा कि आप सभी को पता है, शाम का सलाम देते हुए मैंने आप लोग को बताया कि आज की शाम सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि यहाँ शहर भर के हर उस दिलदार की है जिसका दिल तार तार कभी तो हुआ है और नहीं भी हुआ है, बल्कि होने की कगार पे पहुँच गया है, या कोई ऐसी भी सिचुएशन में है कि उसकी कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही है। मतलब इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी ज़िंदगी में बजेगा बैंड और बाजा। लेकिन क्या करें यार, बैंड बाजा सोचने से बच जाता तो दुनिया में हर इंसान आज सेटल होता कहीं ना कहीं। पर चलिए कोई बात नहीं, इस सेटलमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों से बातें करते हुए ये जानेंगे कि यार क्या है खास आज। तो फिलहाल दोस्तों, बात होगी मोहब्बतों की और आज आप सभी को मैं ले आई हूँ मोहब्बत के बाजार में, और आपका दिल बिल्कुल भी मुफ्त का मैं बिकने नहीं दूंगी। और अगर आपका लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका कोई मुफ्त में दिल ले जा रहा है और आपका बिल काट रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप खतरे में है। मतलब कि अगर कोई आपका दिल तोड़ रहा है तो घबराइए मत, हमारे स्टूडियो में आपकी जो कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान मिलने को है, क्योंकि डॉक्टर लव तशरीफ लाने को है। तो प्रेम के परिधान पहने हुए इश्क के इंजीनियर बन के हर दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर लव आने को है। सो फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, प्रेम एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज क्रोसीन से नहीं है, जिसका इलाज है लवोसीन से। यानी कि लवोसीन, जिसमें ऐसा सीन बन जाए कि आपकी लव लाइफ झिंगा लाला हो जाए। तो लाइफ को झिंगा लाला बनाने के लिए एयरटेल ने लगाना है आपको, अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना है 89.6 FM। तो अगर लव लाइफ में चाहते हैं आपकी लाइफ हो जाए झिंगा लाला, तो फटाफट से लगा डालिए 89.6 FM अपने मोबाइल में। तो आगे बात करते हुए मैं बता दूंगी कि पहले तो देखिए, बहुत सारे लोगों को आदत होती है मुफ्त का दिल देने की, लेकिन मैं तो कहूँगी कि ना दीजिए। लेकिन ये गाना सुन के तो लगता है कि दिल बहुत ज़्यादा मुफ्त के मिलते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हमें कोई देता होता नहीं है, बल्कि हमारा दिल लूट के लोग ले जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गाना और समझते हैं कि कौन है जो दिल मुफ्त का बांट रहा है। सो दिल के मरीजों, आपका समय हो चुका है लाइव आने का, और जिसको भी समस्या का समाधान चाहिए ना सिर्फ चैट रूम में, बल्कि आप कॉल पे अपने फेवरेट नंबर को डायल कर सकते हैं 6393311429, जो ना सिर्फ आपके दिल का समाधान लेके आएगा बल्कि आपको आपके डॉक्टर से बात करने का मौका भी देगा। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आज की शाम के लिए सूटेड। और ये जो गाना है ना, ये टोटली मुझे लगता है कि बस सोची समझी साजिश है, ऐसा होता नहीं है लाइफ में रियली।

राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। लेकिन जब बात लव की होती है, हाँ भले दुनिया का काम ना हो, लेकिन हाँ किसी एक का काम तो ज़रूर पड़ता है जो आपकी लव स्टोरी को पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो भाई जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ सेट होने के बावजूद भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक लिसनर है राहुल। राहुल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो नोएडा से हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो उनसे गुस्सा है क्योंकि ये उनका बर्थडे भूल गए। यानी कि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गए और ऐसे में उनके साथ जैसे कहते हैं ना ट्रेजेडी हो गई हो। तो फिलहाल जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक विस्फोट हुआ था, वो वाला हाल है इनकी लाइफ में। फ़ोन करते ही तुरंत 400-500 बातें सुनने को मिल रही है, हर जगह से ब्लॉक हो चुके हैं और ऐसे में डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए आपने मूवी देखी होगी धूम 3, जिसमें कैटरीना कैफ कमली बन के डांस करती हैं। फिलहाल यहाँ इनकी जो हमारी प्रेमिका है राहुल जी की, वो कमली बन के एकदम ट्रिगर हो चुकी हैं और पूरे टाइम कंप्लेन कर रही हैं और गुस्सा है। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और फिर बात करते हैं कि आखिर होना क्या चाहिए उनके साथ।

0: ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: सो आपके डॉक्टर लव आपके साथ मौजूद हैं और सबसे पहला सवाल तो है जो उसको तो हम डॉक्टर लव से बता ही चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर लव का हालचाल पूछ लें। भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं और न्योता होता कर करके, मतलब मुझे लग रहा है इन्होंने इतनी पूड़ियाँ खा ली हैं कि एकदम से हेल्थ इनकी एकदम इम्प्रोवाइज हो गई। क्या बात है डॉक्टर लव,
1: नहीं एकदम जिसकी कही है उसकी कसम खा लें, अभी तक तो हमने को पूड़ी नहीं खाई है।
0: पूड़ी नहीं खाई आपने?
1: पूड़ी नहीं खाई।
0: लगन तो पूड़ी के अलावा कुछ और खा लिया होगा?
1: नहीं दाल चावल खाया, मतलब पूड़ी वगैरह खाने में विश्वास ज्यादा कम है।
0: तो बाकी नाश्ते से ही आपका पेट भर जाता होगा?
1: हाँ क्योंकि
0: आजकल ये ट्रेंड है, लोग जाते हैं नाश्ता ही खा लेते
1: हैं। नहीं पूड़ी खाने का मेरा दूसरा रीजन है कि न खाने का,
0: मतलब क्या,
1: क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आधी होने पर भी पूरी रहती है, तो मैं कहता हूँ बताओ इसको खाने का क्या फायदा।
0: हाँ,
1: वो आधी रहने पर, वो आधी पूरी आपने खाई, आप क्या
0: है, है तो भाई ये तो बड़ी दुखद बात है, सोचने वाली बात है,
1: पूरी
0: चिंतनीय बात है,
1: मतलब इस पर शोध करना चाहिए और जो शोध करे उसे
0: आधी पूरी बोल सकते हैं उसको।
1: हाँ मतलब लेकिन पूरी बोलेंगे ना, मतलब उसे पूरी शब्द आ रहा है,
0: अधूरी बोले
1: अधूरी, अब सोचिए
0: आधी रह जाए तो उसको अधूरी।
1: हाँ अधूरी,
0: अभी हमारी अधूरी बची है, खा लें तब
1: और भाई, मतलब पूरी हम खाए।
0: हम लोग हर बार एक रिसर्च कर डालते हैं शब्दों पे, विचारों पे, फिलहाल तो हमारे मरीजों पे हम लोग रिसर्च कर डाले। फिलहाल हमारे साथ चैट रूम में तो कोई नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास एक राहुल जी का कॉल आया था। राहुल जी को समस्या ये है, बड़ी तगड़ी समस्या है, इनकी प्रेमिका का जन्मदिन था और ये विश करना भूल गए। तो इनकी प्रेमिका अभी मतलब पूरे ऑन, मतलब कह सकते हैं कि ट्रिगर मोड में है, मिल जाए तो सच में इनके ऊपर कुछ भी, कोई भी एक्ट लगा सकती हैं, कोई भी तरह का मुकदमा कर सकती हैं, इतनी वो नाराज है। ऐसे में क्या करें,
1: ऐसे में क्या करें, मतलब बर्थडे विश करना भूल गए,
0: मतलब अगर समझ को समझा जाए तो उन्होंने पाप कर दिया है।
1: ये पाप नहीं, गुनाह अजीम है, मतलब
0: जी बिल्कुल सही,
1: इतना बड़ा पाप कर दिया इन्होंने और इस पाप की सजा इनको मिलनी चाहिए। और इनको अपनी वाइफ से बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं मानता क्योंकि तुम पैदा हुई हो, मैं तुम्हारा बर्थडे नवरात्र में मनाऊंगा, क्योंकि
0: मुझे ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूलना, गर्लफ्रेंड भूल जाती है तो बात नॉर्मल है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूलना कहीं ना कहीं राहुल जी ने कुल्हाड़ी पैर पे नहीं, पैर को ले जाके या कह सकते हैं सर को ले जाके कुल्हाड़ी पे मार दिया है। अभी इस कुल्हाड़ी को हम वापस से गुलाब कैसे बनाए ये बताइए।
1: ये कुछ नहीं, उसको ये कहना है कि मैं तुमको देवी मानता हूँ, तुझमें रब दिखता है यादा, मैं क्या करूँ और मैं ये मान नहीं।
0: क्या लगता है राहुल जी ने ये सब चेपा नहीं होगा?
1: चेपा होगा,
0: जेमिनी से मांग मांग के, चैट जीपीटी से मांग मांग के, पता नहीं कितनी शायरी भेज चुके होंगे, माफीनामा लिख चुके होंगे। अभी इनको क्या करना चाहिए?
1: अभी इनको कुछ नहीं करना चाहिए, अभी इनको ये बताना चाहिए जो मेरा सिद्धांत है
0: जी,
1: कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम इस दिन पैदा हुई हो।
0: क्यों?
1: तुमने अवतार लिया है, तुम साक्षात देवी हो।
0: और अरे पिछले 3 साल के रिलेशनशिप में 30 बार जन्मदिन मना चुके हैं और बता रहे हैं कि अब स्वयंभू बता दें। अब ये वो इतना फ्लेक्सिबल लॉ नहीं है।
1: नहीं जैसे हम तो यही करते हैं, हम तो ये मानते हैं कि तुम पैदा नहीं हुई हो, तुमने अवतार लिया है, और जो अवतार
0: अब इनको जल्द से जल्द बचने का एक उपाय बताइए, नहीं ये किसी नदी नाले में पड़े मिलेंगे सुबह।
1: नहीं तो बस इनको यही करना है कि ये अपनी जो है वो
0: नीला ड्रम वाला भी केस आ चुका है सामने।
1: हाँ तो मतलब ये अपनी पत्नी का जो है वो नंबर हमको दे दे, गर्लफ्रेंड का, और मामला हम सेटल कर देंगे, जिम्मेदारी हमारी।
0: और ये नोएडा में रहते हैं, बोले कि हमारे यहाँ इधर एक ठो कांड हुआ था गाजियाबाद में, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को जाके फ्लैट में ही पेट्रोल डाल के जला दिया था। हमको बहुत डर लग रहा है, हम बर्थडे भूले हैं। मतलब डर इस बात का नहीं है कि वो नाराज होके छोड़ के चली गई, डर इस बात का है कि कहीं मैं मारा ना जाऊं।
1: अच्छा जान पर बनाई है।
0: हाँ,
1: ये मामला है भैया, तो भैया तुरंत आप वीजा पासपोर्ट बनवाइए और निकल जाइए कहीं बाहर, क्योंकि अभी तो नेपाल में आप जा सकते हैं।
0: हम तो कहते हैं शादी के लिए जाके अपने मम्मी पापा को इनके घर ले जाए और शादी के लिए बात कर ले, इससे थोड़ा खुश हो सकती हैं और कह देंगे कि सरप्राइज हमारे लिए इतना बड़ा सा।
1: अच्छा मतलब अभी परिणय की बात चली नहीं है क्या?
0: नहीं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, ओनली प्रेमिका चल रही है।
1: मतलब अभी प्रेमिका चल रही है?
0: हाँ।
1: अच्छा मतलब
0: करंटली जो मतलब स्टेटस है इनका रिलेशनशिप, प्रेमी प्रेमिका का है।
1: अच्छा मतलब बात अभी विवाह तक नहीं,
0: प्रेमी धन प्रेमिका।
1: अच्छा तो मतलब अभी बात विवाह तक नहीं पहुंची।
0: जी जी बिल्कुल भी नहीं पहुंची है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ यही सरप्राइज दे दें कि मैंने इसीलिए तुमको विश नहीं किया था, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ा सरप्राइज देना चाहता था।
1: अच्छा,
0: कुछ ना हो तो आर्टिफिशियल माँ बाप बना के ले जाइए।
1: हाँ,
0: नहीं तो असली के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो तो नीला ड्रम वाला मैटर छोड़ ही दे, लेकिन हाँ मम्मी पापा इधर तुमको शौक दे।
1: एक पिक्चर हम देख रहे थे बोल बच्चन, तो उसमें एक डायलॉग आया, तो उसमें जो है वो पहुंचता है हीरो अभिषेक बच्चन, तो पहुंचता है कि हम आपको माँ बनाने आए हैं। नहीं समझ पाई बात। तो वो एक एक्टर थी, तो उन्होंने कहा मतलब क्या बोल रहे हो, कहीं माँ बनाने आए हैं मतलब आपको माँ का किरदार करना है। तो जिससे भी वे बोले कि हम आपको माँ का किरदार करना है, कहीं ये ना बोल दे राहुल जी कि हम आपको माँ बनाने आए, नहीं तो उल्टा भी पड़ सकता है मामला। हाँ, तो ये आप किसी अगर उससे अदाकारी भी करवा रहे हैं तो उससे बोलिएगा कि हम आपको पिता बनाने आए हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, और मुझे लगता है इस कारमा से आप गुजरे हुए हैं, तभी कहते हैं ना कि जो दिल पे गुजरती है वो हम बताते हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर लव इस समस्या में एक बार पड़ चुके हैं, तो
1: अरे एक बार की कई बार, हम
0: कई बार पड़ चुके हैं। तो इसी के साथ चलिए हम सुनते हैं ये ब्रेक, और इस ब्रेक के दौरान अब राहुल का तो सोल्यूशन हमने निकाल दिया है, बाकी दिलदारों का सोल्यूशन देने के लिए मौजूद है डॉक्टर लव। डायल करती रही अपना वाला नंबर 6393-3164-29, और तब तक के लिए हम सुनते हैं आपकी प्यारी सबसे खास माधुरी दीक्षित और रणबीर वाला गाना, यानी कि ये है जवानी दीवानी का घाघरा।
2: नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
3: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
4: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
3: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: डिलीशियस
5: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: सजदे वजदे करने से अब लोग कम मिलते हैं, आजकल तो लोग शॉपिंग वगैरह कराने से ज्यादा मिलते हैं, क्यों डॉक्टर लव?
1: हाँ, शॉपिंग वगैरह कराने से और जो है वो फिल्टर्ड चेहरे से लव हो रहा है।
0: हाँ जी, बात तो सही बताई आपने। चेहरा जितना ज्यादा फिल्टर हो और जितनी ज्यादा आप क्या कहते हैं ना GPT वाली बातें कर पाए। फिलहाल गुड इवनिंग अनिल शास्त्री जी, गुड इवनिंग नागेश्वर, गुड इवनिंग बंटी मंडी जी, हमारे लिसनर हैं, काफ़ी दूर से सुनते हैं ऐसे ही, नागेश्वर जी भी मध्य प्रदेश से सुनते हैं, अनिल जी हमें गोरखपुर से सुन रहे हैं और बहुत सारे लिसनर, सबका स्वागत है भाई। जिसको जो जो समस्या है राहुल जी की तरह अपनी अपनी समस्या बता सकते हैं। तो डॉक्टर लव, और आप लोग, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है और कोई कहता है बहुत फूल पसंद होते हैं, तो कोई अगर चॉकलेट और फूल दे के किसी लड़की को प्रपोज करता है तो उसकी तभी दाल नहीं गलती है, तो क्या चॉकलेट और फूलों की गड़बड़ी है या फिर कुछ और?
1: नहीं, एक जो है वो हमने शोध किया, हमने शोध ये किया कि इस समय युवाओं में जो है वो शुगर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो हमने उनसे कहा देखो भाई शुगर बढ़ रहा है अगर तो इसके जिम्मेदार तुम लोग हो, जानू स्वीटी हनी ये सब कहकर मत बुलाओ, अब कहकर बुलाओ करेला मिर्चा भिंडी सलजम। देखिए नाम के साथ जो है वो होता है कि नाम अगर आपने स्वीटी स्वीटी रख दिया अब वो खुद ही कुछ दिन बाद स्वीट होती चली जा रही है।
0: अरे वाह वाह,
1: तो इसलिए आप जो है वो अपनी प्रेमिका को,
0: और भाई जिसकी प्रेमिका ज्यादा ना मान रही हो, आपसे नाराज हो, तो एक और थेरेपी जो आज आपने सर बताई थी हमारे मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं क्लिनिक पर, एक लिसनर भी थे और एक आपके पेशेंट है पुराने, उनकी वाइफ बार बार उनसे नाराज हो जाती है, तो उन्होंने लौकी थेरेपी अपनाई। मतलब लौकी एक ऐसी सब्जी मानी जाती है जो बहुत ही दुख में खाता है इंसान, बीमारी में। तो उन्होंने अपने मतलब दुख को व्यक्त करते हुए घर में एक हफ्ते तक सिर्फ लौकी बनाई और खाई, और पत्नी से एकदम मतलब विमुख होके बस लौकी खा रहे थे और आंसू बहा रहे थे। ये देख के उनकी पत्नी का दिल पिघल गया और उन्होंने तुरंत मटर पनीर बना के ये इजहार किया कि मैं तुमसे अब नाराज नहीं हूँ।
1: हाँ, ये मतलब अच्छा तरीका।
0: तो हम चाहते हैं ऐसे कुछ नुस्खे डॉक्टर लव आप बता दीजिए जिससे सबका कल्याण हो, जनहित में जारी हो जाए।
1: जनित में जारी करेंगे उसको बिल्कुल।
0: और आजकल भाई शादियां भी बहुत हो रही हैं और लड़के जाते हैं और वहीं सेटिंग करने लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सेटिंग थोड़ी टेम्परेरी टाइप की रहती है, इसके लिए भी थोड़े सुझाव दे दें कि शादियों में जाके अपना रिश्ता तुरंत ना पक्का करें।
1: हाँ, मतलब वो है ना आज मेरे यार की शादी है,
0: वहीं जाके अपनी शादी पक्की कर लेते हैं।
1: हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। तो भाई आपकी शादी हो सकती है लेकिन ये संसार की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं के मालिक हैं। जी हाँ, और गीत चलता है कि आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। भाई ठीक है, आप अपनी शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संसार की शादी कराने के चक्कर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा मामला जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का है। तो मुझे लगता है कि भाई, और इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुखी होते हैं, एक विवाहित होते हैं। तो अब जिनका हो चुका है भाई विवाह, उनके साथ तो हमारी पूरी सद्भावना है, पूरी सिंपैथी है, और अगर किसी की नहीं हुई है भाई तो फिर उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ने उनको अभी दुख से बचा रखा है, और जितने दिन आप दुख से बच पाइए उतने दिन दुख से बचिए, और शादी में जाइए लेकिन ये बताइए कि हाँ भाई यार की शादी है वो तो ठीक है, लेकिन संसार की शादी वाला सीन ज़रा मत रखिए। तो क्योंकि संसार की शादी में फिर होता है संसार में आप भी आ जाते हैं, तो भाई बगैर किसी देरी किए फिर जी अब आपको ले चलते हैं, हमको लगता है मेरे यार की शादी है, संसार की शादी कैसे हो जाती है तो हमको नहीं पता, लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं ये पैसा गीत शादी के ऊपर। माहौल भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और सीन भी है। सुनते रहिए रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन।

0: किसी किसी को डॉक्टर लव ये गाना लगता है जैसे लगता है कि सुनते ही उनके कलेजे पे किसी ने चला दी हो गोलियां, क्योंकि शादियों में उनके ये गाना बजा था और कहते हैं ये गाना सबसे मनहूस गाना है और अपनी शादी को कोसने लगते हैं। तो क्या गाना, मुझे तो सही लगता है,
1: एकदम सही लगता है। इस गाने को गाने के लिए रिकॉर्ड है कि 150 बार उन्होंने गाया, और जैसे ही वो पंक्तियाँ आती थी, हाँ। मैं तेरी बाहों के झूले में फली
2: बाबुल,
1: वो गाने को वहीं रोक देते थे। और समीर रंजन जी ने इस गीत को लिखा तो उन्होंने कहा कि चलो इस गाने को बाद में पूरा करते हैं। मैं कहने नहीं, पूरा होगा तो आज ही होगा, नहीं तो नहीं होगा।
0: चलिए अब हमारे कॉलर का कॉल आ गया, चलिए आवाज सुनते हैं। हेलो, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
3: हेलो दीदी, आप आए छो, मेरा नाम है विजय पाल यादव।
0: अरे विजय जी, कैसे हैं? बहुत खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाल कैसा है आपका ये बताइए।
3: हाल बहुत अच्छा है।
0: बेहाल तो बिल्कुल भी नहीं है ना।
1: बेहाल में कोई पिक्चर भी लगी हुई है?
0: हाल बेहाल तो बिल्कुल भी नहीं है ना।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
3: और कैसे हैं आप?
1: बस आपका आशीर्वाद है और हमारे मरीजों की कृपा है।
3: अरे इस समय बरसात में बाल गिर रहे हैं सर के, इसके लिए कोई इलाज बताओ।
1: हाँ, ये आप जो है बरसात में जब सही है, जब आप पानी वगैरह बाल पर गिरता है तो कुछ ठंडा ठंडा लगता है क्या?
3: हाँ ठंडा लगता है।
1: बस आपको जो है वो वो तसला होगा घर में।
3: हाँ तसला है।
1: तसला है, तसले में आप कोयला जलाइए और जब आप बाहर निकलिए तो उस तसले को अपने सर पर रखिए। बारिश का पानी वाष्पीकृत होकर नीचे आएगा और आपके बाल जम जाएंगे अगर कम होंगे तो।
3: अच्छा,
1: एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है।
3: कोयला की आग जलाएं या कंडी की आग जलाएं?
1: आप जो है कोयला जलाएं, क्योंकि कोयला की आग जरा देर तक रहती है।
3: हाँ कोयला की आग देर तक रहेगी।
1: हाँ, गर्मी में जरूर कोयले का प्रयोग करें ताकि आपको गर्मी न लगे।
0: क्या अच्छा बात है, क्या बात, सुझाव दिया आपने, मतलब
1: बहुत, मतलब गर्मी में जो है वो ब्लोवर चलाना, हीटर चलाना, आग सेकना, ये सब बहुत जरूरी बात।
0: मुझे लगता है विजय जी एकदम जुल्फिकार हो जाएंगे।
1: हाँ, आपका नाम जुल्फिकार भुट्टो हो जाएगा।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो एकदम आप कोयला खरीद लाइए और जलाना शुरू कर दीजिए।
0: और जब जुल्फे बढ़ जाएं तो थोड़ा इधर उधर सेल भी करना शुरू कर दीजिए, जुल्फों का बढ़िया व्यापार चल रहा है।
1: जुल्फों का व्यापार चल जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो आप दोबारा शादी कर पाएंगे।
0: क्या बात,
1: लोग आपको देखकर गाना गाएंगे।
0: अब तो जान लगा के जान लगाई जाएगी इस काम में।
1: या तो दिलीप कुमार जी पर गाना फिल्माया गया था, मुड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये उन पर। और दूसरा है, दूसरे व्यक्ति धरती के आप होंगे हसीना
0: जिस पर
1: आपको
0: ये गाना।
1: हाँ, उड़े जब जब जुल्फे।
0: और मैं तो कहती हूँ, मैं तो खुद सीधे सीधे तौर पे इनका इनके लिए गाना लाइव बजाया करूँगी।
1: हाँ
3: तो डॉक्टर साहब
1: जी,
3: यदि यही गाना सुना दे तो बहुत आनंद आ जाएगा।
1: कौन सा?
3: उड़े जब जब जुल्फे तेरी।
0: तो जैसा भी आपकी समस्या है, मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है।
1: और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, मतलब ये आपको सुना दिया जाए।
3: हाँ, यही गाना सुनवा दिया जाए।
0: हाँ, क्या बात, क्या है बात? आपकी जुल्फे ऐसे उड़ती रहें और जुल्फे बढ़ती रहें, क्या बात।
1: और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे नजर फिसले।
0: तो नजरे फिसलेंगी और जुल्फे बढ़ेंगी, और भगवान ने चाहा तो जुल्फे बिकेंगी भी।
1: बिल्कुल बिकेंगी।
0: तो चलिए अगला गाना हम लोग सुन लेते हैं हमारी जुल्फों पे ही। और अगर आपके साथ भी कोई मतलब दिक्कत है तो उस
1: गाना वही सुना जाए भाई, उड़े जब जब जुल्फे तेरी।
0: तो बिल्कुल आपको मतलब
1: नया
0: आपको
1: दौर,
0: नया दौर का पुराना गाना, चलिए सुनते हैं आप लोग के साथ, लाते हैं वही जमाना।

0: क्यों ना एक प्रैंक कॉल हो जाए।
1: हाँ ये बहुत आवश्यक।
0: सुना है एक मीडिया वाली मैडम है।
1: हाँ?
0: वो प्रेमियों की बड़ी मदद करती हैं।
1: हाँ,
0: प्रेमियों
1: हाँ।
0: की और मतलब दिल जलों की,
1: पतियों की भी। हाँ।
0: हम चाहते हैं कि उन दिल जलों का जो काम है वो हम लोग इन पर छोड़ दें।
1: जी छोड़।
0: और ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता कोई काम डॉक्टर। हाँ, लव
1: बिल्कुल।
0: हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि इनको टेस्ट करना चाहिए।
1: हाँ, टेस्ट करना चाहिए।
0: और टेस्ट करने के लिए हम तुरंत उनको कॉल करके जरा एक सिचुएशन देते हैं।
1: हाँ?
0: देखते हैं कि वो काम कर पाती हैं कि नहीं।
1: नहीं कर पाती हैं।
0: हाँ जे बात।
1: जी हाँ।
0: तो चलिए हम आगे बात करेंगे और इसी के साथ हमारी मीडिया पर्सनैलिटी वाली यानी कि हमारी मैडम जी से बात करते हैं। देखते हैं इनका नाम क्या है।
1: इनका नाम है ललिता।
0: ओहो ललिता जी,
1: जी।
0: तो चलिए देखते हैं ललिता जी कैसे पैसे पे काम करती हैं या फिर फ्री में भी एडवाइस देती हैं।
1: हाँ।
0: सबसे बड़ी बात तो यही है कि मीडिया वाले सुनने में आता है कि मदद नहीं करते हैं, ये है वो है, लेकिन आज पता चलेगा कि ये लोग मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। कॉल करा जाए, बात किया जाए।
1: जी बिल्कुल बात कीजिए।
0: तो चलिए हम ऑन एयर चलते हैं एक यात्रा पे और वो यात्रा है सच और झूठ की। तो डॉक्टर लव चलिए देखते हैं।
2: हेलो
0: हेलो
2: जी।
0: गुड इवनिंग मैडम जी। हम जरा एको मतलब इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सुने हैं कि आप मीडिया से हैं और आप लोगों की बड़ी मदद करती हैं और हमारे भाई साहब हैं उनको थोड़ी समस्या है और समस्या ये है कि उनके पत्नी जो है उनको बहुत प्रताड़ित करके रखी हुई है। कभी
2: भाई पत्नी प्रताड़ित करी
1: नहीं, पत्नी प्रताड़ित की बात नहीं है मैम।
0: अरे नमस्कार तो करिए, फीस भी नहीं देनी है। और
1: सबसे पहले तो आपको नमस्ते।
0: थोड़ा हम लोग गरीब परिवार से भी। हाँ। है मैडम जी तो हम चाहते हैं कि हमारा काम
1: में हमारी पत्नी ने हमको जो है वो बेलन से मार दिया।
2: बड़ी भारी समस्या है सर, आपकी पत्नी ने आपको बेलन से मार दिया।
1: बेलन से मारा और जब हम रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वालों ने कहा सबूत लाओ। अब जब वो सबूत लेने घर पे पहुँचे तो बेलन वो धुल चुकी थी और उनके फिंगरप्रिंट्स बेलन पे उपलब्ध नहीं थे। मेरी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है। आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, बताइए हमारे साथ क्या किया जाए, हम क्या करें।
2: सर आपको बेलन से मारा गया इस बात का दुख तो हमें बड़ा है, लेकिन बेलन से मारा क्यों गया आपका, ऐसा क्या कर दिया आपने सर बेलन से मारा गया आपको।
1: उन्होंने कहा दूध उबाल रही थी तो चली गई, कहीं कि दूध उबलते उबलेगा तो देखते रहिएगा, तो वो दूध उबलता रहा और हम देखते रहे। वो दूध उबलते
2: नहीं बंद किए।
1: हाँ उन्होंने कहा ही नहीं था, जैसे जितना वो कहती हैं उतना ही हम करते हैं। उन्होंने कहा दूध उबल रहा है देखिएगा, अब वो दूध उबल रहा था भाई, वो कह के जाती कि दूध उबलने लगेगा तो गैस बंद कर दीजिएगा। हम बहुत आज्ञाकारी पति हैं, हम अपनी पत्नी के खिलाफ एक चीज काम नहीं करते। वो जब कहती है खाइए तो खाते हैं, जब उन्होंने कहा कि दूध उबलेगा देखते रहिएगा, हम देखते रह गए।
0: मैडम जी हमारा भाई बहुत सीधा है, वो धूप में खड़ा कर देती हैं तो ये खड़ा रहेगा, वहाँ बैठ नहीं सकता है। इतना आज्ञाकारी पति आपको आपके जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। आपके पति भी अगर होंगे तो वो नहीं इतने आज्ञाकारी होंगे जितने आज्ञाकारी दुनिया का इकलौता आज्ञाकारी पति है। इनका नाम गिनीज बुक में हम लिखवाने वाले हैं, थोड़ा सहयोग।
2: हाँ, मैं भी सोच रही हूँ ऐसा पति भाई तो नसीब वालों को मिलता है। अगर पत्नी ने कहा है कि खड़े रहिए तो खड़े रहना है। अब पत्नी की आज्ञा माने कि दूध उबल रहा है देखना है तो देखते रह गए, बेलन से मारा है। लेकिन एक बात है सर, सबूत तो मिल चुका है
1: जी,
2: पुलिस FIR दर्ज करेगी नहीं।
1: नहीं करेगी
2: तो इसमें हमको एक ही रास्ता नजर आ रहा है, कि आप अपने घर पे जाइए, अपनी पत्नी के चरण स्पर्श करिए और उनसे कहिए देवी आप धन्य हैं क्योंकि आपने बेलन से ही मारा है। अरे अच्छी बात है कि इस नीले ड्रम के जमाने में उन्होंने ईंटा से नहीं मार दिया, पत्थर से नहीं मारा आपको, पत्नी आपकी बहुत अच्छी है। फिर
1: अच्छा मतलब हम बेलन से माल खाते रहे उनकी तारीफ करते रहे।
0: अरे अगर तारीफ चाहते हैं तो आपकी बात में दम है मैडम जी।
1: मतलब
2: बात में दम है ना,
1: क्या ये कृत्य आप भी अपने घर पे करती हैं?
2: अरे नहीं सर, अभी हम ये अविवाहित हैं।
1: अविवाहित हैं तो मतलब आप विवाहित हो जाएंगी तो आप भी बेलन से मारेंगी?
0: वो डिपेंड करता है, आप अपनी समस्या पूछ रहे हैं।
1: नहीं हम जैसे उन्होंने बताया कि चरण स्पर्श,
0: ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि डरम में पैक हो रहे हैं लड़के, ऐसा ना कि आपको भी पैक करके कहीं पार्सल कर दिया जाए।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, धर्म में पैक हो रहे हैं लेकिन इसके पहले जो है वो कई सारी।
0: पर मैडम जी एक बात तो ये है कि मतलब घर के कई औजारों से मार खा चुके हैं।
2: हाँ अरे सर बताइए अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं?
1: अरे
2: तो ये बताइए,
1: जमाने के देखे हैं रंग, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इतना वाला
2: वाह वाह
1: मुझे
2: इतना
1: सांस
2: वाला
1: लेने,
2: प्रेम है।
1: मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो।
0: नहीं नहीं
2: वाह वाह वाह वाह,
0: गाना था सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए।
1: हाँ।
0: तो ये कभी कभी कोई कोई दिन बीत जाता है सांस ही
1: नहीं लेते।
2: ओ भाई तो बहुत बड़ी समस्या है।
1: हाँ।
2: अच्छा सर ये बताइए आपकी पत्नी बड़ी सुंदर है क्या?
1: हाँ, पत्नी तो हमारी एकदम करोड़ों में एक है।
0: लल्लन का
2: अरे सर इतना प्रताड़ित करते थे, काम करिए बदल न दीजिए अपनी पत्नी को।
0: अरे तो तीसरी है।
2: ओ भाई अच्छा तीसरी है ये?
0: ना तीसवीं, थर्टी
1: मैंने तीस किया,
2: तीस विवाह कर चुके हैं आप
0: जी, तो
2: अरे सर आप कहाँ हैं, हम आपको पहले ढूंढेंगे।
1: अच्छा,
2: आपको भाई अवार्ड तो मिलना चाहिए, आप बहुत महान पुरुष हैं सर।
1: इकतीसवां का कोई इरादा नहीं है मेरा।
2: अरे सर अब नहीं सर, तीस कर ही लिए हैं तो एक और बढ़ा दीजिए।
1: अच्छा तो आपको कोई, आपके घर में कोई योग्य कन्या है?
2: अब योग्य कन्या तो सर हम ढूंढेंगे लेकिन गारंटी इसकी कोई नहीं है कि वो आपको बेलन से झाड़ू से नहीं मारेंगी।
1: अच्छा तो हम पिटते रहे और पत्नी का गुणगान करते रहे?
2: हाँ सर आप बढ़िया सा एक जाइए गुलाब खरीदिए और पत्नी जी के चरणों में एकदम आप यहाँ जाइए और सोचिए समझिए, बता दीजिए कि पत्नी श्री जो आप है बस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही हैं, कोई है नहीं आपसे सुंदर।
0: मैडम जी आपसे निवेदन था, आप उसमें मीडिया में काम करती हैं तो जरा हमारे भाई का जरा एक आर्टिकल वार्टिकल छाप आप दीजिएगा जिससे लोग इनके लिए थोड़ा सा सहानुभूति दिखाएं, कल को कोई मैटर वेटर हो जाए तो पुलिस वाले इनकी सुनवाई।
1: हम ये चाहते हैं कि आप टीवी पे आती हैं बिल्कुल ऐसे आए हमारे वाले अंदर से, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी एक बार फिर देती है दरवाजे पर दस्तक। कहानी एक ऐसे खतरनाक गृहिणी की जिसने पति पर चलाया बेलन और निकल आया गुलमा, पुलिस ने नहीं की FIR दर्ज। ऐसे महिला सशक्तिकरण के दौर में पुरुष अशक्तिकरण हो रहा है, मिलजुल कर आवाज उठाइए, पतियों को पत्नी से पिटने से बचाइए।
2: बात सर मुद्दा बड़ा है, इस पे आवाज उठानी पड़ेगी।
0: आजकल तो मैडम जी यही जमाना आ गया है, नारी है ये हर बंदे पे भारी है।
2: जी नारी है हर बंदे पे भारी है और हम भी नारी आप भी नारी।
0: पर क्या करें
1: बिहारी भी ये
2: अब उसमें पुरुष बेचारा फंस गया है,
0: विवाद जारी है, क्या करें ये विवाद जारी है।
2: अब
1: आपका ही सहारा है मैडम जी, किसी तरीके
0: हम लोग गरीब परिवार के हैं, किसी तरह 30 पत्नियां संभाली जा रही हैं।
2: हाँ मैम हमने अभी आप पे इस बात पे गौर फरमाया है कि आप बहुत गरीब परिवार से हैं, 30 शादियां कर चुके हैं और 31वीं की तैयारी है कि अगर कोई योग्य कन्या मिल जाए तो उसे अभी ना नहीं करेंगे सर।
0: तो वो मतलब देखिए असमंजस थोड़ा सा बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स थोड़ा बढ़ाने के लिए, जिससे ये लोग दब के रहें कि ऐसा ना हो कि 31वीं आ जाए, हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। तो आपसी झगड़ा तो वो लोग नहीं करती हैं, लेकिन अपना जितना प्रतिशोध होता है हमारे भाई के साथ ही करती है।
1: बहुत दुखी
0: है। आपसी बार तो हम
2: अरे सर एक सवाल था आपसे, सर एक सवाल था, जैसे आपकी 30 पत्नियां हैं तो बच्चे नहीं परेशान करते आपको?
1: नहीं बच्चे परेशान नहीं करते।
0: नहीं तो मैडम जी हम लोग अपनी गरीबी के अनुसार 30 मंजिले का घर बनवाए हैं। एक एक मंजिले पे एक एक पत्नी को सेट कर दिए हैं लड़का बच्चा के साथ।
2: हाँ तब तो बात सही है, गरीबी बहुत है।
0: तो मैडम जी हमारे परिवार पे जरा एक आर्टिकल लिख दीजिएगा और हमारे भाई को इस दुविधा से बचा दीजिएगा।
2: जी हम बिल्कुल बहुत तेज पे ये ध्यान नहीं होगी बात
0: का, बड़ा नाम सुने और
2: अरे वाह वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपके भाई की समस्या को भाई ऊपर तक ले जाऊंगी, इससे आर्टिकल क्या मैं इसे हेडलाइन की न्यूज चलवाऊंगी कि भाई एक 30 पत्नियों से प्रताड़ित हो रहा है एक पुरुष, कोई तो इसकी आवाज सुने।
1: यही यही उम्मीद है मैडम जी, बस फसल लोगों की सहानुभूति मिल जाए, प्यार
0: सहयोग बनाए रखिएगा मैडम जी। इस बार आप प्लीज मत कीजिए, अगली बार हम लोग कुछ जरूर व्यवस्था करें।
2: हाँ आपकी गरीबी को देखते हुए 30 पत्नियां 30 मंजिल का मकान और इतने ढेर सारे बच्चे, हम आपकी गरीबी को देखते हुए आपसे फीस इस बार तो नहीं लेंगे लेकिन आपके भाई की मदद जरूर करेंगे 30 औरतों से बचाने में कि वे झाड़ू बेलन थुकनी कलछी इससे मार ना पड़े उसका। लेकिन एक इलाज है मेरे पास, अपने भाई को समझाइए कि डेली रोज जब घर पर पहुंचे तो पत्नियों के पैर छू लिया करें। पत्नी तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरी देवी हो और आपके सिवा कोई है नहीं, ये मंत्र अगर वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लेंगे। जैसे दूध अगर कहा गया कि दूध देखना है तो दूध देखना नहीं है, गैस बंद करनी है, बर्तन मांजना हो गया, झाड़ू पोंछा हो गया, ये सब कर लेंगे तो इन चीजों से बच जाएंगे।
0: हमको लगता है इन्हें एक ठो गृहस्थी की जो क्लास होती है वो ले लेनी चाहिए।
2: हाँ जी जी सबसे ज्यादा जरूरी इनके सर के लिए यही है कि एक जो पत्नियों को काबू में कैसे करें उसकी क्लास लेना चाहिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और आप आर्टिकल में वो सारी जरूरी नसीहतें लिख दीजिएगा जो हमारे भाई को बचाने के लिए आवश्यक
2: है। जी बिल्कुल बिल्कुल
0: मैडम जी आपका आभार, आपका समय लेने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं पर आपके इस समय देने से हमारे भाई की जान बच सकती है।
2: जी जी बिल्कुल, और हम आभार प्रकट करेंगे कि आपने हमें कॉल किया और हम सहयोग जरूर करेंगे आपके भाई का।
0: जी जी बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: ये बात तो डॉक्टर लव आज क्लियर हो गई कि मीडिया वाले भी मदद करते हैं।
1: करते हैं बिल्कुल करते हैं,
0: और इन्होंने तो साफ साफ कहा और सुझाव भी दिया आपको। चलिए अगले कॉल की ओर रुख करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब, आपके साथ मौजूद है आपकी अर्जुबीना, आपका नाम?
3: हेलो
0: जी सविता जी कैसी हैं?
3: मैं ठीक हूँ, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मनु भाई को सब कोई क्या क्या बोल रहा है।
0: ये मनु भाई कौन है?
3: मनु भाई रात में आते
1: हैं। रात में कोई मनु आते होंगे मतलब क्या रेडियो काम करते हैं?
0: अरे हाँ हाँ हाँ रेडियो करी, हमारे यहाँ के एक ठो आरजे हैं।
1: अच्छा आरजे का नाम मनु है?
0: जी जी जी जी,
1: कभी मिलवाइए उनको हमसे।
0: हाँ रेडियो जो की
3: हम मिलवा देंगे, संडे को मिलवा देंगे,
1: संडे को। हाँ संडे को मिलवा दीजिए, बहुत बड़ी
0: तो। सविता जी आपके जीवन में कोई समस्या समाधान या परेशानी, कोई दिक्कत कष्ट मुसीबत?
3: हाँ मूड पिराई
0: है, मूड पिरा रहा है।
1: आपके घर में तलवार है?
0: चाकू चाकू
3: तलवार तो नहीं है, कल ही आरी ले आएगा।
1: आरी बस आरी से अपने पति से कहिएगा कि आरी से गर्दन काट दे, ना रहेगा मूड और ना पिराएगा।
3: ए नहीं ना, 3 दिन के बाद आएगा कहीं से।
1: तो हम चले आए हमारी क्लिनिक पे, जाइए हम आपका सर दर्द दूर कर देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं आऊंगी, दवाई बता दीजिए कुछ।
1: दवाई ही बता रहे एकदम आधी से धीरे धीरे काटना है और इसके पश्चात हम एक आइंटमेंट देंगे, उसको लगा लेना है, आपका सिर फिर जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जैसा सोच रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: हाँ वो आदि हमारे पास है।
3: अच्छा शुक्रिया,
1: आप आइए आपका सर दर्द दूर।
3: शुक्रिया, टाइम भी हो गया।
1: भगवान ने चाहा तो न मर्ज और न मरीज।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है सविता जी की समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। और समय भी देखिए काफ़ी सारा हो रखा है, और थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि अब चैट रूम में नज़र घुमा लें। इम्तियाज़ जी हैं, गुड इवनिंग इम्तियाज़ जी, कैसे हैं? और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नागेश्वर जी, क्या लिखते हैं? लिखते हैं कुछ खास कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, कल मैं डॉक्टर झटका के पास गया था बेवफाई के दर्द की दवा लेने, डॉक्टर झटका ने दो तरह की गोली दे दी, अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी गोली सोने के बाद खानी है और कौन सी गोली उठने के पहले खानी है। देखिए गोली सोने के पहले और उठने के मतलब सोने के बाद और उठने के पहले जो भी खानी है उसको आप जान लीजिए कि दोनों गोलियों को क्या किया जाए, कैसे खाएं।
1: भाई ये विवाहित हैं या सुखी हैं?
0: ये मुझे लग रहा है कि दोनों ही होंगे।
1: नहीं मतलब दोनों कैसे हो सकता है, इंसान या
0: क्योंकि
1: तो
0: इन्होंने अभी तक बताया नहीं है ना, तो हाँ, मुझे लगता है क्या पता विवाहित भी हूँ और क्या पता ना भी।
1: नहीं सुखी मतलब विवाहित है कि सुखी है, अगर सुखी है तब बताएं।
0: दवाई कैसे खाएं ये बताएं।
1: हाँ, तो आप पहले बताइए कि आप सुखी हैं या विवाहित।
0: नागेश्वर जी जरूर बताइए। अनिल जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि मोहब्बत कब कैसे होती है, कब और कैसे होती है?
1: मोहब्बत ऐसे होती है, हमारे एक मित्र थे तो उनकी जो है शादी हुई है, तो शादी हो गई तो फिर जो है वो उनकी पत्नी भी ऑर्केस्ट्रा में सिंगर, मैं एंकरिंग का काम करता था।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने बड़े अंदाज से रोमांटिक अंदाज से पूछा गाना गाते में, ये क्या हुआ कब हुआ, रिक्वेस्ट में गाना है नहीं। उनकी पत्नी ने उसी रोमांटिक अंदाज में उत्तर दिया, चलते चलते यूं ही कोई।
0: ये बात सही है, तो बस ऐसे ही मिल जाते हैं लोग और ऐसे ही गुल खिल जाते हैं। और वो गाना सुना है, मिलते हैं दिल यहाँ मिलने बिछड़ने को, और ऐसे मिलते बिछड़ते भी रहते हैं। कमल नयन जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? और भाभी का 36 गुण, भैया का गुण 12 का बर्थडे संस्कारी है सर, ये क्या लिख रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे, आप लोग की तो थोड़े से मतलब स्क्रिप्टिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और इम्तियाज जी लिखते हैं, पत्नियों को काबू करने के लिए फ़ोन दिला दो, सीरियल लगा दो, वो लोग सीरियल देखती रहेंगी। लगता हुआ है, लगता है इम्तियाज जी ने अजमाया हुआ है इस नुस्खे को। और इसी के साथ इम्तियाज जी लिखते हैं, सरकार ने शादी करने के लिए मना किया है। नहीं नहीं सरकार ने शादी करने के लिए मना किया, ज़्यादा शादी करने के लिए मना किया। सर जी मेरा एक दोस्त है जिसकी दो पत्नियां हैं, एक घर पर और एक बाहर। बाहर मतलब कहाँ? बाहर
1: बाहर मतलब क्या, प्लेटफॉर्म पे?
0: ये पहले बताइए। तो वो ज्यादा परेशान है, एक बाहर है वो ज्यादा परेशान, जो बाहर है वो ज्यादा परेशान है, उसको भी घर ले आइए।
1: हाँ उसको भी घर ले आइए, और अगर आपके घर में जगह ना हो,
0: दिक्कत परेशानी सब दूर हो जाएगी,
1: तो हमारे घर भेज दीजिए।
0: हाँ ये बात सही है। तो चलिए देखिए, अब समय भी हो चला है आप लोगों से दूर दूर दूर जाने का, लेकिन क्या करें, अब आज जाने की जिद ना करो वाला सिस्टम है। और कॉल देखिए कट गया है, और आप लोग कॉल भी करते हैं तो एकदम लास्ट मोमेंट पे करते हैं। आपको पता है डॉक्टर लव को अपने क्लिनिक पे भी बैठना होता है, एक नहीं दो नहीं चार नहीं पूरे 1800 पर्चे लगे हुए हैं आज।
1: एकदम एकदम।
0: तो हमारे साथ दीपक जी हथियागढ़ से आ गए हैं, क्या हाल है? और जैसे समय होता है तुरंत सब अपनी अपनी डिमांड लेके हाजिर हो जाते हैं। गुड इवनिंग आशु जी, कैसी हैं आप? और सब हमारे जो कहते हैं ना फरमाइशी वाले लिसनर्स आ गए हैं, परबल जी आ गए हैं अपनी फरमाइश लेके, और अनुष्का है हमारे साथ अपनी फरमाइश लेके। तो चलिए आप लोग भी ऐसे सुखी रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, अगले सैटरडे को आप लोग की समस्याओं का समाधान ज़रूर मिल जाएगा। और अब आरजेबीना को और डॉक्टर लव को दें इजाज़त, और ऐसे ही मिलते रहेंगे, प्यार बांटते रहेंगे और प्यार के सुझाव निकालते रहेंगे। आपके पास भी कोई एक ऐसा इंसान है जो लोगों की बहुत मदद करता है या उसको मदद की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल हमें दे सकते हैं, उससे हम आने और ये बिना बताए बात करेंगे कि हम आरजेज हैं, और उससे उसकी समस्या का समाधान उसी से पूछेंगे। क्यों डॉक्टर?
1: बिल्कुल।
0: तो आप हमें हमारे मेल पे और हमारे पर्सनल नंबर पे उस इंसान का नंबर और डिटेल भेज सकते हैं, या फिर हमें कॉल करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज
1: कर सकते हैं,
0: और हम अगले वीक उनसे बात करेंगे।
1: बिल्कुल बात करेंगे।
0: दैट्स द प्रैंक टाइम।
1: ये
0: तो चलिए इजाजत दीजिए और अगला गाना अपनी पसंद का सुनिए। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, और हंसते हुए आपने सुन लिया अपनी फपनी अपनी अपनी अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी पे ज्ञान सिटी 9.6 एफएम पे अपना वाला शो। एंड यस, कंटिन्यू करेंगे आगे आपकी फरमाइशों के साथ।

कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जैसा चाहा था तुझे देख ना पाए दुनिया, दिल में बस एक ये हसरत ही रही जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। कर्ज का बोझ उठाए हुए चलने का अजाब जैसे सर पर कोई दीवार गिरी जाती है। अपनी पहचान मिटा देना हो जैसे सब कुछ, जो नदी है वो समंदर से मिली जाती है। पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा एकदम चकाचक सैटरडे नाइट स्पेशल वाला गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, महफिल आपकी, जज्बात आपके, गीत आपके, और ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अभी हमने जिस गाने का आनंद लिया है, जिस गीत को सुना है, जिस म्यूजिक को सुना है, वो फरमाइश थी आशा मिश्रा जी की लखनऊ से। और अब हम एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम आशा मिश्रा जी लखनऊ से। रिजू, बहुत दिनों बाद, क्या हाल चाल है जरूर बताना। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, प्रबल मिश्रा गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, आशा मिश्रा जी एक बार फिर से आप लखनऊ से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। बंटी गुर्जर, कमल नैन जी आपका भी स्वागत है। और सुरेश कुमार जी चौक से, शशि सिंह जी द ग्रेट से इन साहब वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। सविता दुबे जी आपका भी स्वागत है। नागेश्वर धाकड़, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा। ओ माई गॉड, आज तो बहुत सारे लिसनर्स आए हैं, आप सबको देख के तो मेरा दिल एकदम गदगद सा हो गया है दोस्तों। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से आपका भी स्वागत है। और पहली फरमाइश तो हमने एंजॉय कर ली है, एंजॉय करेंगे हमारी आज की दूसरी फरमाइश। मुमताज अंसारी जी, राकेश वर्मा, एवरीवन, संजय शुक्ला, पृथ्वी नाथ से आपका भी स्वागत है। और एंजॉय कर लेते हैं अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है रिजू की, और रिजू को सुनना है गाना तू है खुशबू तो है जादू ये दिल तुम पे आ गया। सो एंजॉय करते हैं अलीशा का और केके का ये एतराज का गाना सिर्फ और सिर्फ रिजू की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की अनकही अनसुनी बातों को खटपट को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड। टन टन टन टन। ओहो मजा आ भी गयो नो।

0: दिल तुम पे आ गया। हमने एंजॉय किया अलीशा का और केके का ये गाना एतराज का सिर्फ और सिर्फ रीजो की फरमाइश पर। सो अब आया ना रीजो वाले वाइब वाला गाना चैट बॉक्स में दोस्तों, मुझे तो मजा आ गया, आप लोग को कैसा लगा जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। सो दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है किसकी, हमारे जग्गू दादा की, हमारे चैट बॉक्स के जग्गू दादा की, एमपी वाले जग्गू दादा की। जी हाँ दोस्तों, जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है लव स्टोरी का गाना, देखो मैंने दिखा है एक सपना। सो एंजॉय करते हैं ये रेट्रो वाइब वाला गाना सिर्फ और सिर्फ हमारे रेट्रो जग्गू दादा की फरमाइश पर। यू नो ना स्टे ट्यून टन टना टना टना
1: गाने सुन।

सो अमित कुमार की और लता मंगेशकर जी की आवाज में हमने एंजॉय किया लव स्टोरी का ये वाला गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर जो कि है एमपी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मालवे नगर गोंडा से मजीद जी, आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों दीपक जी की हथियागढ़ गोंडा से, और दीपक को हथियागढ़ गोंडा से सुनना है गाना सैयारा मैं सैयारा। सो एंजॉय करते हैं सलमान खान कैटरीना कैफ का एक था टाइगर मूवी का ये गाना मोहित चौहान की आवाज में सिर्फ और सिर्फ दीपक जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इम्तियाज अहमद जी फ्रॉम गोंडा, सुरेंद्र यादव जी गोरा चौकी से आपका भी स्वागत है।

सो मोहित चौहान की आवाज में एक था टाइगर का ये गाना हमने एंजॉय किया है दीपक की फरमाइश पर, जो कि है हथियागढ़ गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की। प्रबल मिश्रा को गोंडा से सुनना है गाना तुमको देखा तो क्या ये हो गया। सो एंजॉय करते हैं हमारा दिल आपके पास है मूवी का अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट वाला रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़क।

सो हमारा दिल आपके पास है मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में, प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर जो की है। गोंडा से बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना उड़ गई रे नींद, सो एंजॉय करते हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मूवी का गोविंदा आला रे मींस गोविंदा वाला गाना सिर्फ और सिर्फ हमारी श्रावस्ती की गोविंदा अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

ये बहुत ही कमाल की फरमाइश आई थी हमारे पास में अनुष्का की तरफ से, जो कि है श्रावस्ती से। एक बार फिर से लव यू सो मच अनुष्का। इस गाने को सुन के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है और ये गाना अब मेरी प्लेलिस्ट में जरूर ऐड होने वाला है। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। क्या आप लोग तैयार हैं? और ये बताइए, क्या भाई क्या बात है, बैक टू बैक ऐसे गाने बज रहे हैं कि नॉन स्टॉप मेरा बस यही मन कह रहा है कि मैं इस गाने को पूरा सुनूं। लेकिन विच इज इम्पॉसिबल, यू नो ना दोस्तों, इतनी फरमाइशें आई हुई हैं आज। लग रहा है कि आज सैटरडे नाइट वाली स्पेशल वाली प्लेलिस्ट है और वही वाली एकदम रंगीन सुकून वाली महफिल भी है। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल नयन की, और कमल नयन को सुनना है गाना। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। आए हाय, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में एक बार फिर से एंजॉय करते हैं एक सुपर डुपर हिट सदा बहार नगमा जो हर एक दिल पे राज करता है। सलामी मूवी का है ये गाना और एंजॉय करेंगे ये वाली फरमाइश सिर्फ और सिर्फ कमल नयन जी की तरफ से। स्टे ट्यून्ड।

से बिछड़ के हम मिले साजन दुआ करना, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में सलामी का ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों कमल नयन की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है बंटी गुर्जर की, उनको सुनना है गाना अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। Stay tuned। तो मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में हम दोनों का ये क्लासिक हिट नगमा एंजॉय करते हैं दोस्तों। Stay tuned।

अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में हम दोनों का ये गाना हमने इंजॉय किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बंटी गुर्जर की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह की, उनको सुनना है आसपास का गाना लता जी की आवाज़ में, तो इंजॉय करते हैं दरिया में फेंक दो चाबी गाना, सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में हमारी शशि जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम न्यू तरंग टेलर गोंडा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में संतोष कुमार जी गिलौली से आपका भी स्वागत है। इंजॉय कर लेते हैं शशि जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड। होगी बड़ी खराबी, समझे?

जी हाँ दोस्तों, तुम्हें दिल में बंद कर लो और दरिया में फेंक दो चाबी। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में, आसपास मूवी का सिर्फ और सिर्फ शशि सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और फटाक से भागते हुए, दौड़ते हुए, कूदते हुए, फानते हुए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ओ ये हमने फाइनली ये वाला लेवल पार कर लिया है। कितना मजा आता ना अगर गेम खेलना होता, एक गेम के बाद में एक फरमाइश प्ले होता, कितना मजा आता है ना। सो फाइनली अब बढ़ी चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगर गेम नहीं है तो क्या फरमाइशी गीत नहीं प्ले करूंगी? जरूर प्ले करूंगी भाई, जरूर प्ले करूंगी। द ग्रेट सेन साहब को सुनना है गाना शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। सो एंजॉय करते हैं नसीब मूवी का गाना सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर। Stay tuned. Tan tan tan tan. Ha ha ha. क्या दर्द भरा गाना है। दो बूंद आंसू तो टप टप टप का ही देना।

सो दोस्तों, ये फरमाइश थी द ग्रेट सेन साहब की। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले द ग्रेट सेन साहब ने कुछ हर्ज भी किया है। सो इरशाद इरशाद जरूर करिएगा। द ग्रेट सेन साहब का कहना है कि दिल टूटे तो आवाज नहीं आती, हर किसी को मोहब्बत रास नहीं आती, ये तो अपना अपना नसीब है, कोई भूल जाता है किसी से भुलाया नहीं जाता। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दिल जले दिल पे एक आशिक, मोहम्मद मुशीब की बाराबंकी से उनको सुनना है गाना ओ जाने जिगर। सो एंजॉय करते हैं ये गाना, और इसी के साथ में दोस्तों मैं बताना चाहूंगी इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। तो सीधे 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, कहीं मत जाना, चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ करके आना, और फिर एंजॉय करेंगे ढेर सारे गाने आप सभी के साथ में। स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। पिंटू कुमार मनकापुर से आपका स्वागत है।

0: बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
2: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 852,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
3: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
5: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती

0: अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
1: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 80-90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक IED विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और कैसा रहा ब्रेक? कुछ पेट में गया? क्योंकि मेरे पिताजी का कहना है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या आपका भी यही मानना है? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना मोहब्बत ही मोहब्बत। तो रफी जी की आवाज में एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: हो जहाँ हम हैं।
1: मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं। हमने एंजॉय किया मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। दोस्तों, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन उसके पहले, क्या आपको लगता है मोहम्मद रफी जी की तरह कि मोहब्बत ही मोहब्बत है जहां में सभी जगह? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि घोर कलयुग है, सिर्फ मोहब्बत के नाम पे लोगों को टोपी पहनाया जाता है। वैसे मोहब्बत है, मोहब्बत के बिना दुनिया थोड़ी चलती है। एक मोहब्बत, एक विश्वास, यही दोनों है जो दुनिया चलने के शायद नहीं है। तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना हीरोपंती का रब्बा। सो एंजॉय करते हैं मोहित चौहान की आवाज में एक बार फिर से ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। स्टे ट्यून्ड। ये दुनिया में लोगों के नाम मोहित क्यों होते हैं? बहुत सारे मोहित है, घर के आसपास मोहित, मौसी का लड़का मोहित, बुआ का लड़का मोहित, बहुत सारे मोहित है ना मोहित।

सो इस बहुत ही खूबसूरत से गाने की डिमांड हमारे पास में आई थी मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। और बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप सभी ने मेरा दिन बना दिया। ऐसा नहीं कि हमने एक ही टाइप के गाने एंजॉय किए हैं आज, आप सभी को भी पता है कि आज हमने बहुत टाइप के गाने एंजॉय किए हैं, थोड़े से सैडनेस वाले लेकिन अलग अलग सैडनेस वाले, रोमांटिक वाले लेकिन अलग अलग रोमांटिक वाले। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट आज बनी थी आप सभी की। और इंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमरे पास में है, अरे वाह ये कहां से अवधि निकल आया दोस्तों, जैसा भी था बहुत ही कमाल का था। सो हमारे पास में अगली फरमाइश है जयप्रकाश मिश्रा की, उनको सुनना है गाना तेरी आंखें हैं मधुशाला, इस पर शेर लिखूं या गजल कहूं, जो भी कहना हो कह दीजिए लेकिन मेरी आंखों पे कहिएगा जयप्रकाश जी। सो एंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना, स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है संजय शुक्ला की पृथ्वीनाथ से, उनको सुनना है गाना मोहब्बतें का चलते चलते। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से सुपर डुपर हिट गाना, लेकिन इस बार संजय की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। किसने किसको दुश्मन बना दिया है नागेश्वर धाकर।

सो दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर गोंडा से मजीद की, और मजीद को सुनना है गाना मैं कब गाता हूँ मेरा सुर, मेरे सुर में किसी का प्यार गाता है। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में मजीद की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। अगली फरमाइश होगी संतोष कुमार की गिलौली।

लगता है हमने एंजॉय किया है मोहम्मद रफी की आवाज में मजीद की फरमाइश पर ये गाना जो कि है मालवे नगर गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है संतोष कुमार की गिलौली से, उनको सुनना है गाना रिमझिम गिरे सावन। एंजॉय करते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा। इनका कहना है कि भूल जाए तुम्हें कोई इरादा नहीं, तेरे सिवा किसी और से कोई वादा नहीं, निकाल देते इस दिल से तुमको, निकाल देता इस दिल को, इस दिल से तुमको मुकेश, मगर इस नादान दिल में कोई दरवाजा नहीं। सो एंजॉय कर लेते हैं वाली फरमाइश, मीन्स संतोष कुमार की फरमाइश जो कि है गिलौली से। स्टे ट्यून्ड।

अगली फरमाइश हमारे पास में है पिंटू कुमार की। पिंटू की मन कपूर से उनको सुनना है गाना बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना पिंटू की फरमाइश पर।

दोस्त बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझसे दोबारा न मिला। हमने एंजॉय किया अनुराधा और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई थी किसकी तरफ से, पिंटू कुमार जी की तरफ से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। क्या फरमाइश की तरफ? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। सो एंजॉय करते हैं इसका न्यू वर्जन, और इसी के साथ में लेना चाहेगी अलविदा आप सभी से, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करना, बहुत सारा मिस करना, इतना सारा मिस करना, इतना सारा मिस करना कि सैलाब आ जाए पूरे के पूरे चैट बॉक्स में हूँ। सो अपनी आरजे सिंपल को बहुत सारा मिस करना, क्योंकि कल है संडे, संडे मीन्स फंडे, फंडे मीन्स हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल नहीं आएगी। सो चलती हूँ दोस्तों, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूँ खटपट पग पग और पता नहीं कौन सी वाली आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल, स्टे ट्यून्ड। कल मैं चैट बॉक्स पे नजर रखूंगी, देखूंगी कौन कौन मुझे मिस कर रहा है। बाय बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहार गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
13: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
14: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
13: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल चुका है बाहर ये गजल, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और जी आज तो शनिवार का खास वाला दिन है, गजलें हमारी गीत आपके, तो गजलें हमारी बच चुके हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और इंसान हो सकता है कि एक इंसान इस दुनिया के लिए महज एक इंसान हो, लेकिन वही एक इंसान किसी इंसान के लिए पूरी दुनिया हो सकता है। आप भी किसी व्यक्ति के लिए पूरे जहान है, उसकी पूरी दुनिया है। तो शाम का ये प्यारा सा वक्त है, सुकून देने का समय है, और ये सुकून की रात में, सुकून की शाम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस्तकबाल। अब देखिए एन टू दी पावर एन हो चुके हैं हमारे साथ मनीष शर्मा जी, बहुत उनके बाद दिखाई पड़ रहे हैं हमको। और हेलो जी, हाँ कैसे आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हमारे साथ गुड नाइट भी हो गया, जी हाँ हमारे साथ मनीष शर्मा जी, आज मनु सर वेलकम जी, बात बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शुभ संध्या मनीष जी। और भाई कभी आइए, नेहा जी बहराइच से हैं, नमस्कार से जी, आदाब, कैसी हैं नेहा जी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी आवाज़ सुनने को जरूर मिलेगी हमको आज जी, कोई बता सकता है। और भाई ये तो जानकारी हमको नहीं है जी, हाँ लेकिन आपको जरूर करके बताएंगे। नागेश्वर धाकड़ जी हैं, गुड इवनिंग आरजे मनु सर, आपको भी शुभ संध्या। और आरजे इस पासवर्ड जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश यादव जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर, आई लव यू, आई टू लव यू, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे जी जी जी। क्या बात है भाई, बहुत सारे श्रोता हमारे इस चैट बॉक्स में उपस्थित हैं। तो आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हो गई है दिन में घर नहीं देखा। जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कहा जाता है कि किसी भी यात्रा की शुरुआत जो होती है, हजारों मील के फासले का सफर भी आपको पहले ही कदम से तय करना पड़ता है। और सच मानिए, पहला कदम वास्तव में बड़ा कठिन होता है। जिस दिन से चला हूँ मेरी आंखों पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और अब जिसके लिए ये पूरी गजल कही गई, वो पंक्तियाँ ये हैं कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने कभी छूकर नहीं देखा। जी हाँ, अगर छूकर देखता तो उसे एहसास हो जाता कि शायद इस बाहर से कठोर दिखने वाले इंसान में बहुत खूबसूरती है, बड़ा प्यार है, बड़ी करुणा है। हम अपने कॉलेज लाइफ की बात बताएं तो हमसे किसी ने कहा था कि आप बहुत पत्थर दिल इंसान हैं, तुमने उत्तर दिया था उनको कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगी मिटेगा नहीं। रेत पर लिखना आसान होता है साहब, लेकिन समंदर की एक लहर मिटा जाती है। पत्थर पर लिखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर एक बार लिख गया तो फिर लिख गया, फिर सदियां बीत जाती हैं उसे मिटाने में। मैं हमेशा कहता हूँ कि
एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई थी कि दो भाई थे और दोनों समुद्र के तट पर जाते थे खेलने के लिए। किसी दिन बड़े भाई को गुस्सा आया, उसने छोटे भाई को एक झापड़ मार दिया, स्लैप कर दिया। छोटे भाई ने समुद्र की रेत पर लिखा, आज मेरे भाई ने मुझे एक झापड़ मारा। कुछ दिन की बात और हो गई, बात आई गई और अगले सप्ताह फिर कुछ हुआ तो बच्चा जो था वो समुद्र के किनारे खड़ा था। अचानक समुद्र की तेज लहर आई और उस बच्चे को अपनी तरफ खींच ले गई। बड़े भाई ने देखा, अरे ये तो मेरा भाई अभी डूब जाएगा। अपने जान की परवाह न करते हुए उसने छलांग लगाई और अपने छोटे भाई को बचा लेकर आया। कुछ देर के पश्चात जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, पेट से पानी निकला, तो वो छोटा वाला भाई गया, उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। बड़े भाई को समझ में नहीं आया, उसने कहा समझ नहीं पाए। तो क्या क्या क्या नहीं समझे आप? तो उसने कहा, उस दिन मैंने तुमको झापड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा, आज जान बचाई तो पत्थर पे लिखा। उस छोटे बच्चे का जवाब हमारी जिंदगी का सच हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। उसने कहा, भैया वो मुझे बुरा लगा था, वो आपकी गलती थी और मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने उसको रेत पर लिखा कि ये जल्दी मिट जाए। और जब आपने मेरी जान बचाई, अच्छा काम किया, तो मैंने पत्थर पर लिखा ताकि कभी ना मिट पाए। दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है। हमारे साथ कोई एक अच्छा काम करता है तो हम उसे रेत पर लिख देते हैं, चलो ठीक है किया। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा, एक बार उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और जिसके बाद मैंने उनके घर पे पाँव नहीं रखा। इसका मतलब हम उल्टा कर रहे हैं, हम अच्छाइयों को रेत पर लिख देते हैं और बुराइयों को पत्थर पर लिख देते हैं। थोड़ा सा बदलना है, अच्छाइयों को पत्थर पर लिखना शुरू कर दीजिए, बुराइयों को रेत पर लिखना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी यकीन मानिए दोस्त, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी मिलकर यही करेंगे। कोई बुराई करे, कुछ आपका दिल दुखाए, उसको रेत पर लिखिए, मिट जाने दीजिए। कोई अच्छाई करे तो उसे अपने दिल के पत्थर पर लिखिए ताकि वो कभी ना मिटे। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल। आप सुन रहे हैं और रेडियो का नस्ल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए और इसके पश्चात आएंगे तो आपसे पूछेंगे सवाल आपके गीत का। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल पंकज उदास साहब की आवाज़ में आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, तो गज़लें हमारी एक से एक बढ़कर हो चुकी हैं और अब आपके गीत होंगे। और भाई मनीष शर्मा जी हैं, हमारे साथ कायनात जी भी जुड़ चुकी हैं। शुभ संध्या आपको। और जी मनीष शर्मा जी हैं, इन टू दी पावर टू ही हैं हमारे साथ, तब आप कुछ भी कहें भाई। और क्या बात है भाई मनीष शर्मा जी, बहुत दिन के बाद आपको देख रहा हूँ। और बंटी जी कहते हैं रेडियो में मस्त मस्त सॉन्ग चल रहे हैं, उसी के साथ मस्त हवाएं चल रही हैं, छत पे बैठे हैं, कितना रंगीन मौसम हो रहा है। जी हाँ, और इस शमा को, इस माहौल को और खूबसूरत बनाएंगे। जी हाँ, और अब आपकी महफिल में रखते हैं पहला प्रश्न। याद न जाए बीते दिनों की, आप सभी का सुना हुआ गीत है। और देखते हैं भाई आज ये गीत हमको कौन पूरा करता है। जी हाँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ।
1: नमस्कार भैया।
0: जी नमस्कार,
1: सुरेश कुमार।
0: हाँ सुरेश कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ पछला जी, आप
0: स्वस्थ हैं?
1: हाँ स्वस्थ।
0: ज्ञान मिश्रा जी के संदेश आया आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। मिश्रा जी, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, क्या बात है भाई। और बहुत अच्छी स्टोरी भी लगी उनको, प्रेरणा मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ग्रामीण में जी, बिल्कुल आप आइए ज्ञान मिश्रा जी, आपका स्वागत है। और अब चलते हैं अपने दर्द कुमार सुरेश कुमार जी की तरफ। तो कैसे हैं आप? मौसम कैसा है?
1: बहुत फसला, क्या बेहतरीन हवा चल रही है।
0: क्या बेहतरीन हवा चल रही है, मतलब बारिश होने की संभावना तो नहीं है?
1: हाँ नहीं, नहीं, लेकिन मस्त मौसम है,
0: मस्त मौसम।
1: और क्वेश्चन भी अच्छा लग गया है कि याद न जाए पीछे जो क्या है।
0: हाँ, मतलब अच्छे मौसम में अक्सर पुरानी यादें ताजा हो जाती है।
1: हाँ, तुम्हारे सभी लिस्टर भाइयों को नमस्कार है।
0: जी जी,
1: और प्रणाम है, तो शुरू कर दें।
0: जी शुरू करें।
1: बीते दिनों क्या के न आए वो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उसको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, तस्वीर उनकी छिपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छिपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी है मूरत, मन में है मूरत लेकिन मिटे न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
0: क्या बात है, ये गाना आपकी आवाज में बहुत प्यारा लगता है, यकीनन उसी दर्द के साथ आप उठाते हैं और इसीलिए आपका नाम भी तो दर्द कुमार है। बहुत बहुत अच्छा, प्रणाम आपको।
1: प्रणाम प्रणाम
0: जी, आशीर्वाद दीजिए आप। जी हाँ, तो ये सुरेश कुमार जी की आवाज में हमने सुना भाई। चलिए फिर आपको सुनाते हैं गजल, और गजल के बाद फिर होते हैं आपके साथ रूबरू। फिलहाल इस बार गजल सुनाते हैं आपको मोहम्मद रफी कायनाती गले के मालिक, उनकी आवाज में। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, और भाई हमने गीत तो बहुत सुने। आज शनिवार का दिन है और चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई भजन गा दे तो भी बहुत अच्छा रहे। हाँ, और हमने कहा नहीं कि यहाँ से ला चुका, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो जी सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम है प्राची मिश्रा।
0: हाँ, अरे आपकी आवाज़ पहचान गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और सारे लोग कैसे हैं? लिसनर्स कैसे हैं?
0: लिसनर्स सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और आपको याद भी कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं हूँ फिर।
0: जी हमारे साथ शिल्पी जी भी आ चुके हैं। क्या भाई, शुभ संध्या सर जी, कैसे हैं आज?
1: हेलो।
0: जी जी जी
1: जी जी सर बोलिए।
0: जी तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं?
1: आज मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत सारी फिल्मी सॉन्ग गाए हैं तो मैं भजन गा दूं।
0: अच्छा, मतलब आज आप सोच रही हैं कि भजन गा दें?
1: हाँ, सबका सोने का टाइम है ना, तो भजन सुन के सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी।
0: अच्छा, अभी तक हमें याद नहीं था कि लोरी सुन के सोया जाता है तो अच्छी नींद आती है।
1: नहीं, अभी रामचंद्र जी का भजन सुन के सोएंगे तो ज्यादा अच्छी नींद आएगी।
0: ये बात है, तो चलिए हम सुनते हैं आपके भजन को।
1: जी सर।
0: जी

0: थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है भाई, क्या प्राची जी, आपकी आवाज़ का जादू है। और मुझे लगता है अभी हाल ही में आपने कोई शादी अटेंड की है।
0: जी मैंने कोई शादी तो नहीं अटेंड की है, पर इस समय शादी का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही गा दूं।
1: हाँ बिल्कुल भाई, सीजन चल रहा है और जवान शहीद हो रहे हैं।
0: जी
1: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाया आपने।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: जी प्रणाम।
0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते। जी हाँ, हमारे साथ शिल्पी जी भाई, आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि मतलब इतने दिन के बाद आप दिखाई नहीं थी, मतलब चैट बाग एकदम महफिल सुनी। शुभ संध्या सर जी, कैसे हैं? आज आपने परेशान ही कर दिया पापा वाला गाना सुनाकर। क्या बात है, अब सोचिए आपने नहीं गाया, ये हमारे लिए बड़े दर्द की बात है। रवि जी हमारे साथ है, बहुत दिन बाद सर रिप्लाई तो कर दीजिए, बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी। क्या हो गया रवि जी आपको? अरे हमारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ हैं और कुछ नहीं होगा आपको। और नीना जी, हेलो जी, आदाब, कैसे हैं आप? सविता शास्त्री जी हमको सुनती हैं गोरखपुर से। शुभ संध्या सर जी, बहुत अच्छी रिजल्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको रवि जी हमारे साथ उपस्थित हैं, मुकेश यादव जी हैं जी, और सब लोग कैसे हैं भाई बता दीजिए। और फिर अब चलते हैं शिल्पी जी की तरफ, और उनसे तो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं कि भाई उनको जो गाना हो वो गा दें, मतलब छूट है। हमको लगता है पिछले बुधवार को, शनिवार को भी हम इस प्यारी सी आवाज़ से वंचित रह गए थे, और अगर आज भी वंचित रह गए तो हमको लगता है कि मतलब कहा जाता है ऑल इज़ वेल इफ एंड्स वेल, और वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझिए कि आधा काम आपका समाप्त हो गया। तो ये मई माह है और आज 2 तारीख है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, तो सेकंड हाफ में है, मतलब मई की शुरुआत है भाई। तो इस प्यारी सी आवाज़ में मैंने आवाज़ आपको दी है बड़े नाज के साथ, आप भी आवाज़ मिला दें मेरी आवाज़ के साथ। तो भाई हमारे साथ कायनाथ जी भी हैं, भाई अनिल जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सविता जी भी हैं, हमारे साथ शिल्पी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और अब आप सभी लोगों से अनुरोध है भाई कि समय चूँकि मेरे पास कम बच रहा है, तो अगर आप बहुत आवश्यक कार्य न कर रहे हो तो आपकी आवाज़ में कोई भी गीत जो आप सुनाना चाहें, अब आपको 6 मिनट के लिए छूट दी जाती है कि आप अपनी चॉइस का गीत सुना सकते हैं। तो भाई अब देखते हैं हमारे पास कौन है आने वाला, किसकी प्यारी सी आवाज़ हमारे कानों में पड़ने वाली है। जी हाँ, मनीष शर्मा जी ने कभी नहीं गाया, कायनात जी हमको लगता है बहुत अच्छा गाती होंगी, नाम के हिसाब से लगता है, फूल वगैरह भी बने हैं। और अनिल दादा हमको नहीं दिखाई पड़े आज जी, और देखते हैं कौन है हमारे साथ।
2: हेलो
1: हेलो।
2: हाँ सर नमस्ते
1: जी। प्रणाम, आपका शुभ नाम।
2: नमस्ते सर
1: जी।
2: रेणु तिवारी
1: जी। रेणु जी, बहुत दिन के बाद आपको सुना हमने
2: जी। सर
1: जी,
2: इस समय बाहर चले गए थे ना
1: जी। जी
2: अब लौट के आए तो सोचे की बात करें।
1: जी जी, तो क्या सुनाने वाली हैं आज
2: आप? हम आज तो भजन सुनाने वाले थे
1: जी।
2: शुरू करें सर
1: जी।
2: छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से गए मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से गए मेरे मदन गोपाल। काऊ काऊ कहे गैया, काऊ ग्वाल, काऊ खे गैया, काऊ पिंहे ग्वाल, काऊ खे मेरो मदन गोपाल। काऊ खे गैया, काऊ पिंहे ग्वाल, काऊ खे मेरो मदन गोपाल। दूब चरी गैया दूध ती ग्वाल दूध ती ग्वाल मक्खन कहे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो से है मेरो मदन गोपाल कहाँ रही गैया कहाँ रही ग्वाल कहाँ रही गैया कहाँ रही ग्वाल कहाँ रही है मेरो मदन गोपाल कहाँ रही गैया कहाँ रही ग्वाल कहाँ रही है मेरो मदन गोपाल दरिया रही गैया घर में रही ग्वाल महलों में रही मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो से है मेरो मदन गोपाल पर पूरा हो गया
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और प्रणाम
2: गलती होगा तो माफ
1: अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं भगवान का नाम घी का लड्डू है टेढ़ा मेढ़ा भी अच्छा लगता है बहुत बहुत प्रणाम आपको
2: नमस्ते
1: जी हाँ भाई तो
3: Disconnected.
1: अब देखते हैं फिर कौन है जो हमारे साथ में आने वाला है और इस बीच फोन आया था और हम भाई बात नहीं कर पाए तो देखते हैं कौन हमारे साथ जी हाँ मनीष शर्मा जी लिखते हैं हेलो जी हाँ मनीष शर्मा जी हेलो हेलो जी नमस्कार सर जी कैसे हैं मतलब क्या कोई नाराजगी है हमसे अरे बताइए मतलब गाना नहीं गाया जा रहा है तो क्या माना जाए जी
3: कनेक्टेड
1: तो मतलब इस समय आप जो है वो लोगों के दुखों को संभालने में लगे हुए हैं
4: बस वही किसी का गृह प्रवेश हो रहा है किसी का विवाह हो रहा है
1: हाँ हाँ वही मतलब दोनों एक ही बात है तो आज आप जी जी आपका आशीर्वाद तो आज क्या सुनने वाले हैं हम
4: वो पत्थर के सनम गाने
1: का जी बिल्कुल हेलो
4: हाँ सर शुरू करते हैं
1: जी जी
4: पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे तू हो कहीं सज

0: दीवाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। बस सर जी धन्यवाद
1: जी जी
0: धन्यवाद सर जी।
1: और इसके अलावा नहीं सुनने को मिलेगा हमको भाई शिल्पी जी की आवाज?
0: मिलेगा सर मिलेगा।
1: हाँ भाई बहुत दिन हो गया।
2: हेलो
1: जी प्रणाम
2: सर जी कैसे हैं?
1: चरण स्पर्श कम से कम आपको?
2: अरे सर चरण स्पर्श वाली तो स्थिति नहीं है लेकिन
1: हाँ नहीं वो मतलब इतने दिन से आप कहाँ हैं?
2: थोड़ी व्यस्तता थी सर
1: मतलब थोड़े भाई बुधवार को 10 मिनट हमारे लिए निकाल लिया कीजिए।
2: इत्तेफाक है सर मतलब ऐसा टाइम है ना कि मतलब कहीं जब एंगेज हो तो वो टाइम उसी टाइम में एंगेज हो जाते थे
1: जी,
2: तो इसलिए सुन भी नहीं पा रहे थे एक्चुअली।
1: चलिए तो आज सुना दीजिए। सुन नहीं पाए
2: तो प्रिपेयर तो नहीं है लेकिन ठीक है सुना देते हैं दो लाइन
1: जी।

बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ओ लिलिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेके मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाएंगे दिन कहीं से तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाएंगे दिल कहीं से तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, अब जाकर रूह को थोड़ी सी ठंडक मिली, आराम मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सर।
1: जी बहुत बहुत प्रणाम आपको।
0: प्रणाम सर।
1: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपसे मत लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के लबों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे मिलेंगे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में 1 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: इस शर्मा जी की पत्नी ने पहली बार देखी थी। वो शर्मा जी को स्तब्ध होकर देख रही थी और बचाने का प्रयास भी नहीं कर रही थी। जैसे तैसे ये समय बीता। शर्मा जी अपने पूजा पाठ के लिए गांव में निकल गए, पर पूरे दिन शर्मा जी की पत्नी के मन में यही ख्याल आ रहा था, वो इंसान जिसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो अपने बच्चे को हैवानों के जैसे क्यों मार रहा था। मन के वहम को समझ के शाम होते ही उसने खाना बनाया और शर्मा जी का इंतजार करने लगी। घड़ी में 10 बज चुके थे, अभी तक शर्मा जी का कोई अता पता नहीं था। कुछ समय और बीतने के बाद शर्मा जी की पत्नी अब अपने बड़े बेटे को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी शर्मा जी को देखने के लिए कि वो किसके घर पे इतनी लंबी पूजा करवा रहे हैं। देखते देखते आधा गांव घूम चुकी थी, पर शर्मा जी किसी के घर नहीं थे। पास ही एक छोटा सा आम का बाग था। बाग के पास कुआं था। कुएं के पास कोई बैठा नजर आ रहा था, पर अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था। शर्मा जी की पत्नी ने अपने बेटे से कहा, टॉर्च जलाओ और जरा चेहरे पे देखो कौन है। जो ही टॉर्च की रोशनी जली, सामने शर्मा जी बैठे दिखे और इतना देखते ही शर्मा जी की पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घड़ी में समय देखा है क्या हो रहा है? चलिए घर चलिए। इतना सुनते ही शर्मा जी पास में पड़े एक पत्थर को उठाते हैं और अपनी पत्नी के सर पे दे मारते हैं और सीधे घर चले जाते हैं। शर्मा जी की पत्नी के माथे से खून बहने लगता है। जैसे तैसे वो अपने बेटे के साथ वापस घर आती हैं और मरहम पट्टी करने के बाद खाना देती हैं और पूछती हैं, आपको क्या हो गया है? पर शर्मा जी बिना कुछ जवाब दिए ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह का नज़ारा कुछ और ही था। शर्मा जी बिना पूजा पाठ किए खाने पे बैठ जाते हैं और बच्चों को अनायास डांटने लगते हैं। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। शर्मा जी की पत्नी हैरान थी और उन्होंने पूछ ही लिया, आखिर आपको क्या हो गया है? आप पूजा क्यों नहीं कर रहे? बच्चों को क्यों डांट रहे हैं? और रात को भी आपका व्यवहार कुछ सामान्य नहीं था। इतना सुनते ही शर्मा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे घर को तोड़कर तूने अपना घर बना लिया है। और फिर तेजी से हैवानों की तरह खाना खाने लगते हैं। शर्मा जी की पत्नी ये सब देखकर दंग रह गई। खाना खाने के बाद शर्मा जी फिर से चिल्लाते हुए बोले, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए और कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उनकी पत्नी को भी अब शक हो गया था, ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया उनके पति पर है। वो ऐसी बातें तो पहले कभी नहीं करते थे, और तो और वो लोगों के घर पूजा करने भी अब नहीं जाते थे। अब घर के खर्चे में भी मुश्किलें आने लगी थी। शर्मा जी को देखकर अब उनकी पत्नी का मन भी बैठने लगा था। एकाएक उनके मन में ख्याल आया कि पास वाले मंदिर में जाकर क्यों ना वहाँ के पंडित जी से बात की जाए और जो भी घर में हो रहा है वो सारा कुछ बताया जाए। अगली सुबह पंडित जी से मिलने वो मंदिर जाती हैं। मंदिर में पंडित जी ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शर्मा जी को मंदिर में बिठाकर गायत्री मंत्र का जाप करो, अगर कोई भी भूत प्रेत का साया होगा तो सामने जरूर आएगा और वो अपने बारे में भी बताएगा कि वो कौन है। शर्मा जी की पत्नी सारी बातें ध्यान से सुनकर घर आती हैं और हाथ मुंह धुलकर मंदिर में दिया जलाती हैं। दिया जलाने के बाद शर्मा जी का हाथ पकड़कर मंदिर में लाकर बिठाती हैं, फिर गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देती हैं। पर थोड़ी देर तक शर्मा जी पर कोई असर नहीं होता। जब 2 से 3 मिनट तक गायत्री मंत्र कई बार पढ़ा जाता है, तब एकाएक शर्मा जी की आंखें लाल हो जाती हैं, मानो आंखें बाहर ही निकल आएंगी, और तेजी से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे छोड़ने वाला हूँ। और तभी उनका छोटा सा बच्चा मंदिर में आ जाता है। शर्मा जी उसे जोर से हैवानों की तरह पकड़कर दबोच लेते हैं, मानो उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। इतना देख शर्मा जी की पत्नी गिड़गिड़ाने लगती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर शर्मा जी मानो उसे अब नहीं छोड़ने वाले थे। उसका गला इतना जोर से दबा रखा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। पर शर्मा जी की पत्नी लाचार थी, अब उसके पास रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वो बार बार अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो। शर्मा जी ने बच्चे को झटके से दूर फेंक दिया, मानो वो उनका बच्चा हो ही ना, और कहने लगा कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस, मैं इसी जगह मौजूद पीपल के पेड़ पर रहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे रहने नहीं दिया, पेड़ को काट डाला, अब मैं तेरे घर को बर्बाद कर दूंगा, तू अपने घर में अब नहीं रह पाएगी, एक एक सदस्य को मैं खत्म कर दूंगा, जैसे तूने मेरे घर को बर्बाद किया वैसे ही मैं तेरे घर को भी बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर शर्मा जी बेहोश होकर फर्श पर गिर जाते हैं। शर्मा जी की पत्नी का तो पहले से ही बुरा हाल था, वो बच्चे को संभाले या अपने बेहोश पति को देखे, जैसे तैसे उसने बच्चे को उठाया, उसे देखा कहां कहां उसे चोटें आई हैं, मलहम पट्टी करके पति को भी जगाया, पर काफी कोशिशों के बाद भी पति को यानी कि शर्मा जी को होश नहीं आ रहा था। शर्मा जी की पत्नी अब भागी भागी मंदिर जाती है और पंडित जी से सारा हाल कह सुनाती है। पंडित जी ब्रह्म राक्षस का नाम सुन के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, भूत प्रेत चुड़ैल इन सब से तो एक बार बचाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस काफी शक्तिशाली होते हैं। फिर भी पंडित जी ने कहा कि मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। वो मंदिर के अंदर गए और कागज में लिखा कोई मंत्र लेकर आए। उसे मोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये एक ताबीज में डालकर शर्मा जी के गले में पहना दो और साथ ही थोड़ी सी भभूत दी और उस भभूत को शर्मा जी के माथे पर 7 बार लगाने के लिए कहा। शर्मा जी की पत्नी के पास कोई चारा नहीं था, वो चाह के भी किसी और से कुछ नहीं बता सकती थी। जैसा जैसा पंडित जी ने बताया उन्होंने घर आकर वैसे वैसे कर दिया और कुछ ही देर में शर्मा जी को होश भी आ गया। वो फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगे। ऐसा होते 2 दिन बीता था, अचानक से मानो फिर से एक शांति सी छा गई, एक बड़े तूफान का संकेत दिखने लगा था। शर्मा जी आज फिर अपने काम से वापस घर नहीं लौटे थे। रात के 8 बज रहे थे और अभी भी उनका कोई अता पता नहीं था। शर्मा जी की पत्नी को लग रहा था शायद कहीं फिर से ब्रह्म राक्षस का साया तो नहीं आ गया। ढूंढते ढूंढते जब शर्मा जी की पत्नी गांव में एक घर में पहुंचती है और पूछती है कि क्या शर्मा जी आए थे, तो सामने से जवाब आता है कि हाँ, आज वो उनके घर कथा कहने आए थे और हाँ, उनका कुछ सामान भी छूट गया है। ये कहते हुए वो घर के अंदर से वही ताबीज लेकर आती है जो शर्मा जी ने पहना हुआ था। वो कहती है कि कथा पढ़ने के बाद जब वो भोजन करने बैठी तो शायद कुर्ता निकालते वक्त उनका ताबीज भी वही निकल गया था। इतना सुनते ही शर्मा जी की पत्नी को मानो सांप सूंघ गया हो। वो ताबीज हाथ में लेकर उल्टे पांव वापस आ जाती हैं और यहाँ वहाँ जगह जगह शर्मा जी को ढूंढने लगती हैं। तकरीबन एक घंटे तक जगह जगह ढूंढने के बाद जब शर्मा जी नहीं मिलते हैं तो वो घर का रुख कर लेती हैं। आज वो अपने साथ अपने दोनों बेटों को भी नहीं लाई थी, इसीलिए और उनका मन बैठा जा रहा था। सोचते हुए आ रही थी कि अगर अब वो ब्रह्म राक्षस उनके पति पर आ गया तो अब वो क्या करेगा। घर पहुंचने ही वाली थी, दूर से उन्होंने देखा घर में कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। घर के सामने पहुंचकर उनका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। डरते डरते उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया और बेटों को आवाज दी, राहुल राहुल दरवाजा खोलो, राहुल राहुल दरवाजा खोलो। कई बार राहुल को आवाज देने के बाद कोई जवाब घर में से नहीं आता है। ये क्या, अचानक से धक्का देने पे दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाते ही शर्मा जी की पत्नी घर में रोशनी करती हैं, तो देखा शर्मा जी शांत बैठे हुए थे, मानो किसी चीज का अफसोस कर रहे हों। शर्मा जी की पत्नी तो पहले से ही डरी हुई थी, पर बच्चों को घर में ना देखकर वो परेशान थी और शर्मा जी के पास जाके उनको झकझोरते हुए पूछती हैं कि बच्चे कहाँ हैं। शर्मा जी सर को ऊपर करते हैं और अपनी पत्नी को खूब जोर से पकड़ लेते हैं और इतना जोर से चिल्लाते हैं मानो पूरे घर का सामान तहस नहस हो जाएगा। हर तरफ अशांति फैल गई थी, सिर्फ उन्हीं की आवाज सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे उनके शरीर का आकार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। ये दृश्य इतना भयावह था कि कोई भी व्यक्ति अगर देख ले तो उसकी डर के मारे जान निकल जाए। पर फिर भी शर्मा जी की पत्नी हिम्मत करके उनके पास जाती हैं और पैर को पकड़ के गिड़गिड़ाती हैं कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, आप कौन हो मैं नहीं जानती, मेरे पति को मेरे बच्चों को छोड़ दो। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस इतना जोर से चिल्लाता है कि कोई भी डर जाए। वो कहता है कि तूने मेरा घरौंदा बिगाड़ दिया, तूने मेरे पेड़ को कटवा दिया जिस पर मैं पिछले 100 सालों से रह रहा था, और जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तेरे बच्चों को तेरे पति को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए कोने में फिर जाकर बैठ जाता है। इतना सुनने के बाद शर्मा जी की पत्नी के हाथ पैर मानो ठंडे हो गए हों, पर फिर भी हिम्मत करके चारों तरफ बच्चों को ढूंढती है। आंगन के एक कोने पर थोड़ी सी मिट्टी उभरी हुई दिखती है। उसे शक होता है कि कहीं इस ब्रह्म राक्षस ने उसके बच्चों को यहीं दफना तो नहीं दिया। वो और पास जाकर थोड़ी सी मिट्टी हटाती है तो उसे उसके बच्चे की उंगली दिखाई देती है। वो जोर जोर से रोते हुए जल्दी जल्दी मिट्टी हटाना शुरू करती है और ये क्या, दोनों के दोनों बच्चे वहीं पे दफनाए हुए थे, पर बच्चों की सांसें अभी भी चल रही थी, बच्चे लगभग अधमरे हो गए थे। शर्मा जी की पत्नी रोते बिलखते हुए बाहर भागती हैं। भागते भागते वो मंदिर के पट पे जाती हैं और जोर जोर से दरवाजा पीटती हैं। अंदर से पंडित जी बाहर आते हैं कि रात को 2 बजे कौन आया है। बाहर आकर देखते हैं शर्मा जी की पत्नी जोर जोर से रो रो के दुहाई दे रही होती हैं कि पंडित जी मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, वो ब्रह्म राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा, और जोर जोर से रोने लगती है। शर्मा जी की पत्नी की बातों को सुनकर पंडित जी भी अब घबरा जाते हैं, पर उनके पास भी कोई चारा नहीं था। वो मंदिर से कुछ सामान लेते हैं और कहते हैं चलो बेटी अब मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, और शर्मा जी की पत्नी के साथ उसके घर आ जाते हैं। घर पे कोई पूजा शुरू करते हैं और हवन की तैयारी करते हैं। हवन में ब्रह्म राक्षस के नाम की जैसे ही आहुति देने लगते हैं ब्रह्म राक्षस सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है, तू जानता है मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर इसने और इसके पति ने मिलकर मेरा घरौंदा तोड़ दिया, तो अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो शर्मा जी का सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगता है। शर्मा जी के सर से खून की मानो नदी बहने लगी हो। ये देखकर शर्मा जी की पत्नी और जोर जोर से रोने लगती है। पंडित जी कहते हैं, तुम ब्रह्म राक्षस हो और तुम इन मासूम लोगों की जान लेने पर क्यों तुले हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे घरौंदे को लौटा दिया जाएगा। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस कहता है कि मेरा घरौंदा कैसे लौटाओगे, तुमने मेरा पेड़ कटवा दिया जिसपे मैं 100 सालों से रह रहा था, उस पेड़ की लोग पूजा भी करते थे, पर मैंने आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पंडित जी उसकी बातें सुनकर कहते हैं, पेड़ तो कटवा दिया गया है, अगर तुम संतुष्ट हो जाओ तो हम एक दूसरा पेड़ भी लगवा सकते हैं और उसकी भी वैसे ही पूजा की जाएगी जैसे पहले वाले पेड़ की जाती थी। ये लोग नादान हैं और गलती किसी से भी हो सकती है, अनजाने में की गई गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं होती। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस राजी हो जाता है और कहता है, मैं तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक नया पेड़ ना लग जाए और पूरे गांव वाले उसकी पूजा करना ना शुरू कर दें। जैसे तैसे रात बीतती है और अगली सुबह शर्मा जी की पत्नी पंडित जी के साथ घर के बाहर पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी कोशिशों के बाद गांव से कुछ ही दूर पंडित जी को और शर्मा जी की पत्नी को एक पुराना पीपल का पेड़ दिखता है जिसकी शायद काफी सालों से पूजा नहीं हो रही थी। पेड़ को देखते ही पंडित जी के मन में विचार आता है, क्यों ना ब्रह्म राक्षस को हम यहीं पर स्थापित कर दें, गांव में भी किसी तरह का डर नहीं रहेगा, लोग यहां आकर पूजा करेंगे और उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। उस पेड़ को देखने के बाद शर्मा जी की पत्नी और पंडित जी वापस मंदिर आ जाते हैं। मंदिर आने के बाद वो मंदिर पर ही पूरे गांव वालों को बुलाते हैं। वहां बुलाने के बाद अपने साथ हो रहे बीते कई महीनों से ब्रह्म राक्षस की सारी घटनाओं को शर्मा जी की पत्नी पूरे गांव वालों को बता देती है। पंडित जी कहते हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं हम सब से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उस पेड़ की पूजा हम सब भी करते थे। और पंडित जी कहते हैं कि गांव से कुछ ही दूर पर एक पीपल का पेड़ है, हम सभी को जाकर ठीक उसी तरह

है और शर्मा जी की पत्नी और शर्मा जी पूजा पर बैठते हैं। काफी लंबी पूजा चलने के बाद ब्रह्म राक्षस एक बार फिर से शर्मा जी के अंदर प्रवेश करता है और शर्मा जी फिर से एक भयानक रूप में आ जाते हैं। शर्मा जी का भयानक रूप देखकर पूरा गांव डर जाता है और सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। कहते हैं, हम सभी को क्षमा कर दो और इस पेड़ में आप अपना स्थान ग्रहण करो। इतना सुनते ही शर्मा जी एकदम से बेहोश हो जाते हैं और चारों तरफ एक सन्नाटा पसर जाता है।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे झलक और आज हम एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से मिल रहे हैं। सो बात करते हैं 1980 के दशक के आखिरी उन सालों की बात है। कलकत्ता से एक लड़का मुंबई पहुंचा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो फिल्मों में गाना गाए। धीरे धीरे उसकी वहां धीरे धीरे उसकी वहां के कुछ लोगों से पहचान हो गई। उसी इलाके के एक मेस में उन लोगों ने अपने साथ रहने और खाने का इंतजाम भी कर दिया। शर्त बस ये थी कि दिन में बस 2-4 बार गाना सुनाना होगा। बात बन गई। मुंबई जैसे महंगे शहर में उस लड़के के रहने खाने का इंतजाम हो गया। एक दिन उस लड़के ने थोड़ी दूर के ही एक होटल को देखा और वहां एक गाना गाने जा पहुंचा। उसे लगा कि वो भी लोगों के मनोरंजन के लिए ये काम कर सकता है। उसने होटल के मालिक से मिलने का समय मांगा। बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। उस लड़के ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि गाना तो वो भी गा सकते हैं। होटल के मालिक ने जवाब दिया कि वो तो ठीक है, तुम भी गा सकते हो, लेकिन जो गायक पहले से मेरे यहाँ गा रहे हैं, मैं उनका क्या करूं। काफी बातचीत के बाद हुआ ये कि उस लड़के को एक गाना गाने का मौका मिला। उस लड़के ने उस होटल में आए लोगों के लिए मनोरंजन के लिए जो गाना गाया था, वो गाना था मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा।

1976 में फिल्म महबूबा में किशोर कुमार के गाए इस गाने को जब उस लड़के ने गाया तो होटल में आए लोग दंग रह गए। टिप देने का सिलसिला शुरू हो गया। उस जमाने में रुपए की कीमत जब बहुत ज्यादा होती थी तब उस लड़के के पास 5,000 के करीब टिप जमा हो गई। उसके बाद होटल के मालिक ने लड़के से जाकर सिर्फ इतना सा कहा कि आज तो गाना गाते ही रहो और कल से तुम्हारी नौकरी पक्की है। अब तो आप सब ये जान ही गए होंगे कि ये लड़का कौन था। हाँ, ये कहानी है केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कुमार सानू की, एक ऐसे गायक जिन्होंने 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में पार्श्व गायन के क्षेत्र में एक छत्र राज किया है।

सानुदा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जन्म हुआ था इनका 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां दिन रात संगीत का माहौल था। सानुदा जब छोटे थे तभी इन्होंने मौत को मात देकर नई जिंदगी पाई थी, जिसमें उनके पड़ोस की एक महिला का बहुत बड़ा रोल था। आइए सुनाते हैं वो दिलचस्प किस्सा जब पड़ोस की एक महिला ने उनकी जान बचाई थी। हुआ ये था कि जब कुमार सानू 1 साल के थे और उसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे, तब वो घुटने के बल चलते चलते बाहर एक तालाब तक जा पहुंचे थे। थोड़ी देर में वो तालाब के भीतर जा चुके थे। एक महिला वहीं पास में बर्तन धो रही थी। उन्हें जब छोटा सा बच्चा कीचड़ में धंसता हुआ दिखाई पड़ा तो उसने किसी तरह उस बच्चे को बाहर निकाला। उसके बाद कीचड़ से सने बच्चे को गोद में उठाकर मोहल्ले में घूम घूम कर पूछना शुरू किया कि ये किसका बच्चा है। तब जाकर किसी तरह कुमार सानू अपने घर पहुंचे।

कुमार सानू के पिता पशुपति भट्टाचार्य शास्त्रीय संगीत के गायक थे। बच्चों को पढ़ाते भी थे। पांच भाई बहन में से हर किसी को संगीत पसंद था। अब परेशानी ये थी कि अच्छा गायक होने के बाद भी पशुपति जी के पास हमेशा पैसों की किल्लत रहती थी। सानुदा जब छोटे थे तब उन्हें लगता था कि शास्त्रीय संगीत में जाकर रुपए पैसे की कमी रहेगी ही, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो फिल्मी गाना गाएंगे।

तो दोस्तों, सानू जी की और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी बातों को हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए अपने प्रोग्राम भूले बिसरे गीत में और सुनते रहिए ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।